मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 45 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। उषा की अलसाई पलकों पर निशा की चुप्पी प्रभात में ढल चुकी है और सूर्य की किरणें कोमल अंचल लिए धरती पर आ रही हैं। पवन लहरियों की वीणा पर पंछी चहचहा उठे हैं। नील गगन की सुंदर आभा के साथ नव आशा का दीपक नई ऊर्जा लिए

कल उठा है और हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोताओं, आप अपनी दिनचर्या आरंभ कर चुके हैं और साथ ही आपने अपना रेडियो सेट भी ऑन कर लिया है और आपको इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। कुछ ही पलों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता

0: भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में आप सुनेंगे ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर डॉक्टर तेजेंद्र कुमार से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन इस समय?
3: किसान भाइयों के लिए खेती में ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत ही आवश्यक है, बहुत फायदे हैं इससे। देखिए, जुताई तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत को चीरना या उसको उलट देना, ये जुताई कहलाती है। अब जुताई जो होती है कई प्रकार की, जैसे गहरी जुताई होती है, छिछली जुताई होती है, ग्रीष्मकालीन जुताई होती है। तो इस समय ग्रीष्मकालीन जुताई की बात हम कर रहे हैं, चूँकि गर्मी का सीजन चल रहा है, रबी फसलें सब कट चुकी हैं, खेत खाली हो गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके गहरी जुताई कर देना चाहिए। इस समय गर्मी पड़ रही है और ये कम से कम जुताई है ये 15 सेंटीमीटर गहरी जरूर करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी नीचे की मिट्टी पलट के ऊपर आ जाए। मुख्य बातें इस प्रकार से हैं, जैसे कि ग्रीष्मकालीन की जुताई हर 2-3 साल में एक बार जरूर कर देना चाहिए खेत में। इसके अलावा खेत के चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ें बंधी होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई करें उसके बाद मेड़ अवश्य बांध दें, जिससे कि जो बरसात होगी उसका पानी खेत से बाहर न जाने पाए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जुताई जब होती है तो उसके बाद बड़े बड़े ढेले ऊपर आ जाते हैं, वो ढेले बरसात के 33% पानी को सोख लेते हैं और जो पानी बचता है वो खेत में भरा रहता है। तो इस तरह से मजबूत मेड़े बंधी रहेंगे तो जो पानी बरसात का है वो भी बाहर नहीं जाने पाएगा। इसके अलावा जब ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं आप, तो जमीन में जल धारण क्षमता, जो पानी सोखने की क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुताई हमेशा, अगर खेत आपका ढालू है तो ढाल के विपरीत करना चाहिए खेत, जिससे कि जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जाए और कंप्लीट तरह से सोख जाए, पूरी तरह सोख जाए वर्षा का पानी।
2: तो जहां भी ग्रीष्मकालीन जुताई करनी है डॉक्टर साहब, तो मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए?
3: जी हाँ, मिट्टी पलटने वाले हल से करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर मिट्टी पलटने वाला हल नहीं उपलब्ध है आपके पास, तो आप कल्टीवेटर से भी जुताई कर सकते हैं, लेकिन गहरी जुताई करें। इस बात को ध्यान रखें कम से कम 15 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी जरूर ऊपर आ जाए।
2: तो इसके फायदे क्या क्या हैं ग्रीष्मकालीन जुताई के?
3: मुख्य जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि मिट्टी के सतह पर, ऊपरी सतह पर जो भी फसल अवशेष पड़े रहते हैं, जैसे रबी फसलें कटने के बाद पैरा पड़ा रहता है, पत्तियां पड़ी रहती हैं, घास फूस पड़े रहते हैं, खरपतवार, ये सब मिट्टी के नीचे पहुंच जाते हैं। जब गहरी जुताई कर देते हैं मिट्टी के साथ नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार जो हानिकारक कीड़े मकोड़े रहते हैं जमीन में, उनके अंडे बच्चे रहते हैं, वो सब भी भूमि के ऊपर आ जाते हैं और इस तेज गर्मी की धूप में सब मर जाते हैं, जिससे कि हमारी मृदा स्वस्थ हो जाती है। इसी तरह खरपतवारों के बहुत से बीज उस जमीन में पड़े रहते हैं, वो भी बीज गर्मी की जुताई करने से ऊपर आके गर्मी की धूप में खत्म हो जाते हैं। इस तरह मिट्टी का जो कटाव है, बरसात जब होती है तो मिट्टी बरसात के पानी से कट के बहती रहती है, तो ये कटाव भी लगभग 66% तक कम हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव तेजी से नहीं हो पाता है, ढेले रहते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं और बहाव की गति कम कर देते हैं। तो इस तरह कटान भी बहुत कम होता है।

0: इसके अलावा गोबर की खाद जैसे देते हैं या कार्बनिक खाद जो भी देते हैं मिट्टी में रहता है, वो भली भांत आसानी से मिल जाता है मिट्टी में और पौधों को पोषक तत्व के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार बहुत से जीवाणु रहते हैं, लाभदायक जीवाणु रहते हैं हमारे मिट्टी के भीतर, वो मिट्टी के भीतर के जीवाणु जो उपलब्ध हैं उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है जब ग्रीष्मकालीन जुताई होने के बाद, और जो कि दलहनी फसलों में भी अधिक उपयोगी हुई है। इसी प्रकार जब गहरी जुताई कर लेते हैं तो मिट्टी के भीतर हवा और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों का भी संचरण और नीचे सतह तक आसानी से होता रहता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9415560503, 9415560503, 9415560503। किसान भाइयों को इस गर्मी की जुताई को अवश्य खेत में करना चाहिए तथा जो फसल अवशेष बचा हुआ खेतों में इसको जलाएं ना कतई, बल्कि इसका अवशेष प्रबंधन करके खेत में ही सड़ाएं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और आपकी फसल उत्पादन अच्छा से अच्छा होगा।
1: डॉक्टर तेजेंद्र कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन, इस विषय पर अभी किसान भाई सुन रहे थे डॉक्टर तेजेंद्र कुमार से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। खेतों में मीठा पानी और जीवन में मीठी वाणी हमेशा मिठास और खुशहाली ही लाते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, वाणी का महत्व। वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का है।
3: मनुष्य जीवन में वाणी का स्थान अद्वितीय है। ये केवल ध्वनि या शब्दों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तित्व, संस्कार और आत्मा की अभिव्यक्ति है। वाणी मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का संप्रेषण होता है और संस्कृति का संवहन संभव होता है। जिस प्रकार जल जीवन के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार वाणी सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए अनिवार्य है। वाणी का प्रभाव गहन और व्यापक होता है। मधुर वाणी किसी उदास मन को प्रफुल्लित कर सकती है, किसी निराश व्यक्ति को आशा से भर सकती है और किसी क्रुद्ध व्यक्ति को शांत भी कर सकती है। दूसरी ओर कटु वचन गहरे घाव छोड़ जाते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं और मनुष्यता को कलुषित करते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने वाणी को तपस्या और साधना का विषय माना और उसे संयमित, मर्यादित तथा परिष्कृत करने का आग्रह किया। सच्चाई ये है कि वाणी केवल मुख से बोले गए शब्दों तक सीमित नहीं, ये तो मन के भाव, बुद्धि की गहराई और आत्मा की संवेदनशीलता का स्वरूप है। किसी के कहे गए शब्दों का तभी प्रभाव होता है जब वे उसके आचरण और जीवन से मेल खाते हों। असंगति की स्थिति में वाणी निर्जीव और निष्प्राण प्रतीत होती है, पर जब जीवन और वचन में एक रूपता आती है तब वाणी मंत्रवत प्रभाव उत्पन्न करती है। वाणी का एक आयाम है संयम। अनियंत्रित वाणी बारूद की चिंगारी की तरह है जो स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है, जबकि संयमित वाणी शीतल चांदनी की तरह है जो जीवन को आलोकित कर देती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने वाणी संयम को साधना का प्रथम सोपान माना। वाणी का दूसरा आयाम है प्रेरणा। वाणी केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि मार्गदर्शन का उपकरण भी है। इतिहास गवाह है कि महापुरुषों की वाणी ने समाज की दिशा बदल दी। भगवान श्री कृष्ण की गीता की वाणी ने अर्जुन जैसे शंकालु योद्धा को धर्म युद्ध हेतु प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध की वाणी ने करुणा का मार्ग प्रशस्त किया और महावीर की वाणी ने अहिंसा को मानवता का सर्वोच्च मूल्य बना दिया। वाणी का तीसरा आयाम है सृजन और संवेदनशीलता। मधुर वाणी में संबंधों को जोड़ने और जीवन को सुंदर बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सेतु का कार्य करती है। कटु वाणी दीवारें खड़ी करती है, सौम्य वाणी पुलों का निर्माण करती है। इसीलिए कहा गया है मधुर वचन अमृत तुल्य है और कटु वचन विष के समान। वाणी का एक और आयाम है साधना। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या पूजा अर्चना तक सीमित नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता में निहित है। साधना से निकली हुई वाणी मात्र ध्वनि नहीं रहती, वो ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ऐसी वाणी न केवल सुनने वालों के कानों में गूंजती है बल्कि उनके हृदय में उतरकर जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। वाणी के माध्यम से मनुष्य अपने संस्कारों को व्यक्त करता है। ये केवल शाब्दिक

0: संप्रेषण नहीं बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व का दर्पण है। वाणी जितनी परिष्कृत होगी जीवन उतना ही उज्ज्वल और दिव्य होगा। वास्तव में वाणी वो साधन है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण, व्यक्तिगत से सामाजिक और सीमित से असीमित बना सकती है। यही वो पवित्रता है जो वाणी को साधना का अमूल्य वरदान बनाती है। वाणी केवल ध्वनि नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये न केवल संबंधों का निर्धारण करती है बल्कि संस्कृतियों और सभ्यताओं की धारा को भी दिशा देती है। ये या तो जीवन को विस्मय बनाती है या अमृत तुल्य। इसीलिए आवश्यक है कि हम वाणी के प्रत्येक प्रयोग को साधना मानकर करें। हमारी वाणी में सत्य, करुणा और माधुर्य का सम्मिश्रण हो, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे और समाज को सही दिशा प्रदान कर पाएंगे।
1: मनुष्य को प्रकृति का सबसे शक्तिशाली और अनमोल वरदान है वाणी। तो अपने संस्कारों से, व्यक्तित्व और रिश्तों की मिठास से, अपनी बोली से बनाए रहिए अपने आसपास अपने रिश्तों और मित्रों का एक समूह। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाणी का महत्व। वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जिनके चरणों में आरंभ का मंगल और जीवन का संबल छिपा है, भगवान गणेश, जो हमें नव ऊर्जा, नव प्रेरणा और शुभारंभ का प्रकाश अपने भक्तों के जीवन में जगाते हैं। आइए मंगल मूर्ति की वंदना से प्रारंभ करते हैं आज की आराधना।

मन को असीम शांति, शक्ति और सकारात्मक प्रदान करती हैं देवी माँ। देवी माँ जो सिर्फ हमारे लिए मूर्ति ही नहीं बल्कि धैर्य, साहस और शक्ति का जीता जागता रूप हैं। आइए माता की जय जयकार करें।

आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 198 में निषाद राज के साथ प्रयाग के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भरत के मन में परिताप का प्रसंग।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान प्रायोजक इफको NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: पारस्परिकसहभागिताञ्च दृढयितुं पुनरपि आह्वानम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉ जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं आप न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी एंटीऑक्सीडेंट का खजाना लीची के बारे में। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो गर्मियों के आरंभ में ही अपनी खुशबू, सुगंध, मिठास और ताजगी से सभी का मन मोह लेता है। इसका रंग गुलाबी होता है, स्वाद रसभरा और ठंडक देने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची न केवल स्वाद का खजाना है बल्कि इसमें छुपे हैं कई ऐसे गुण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। गर्मियों की धूप में जब शरीर थक जाता है तब लीची का ठंडा रस और रसीला स्वाद हमारे तन और मन दोनों को तरोताजा कर देता है। इसकी मिठास प्राकृतिक होती है और इसमें उपस्थित जल तत्व हमारे शरीर की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। लीची को अक्सर हम केवल एक मौसमी फल की तरह देखते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसके पोषक गुण इसे सुपर फूड की श्रेणी में ला सकते हैं। लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जब गर्मियों में शरीर थकावट और लू का शिकार होने लगता है तब ऐसे में विटामिन सी हमारी रक्षा करता है। ये न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि हमारी त्वचा को भी चमकदार और युवा बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस और कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो हृदय, मस्तिष्क और लीवर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। लीची एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा प्राकृतिक रूप से संतुलित होती है जिससे ये तुरंत ऊर्जा देता है। गर्मी के मौसम में जब शरीर सुस्त पड़ जाता है तब कुछ लीचियां खाने से शरीर को तुरंत ताजगी का एहसास होता है। खासकर बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है जो स्वाद में तो मीठा है ही लेकिन साथ में ऊर्जा और जल की पूर्ति भी करता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या गर्मियों में आम होती है। लीची इसमें विशेष रूप से सहायक होती है क्योंकि ये लगभग 80% पानी से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर में तरलता बनाए रखता है और ये त्वचा की कोशिकाओं को भी हाइड्रेट करता है। यही कारण है कि लीची खाने से त्वचा मुलायम, चमकदार और ताजगी भरी बनी रहती है। लीची का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर भी सकारात्मक होता है। इसमें उपस्थित फाइबर मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा ये गैस और अपच जैसी परेशानियों को भी कम करने में मददगार है। अगर भोजन के बाद लीची खाई जाए तो ये पाचन में सहायता करती है और पेट को हल्का बनाए रखती है। कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लीची को लेकर कई भ्रम फैले हैं, खासकर छोटे बच्चों में इसके अधिक सेवन से जुड़ी कुछ घटनाएं चर्चा में रहीं। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी चीज अगर संतुलन में ना ली जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। लीची में प्राकृतिक शुगर अधिक मात्रा में होती है इसलिए इसे खाली पेट या बहुत अधिक मात्रा में खाने से शरीर में ग्लूकोज असंतुलन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लीची हानिकारक है बल्कि ये है कि इसे संतुलन और सही समय पर लेना चाहिए। जैसे कि दिन के समय भोजन के बाद अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो भी लीची एक अच्छा विकल्प हो सकती है, बशर्ते इसे सीमित मात्रा में लिया जाए।

0: पे। इसमें जीरो फैट और कम कैलोरी होती है और यदि ये अन्य फलों और हल्के नाश्ते के साथ खाई जाए तो ये एक हेल्दी विकल्प बन सकती है। इसे स्मूदीज, शरबत या सलाद के रूप में भी लिया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बना रहता है। भारत में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लीची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मुजफ्फरपुर की लीची तो GI टैग भी पा चुकी है और उसकी मिठास के चर्चे देश विदेश में हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये फल न केवल पोषण और स्वाद का स्रोत है बल्कि हमारे किसानों की मेहनत और भारत की कृषि विविधता का प्रतीक भी है। श्रोताओं, जब अगली बार आप लीची खाएं तो उसे केवल स्वाद का फल न समझें, उसमें छुपे पोषण, ताजगी और स्वास्थ्य के गुणों को भी पहचानें। ये फल हमें प्रकृति की तरफ से गर्मियों में मिला एक उपहार है जो हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, हर अच्छी चीज की तरह इसका भी सेवन संतुलन के साथ करें। ताजगी से भरपूर फल खाएं और गर्मियों की इस मिठास को स्वास्थ्य के साथ बांटें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: एंटीऑक्सीडेंट का खजाना लीची। अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। और श्रोताओं, अब समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला में आज का विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस विषय पर बताएंगे नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा कलीम सिफात इस्लाही का मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू जबान का किरदार। इसके अलावा कलामे शायर में आप सुनेंगे अब्दुस सलाम सलाम फैजी से उनका ताज़ा कलाम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। सुबह 9:15 का समय होता है जिले की हलचल का। आज के जिले होंगे मथुरा और प्रतापगढ़। कानून की बात कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा ऐश्वर्या द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनना ना भूलें मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन।

श्रोताओं आपको बता दें, शाम 7:31 पर कानून की बात में आप सुनेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव विषय पर ऐश्वर्या द्विवेदी से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित हरि मोहन श्रीवास्तव का राग चारुकेशी में बांसुरी वादन। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अहमद हुसैन का शहनाई वादन राग यमन में। ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर पूरनचंद विभागाध्यक्ष प्रोस्थोडेंटिक्स विभाग के जीएमयू लखनऊ से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा बढ़ती उम्र की महिलाओं में दांतों की समस्या। इस विषय पर बातचीत करेंगी नीना सोनकर। पशुओं में खुरपका मुंहपका कारण और निवारण विषय पर सुनना ना भूलें डॉक्टर सुनील कुमार राय से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में फिट इंडिया क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा जल संकट

विनाश की आहट। और शाम 5:10 पर हमारे युवा साथी युवा तरंग में सुनेंगे सुनील कुमार तिवारी से की गई भेंट वार्ता, समाज आधारित अर्थव्यवस्था। भेंट करता होंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान सुनना ना भूलें 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय है खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र, अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश। प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से 747 kHz पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा के साथ।

आज की विविधा में सभी श्रोताओं को नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं वैशाली। अच्छा बताइए दोस्तों, अगर आज दुनिया के सभी लोग अचानक एक दूसरे से बात करना बंद कर दें तो क्या होगा? व्यापार ठप, रिश्ते टूट जाएं, युद्ध भड़क उठें और हजारों साल की इंसानी विरासत धूल में मिल जाएं तो कैसी होगी दुनिया? कभी सोचा है? दुनिया में इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने रीति रिवाज, इतने खान पान, पहनावे और अलग अलग सोच होने के बावजूद इंसान एक दूसरे से जुड़ कैसे जाता है? कोई नमस्ते कहता है, कोई सलाम तो कोई हेलो, कोई वणक्कम, लेकिन भावना एक ही होती है, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। और यही सम्मान, यही समझ, यही बातचीत हमें आपस में जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2024 में 10 जून को विश्व सभ्यता संवाद दिवस मनाने की घोषणा की। इसे मनाए जाने का उद्देश्य था अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और समाजों के बीच संवाद, सम्मान, सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। तो आज की विविधा में बात उस सभ्यता की जिसमें समाज जीता है, जो हमें हमारी पहचान देती है, बात उस संवाद की जो सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ता है, भेदभाव को कम करता है और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। हम कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह त्योहार मनाते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं और अपने जीवन के मूल्यों को कैसे अपनाते हैं, ये सब हमारी सभ्यता संवाद का हिस्सा है और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, हर किलोमीटर पर भाषाएं बदलती हैं, स्वाद बदलता है, गीत संगीत बदलते हैं, रंग बदलते हैं, फिर भी हम एक राष्ट्र के रूप में जुड़े रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती एक परिवार है। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई और कई अन्य समुदायों ने देश की सभ्यता को समृद्ध बनाया है। हमारे त्योहार भी हमें यही सिखाते हैं। दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं बल्कि खुशियां बांटने का अवसर है। ईद भाईचारे का संदेश देती है, क्रिसमस प्रेम और करुणा की सीख देता है, वहीं गुरु पर्व सेवा और मानवता का महत्व बताता है। इन सभी अवसरों पर लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। यही है सभ्यता संवाद की असली भावना। सोचिए अगर पुराने समय में सभ्यताएं एक दूसरे से ना जुड़ती तो क्या होता? ना व्यापार फैलता, ना ज्ञान फैलता, ना कला फैलती, ना विज्ञान इतना आगे बढ़ता। रेशम

मार्ग यानी सिल्क रूट केवल सामान का रास्ता नहीं था, विचारों का भी रास्ता था। दोस्तों, लोग मसाले लेकर जाते थे, लेकिन साथ में भाषा, संगीत, कहानियां और ज्ञान भी ले जाते थे। भारत की सभ्यता ने दुनिया को योग, आयुर्वेद, शून्य दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि दी, तो दुनिया की दूसरी सभ्यताओं ने भी मानवता को विज्ञान, कला, वास्तुकला, साहित्य और नए विचार दिए। यानी हर सभ्यता मानवता की किताब का एक सुंदर अध्याय है, और अगर कोई एक अध्याय खुद को पूरी किताब मान ले तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। पांचवीं सदी में बना नालंदा विश्वविद्यालय, जहां चीन, कोरिया, अरब, श्रीलंका के छात्र एक साथ पढ़ते थे, ये था असली संवाद, ये थी असली सभ्यता। आज के डिजिटल युग में जब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, मोबाइल की स्क्रीन पर हम कुछ सेकंड में किसी दूसरे देश के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, एक क्लिक में जापान की तकनीक देख सकते हैं, अफ्रीका का संगीत सुन सकते हैं, यूरोप की कला समझ सकते हैं और भारत का योग पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, संचार के साधन तो बढ़े हैं, मगर कहीं ना कहीं संवाद कम हो गया है। यानी कि जानकारी की बाढ़ तो है, लेकिन समझ का आज अकाल है। विश्व सभ्यता संवाद दिवस उत्सव नहीं, एक चेतावनी भी है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों से कट जाना नहीं है। आधुनिकता का अर्थ है अपनी सभ्यता को समझते हुए दूसरों की सभ्यता, संस्कृति का सम्मान करना। संवाद की असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, दिल बड़ा करने में है। संवाद का अर्थ है मैं अपनी बात कहूं, लेकिन आपकी बात भी सुनूं। मैं अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करूं, लेकिन आपकी सभ्यता संस्कृति का भी सम्मान करूं। मैं अपनी पहचान बचाऊं, लेकिन आपकी पहचान को भी जगह दूं। दोस्तों, यही सभ्यता है, यही संवाद है और यही मानवता है। याद रखें, दुनिया को दीवारें नहीं, दरवाजे चाहिए, और दरवाजा तब खुलता है जब हम दस्तक देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दुनिया तब खूबसूरत बनती है जब सभ्यताएं टकराती नहीं, आपस में संवाद करती हैं, कुछ नया सीखती हैं, और तभी समाज में बदलाव आता है और तभी राष्ट्र विकास करता है। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह।

0: होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन

0: औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास थ्री के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन

0: के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, जिसे आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का राग चारुकेशी में बांसुरी वादन। विलंबित बंदिश एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का राग चारुकेशी में बांसुरी वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति हमें, लेकिन श्रोताओं बने रहिए 747 किलो हर्ट्स पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेत्रित्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4000

0: 399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत

0: 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्चीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और POK में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वजीर आजम मोदी की लगातार मुद्दतेकार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनव्व पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क्यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वजीर आजम मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी का एक मामूली समाजी और इकतसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि ख़ानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नज़ारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मौसर आवाज़ बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वजीर आजम की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इकतसादी तौर पर फ़ाल भारत की उनकी दूरअंदेशी को खिराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक खत में कहा है कि ये

0: सूलिया भी ना सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है, बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी क़यादत के तई जाहिर किया है। उन्होंने भारत की काबिले जिक्र इक्तिसादी और समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वजीर आजम मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पपुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वजीर आजम मोदी को एक मिसाली शख्सियत और क़यादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने को एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। वजीर आजम मरापे ने पपुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के एक मामूली पस मंजर से शुरू होने वाले सफर से 3 लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक मुल्क की क्यादत करने को उजागर किया और गैर मुल्की पॉलिसी, इकतसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और समाजी और इकतसादी तरक्की के मैदानों में भारत की इन अहम हसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबी मुल्क की आज़ादी के बाद की तारीख में एक अहम लम्हा है। साबिक सदर जमहूरिया ने एक रोजनामे में लिखे गए एक मजमून में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि 2014 की अब तक की मुद्दत में हुक्मरानी, सियासत और अवामी बहस में हिंदुस्तानियत की जानिब एक फैसला कुन तब्दीली देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम मोदी ने भारत की तहजीबी विरासत की शान में इजाफा किया है, उन्होंने जमहूरी रिवायात को उजागर किया है और कौमी इदारों में अवामी एतमाद को मुस्तहकम बनाया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने वजीर आजम मोदी को उनकी हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ओहदे पर रहने की ये मुद्दतकार महज वक्त की पैमाइश नहीं है, बल्कि इससे मुद्दत के तरक्याती सफर में यकसर तब्दीली लाने वाले दौर की अक्कासी होती है। जनाब राधा कृष्णन ने यह भी कहा कि जिस तरह अब्राहम लिंकन ने गुलामी की जंजीरों से लाखों लोगों को आज़ाद कराया था, हालिया दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को शदीद गुर्बत के शिकंजे से बाहर निकालकर लाखों कुनबों को सबकी शमूलियत वाली तरक्की, उम्मीद, मौके और वकार बख्शा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज़ाद भारत के सबसे तवील अरसे तक मुसलसल मुंतखब होने वाले वजीर आजम बनने पर साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि ये कामयाबी काफ़ी अहम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सियासी मुसाबकत, मखलूत हुकूमत की सूरत हाल और मीडिया की मुसलसल जांच पड़ताल के दरमियान हासिल हुई है। एक अंग्रेजी रोजनामे में अपने मजमून में जनाब नायडू ने स्वच्छ भारत, गरीबों के लिए मकानात, जनधन खातों, फवायद की बराह रास्त मुंतकली, यूपीआई अदायगी और आयुष्मान का सहरा नरेंद्र मोदी की क़यादत के सर बांधा। आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। पेश है हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट।
1: इस मीटिंग में इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों और वजीर आजम समेत बीजेपी की आला क्यादत के शामिल होने की तवक्को है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने के विजन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकज ने मुल्क में देही तरक्की को आगे बढ़ाने के मकसद से 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने एमजी नरेगा के तहत 30,000 करोड़ रुपए पहले से ही मुख्तस किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692 करोड़ रुपए की एक उबूरी रकम जारी की गई है। इसके साथ ही कुल रकम 1.2

5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जनाब चौहान ने ये बात रियासती देही तरक्की के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत के बाद कही। ये मीटिंग विकसित भारत जीरामजी पर अमल दरामद के बारे में थी। मुल्क में इस कानून का इतलाक अगले महीने की 1 तारीख से होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज़ मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज़्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फ़ायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फ़ौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक मिनाब बंदर आबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफ़र 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियाँ।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समय हुआ है सुबह के 8:45 का। ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम, आपके मेल, आपके गीत का। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी नगमों को, तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और आज जो सबसे पहले मेल हमने लिया है, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से ये मेल है। बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। एक मेल और है, इसे भेजा है हमारे श्रोता ने। ये हैं गाड़गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पनाताई, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे ने। ये मेल है जो लिखते हैं, आपको सादर प्रणाम। और ये हैं सरगुजा मैनपॉट से सोनम थापा, फातिमा आदिबा, आसमा थापा, और अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है। तो आपका पसंदीदा गीत हम ज़रूर सुनवाएंगे। ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मेल है, अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख, मूसा भाई जान, भाई राजकुमार। सुदामा नगर खंडवा से मेल है, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप का। आपने भी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। एक मेल और है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। और आप सभी सुनना चाहते हैं नीति मोहन की आवाज़ में जब तक है जाँ फिल्म का प्यारा सा गीत।

नमस्कार, ये हमारे श्रोता लिखते हैं और इन्होंने आकाशवाणी के सफल 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को अनंत शुभकामनाएं दी हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। ये हैं हमारे श्रोता चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी। और एक मेल और है, ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। इन्होंने लिखा है आपको, नमस्ते, बुलडाढ़ा शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई दीपाली श्लोक और बुलढाड़ा इस्लामपुर महाराष्ट्र से श्रोता हैं सहदेव, शशिकला, सुमेध कुमार। इन्होंने अपनी फरमाइश का नगमा हमें लिख भेजा है और इन्होंने धन्यवाद भी कहा है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से मेल है, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल है सोहन जोशी और पायल जोशी का और इन्होंने नमस्कार भी लिखा है। ये है, इन्होंने लिखा है, बहुत ही प्यार भरा नमस्कार और आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आते हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। और आपकी फरमाइश हमने शामिल कर ली है, ज़रूर सुनवाएंगे। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल है, टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी ने हमें पत्र लिख भे ईमेल लिखा है। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में दो चोर फिल्म का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ग्राम कुरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से हमें मेल भेजा है मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल, अनवी, सुनीता, शोभा, दीपा, राम फेरे, कपिल, प्रांजल, रमा राजपूत, अन्या राजपूत, कृष्णा राजपूत। ये ग्राम कुआरियापुर सैंडी हरदोई से मेल है और इन्होंने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। एक और मेल है, इसे लिखने वाले श्रोता हैं हमारे मारहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन, नवेद, शहनाज, सुहेल, अनम, यशव, रसीद वारसी। इन्होंने नमस्कार लिखा है और अपनी पसंदीदा गीत को ये सुनना चाहते हैं आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से। और अगला मेल है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से, निसार, नौशाद, बेबियालिया, आयान, और इन्होंने लिखा है नमस्कार, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सा संदेश भेजने के लिए। ये हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, और इन्होंने अपनी फरमाइश का गीत हमें लिख भेजा है। और आप सभी सुनना चाहते हैं जीरो फिल्म का गीत जिसे गाया है अभय जोधपुरकर और साथियों ने।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

गांव नथाना पंजाब से मेल है हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता का। इन्होंने लिखा है, खुश रहो खुशियां बांटो। बहुत ही सुंदर सा आपका संदेश है और बहुत ही अच्छा सा है, जिसे हम सबको आत्मसात करना चाहिए। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल है हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा जी का। और इन्होंने अपनी फरमाइश का गीत सुनने के लिए मेल लिख भेजा है। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी हमें मेल लिखते हैं। और एक मेल और है, ग्राम मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर और रितिका। और आप सभी ने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। एक मेल और है, ये भेजा है हमें कुथ रोड महाराष्ट्र से देवयानी, स्वस्तिक, तनु, तान्या और शिक्षा ने। और आप सभी सुनना चाहते हैं गजनी फिल्म का गीत, जिसे गाया है जावेद अली और सोनू निगम ने।

ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से मेल है विजय पाल, शुभम, शिखा, ऋचा गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे का। और इसके अलावा एक और मेल है, ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं और कार्यक्रम को सुनते हैं, नए कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं। प्यार भरा नमस्कार लिखा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता, ऋतु सिंह ने मेल लिखा है और अपनी फरमाइशी फिल्मी गीत को ये सुनना चाहते हैं। एक मेल है गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत और इनके बहुत सारे मित्र बंधु हैं, इन्होंने मेल लिख भेजा है। और ये हैं हमारी श्रोता बमना खेड़ा जिला हरदोई से नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य। आप सब भी सुनना चाहते हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मनी की आवाज़ में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है कि हम आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से इजाजत लें, तो दीजिए अनुमति हमें। नमस्कार। सात सौ 47 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
2: जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष

0: होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में आयोजित की गई। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समय के जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता शोध संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी, अनुशासन, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहां धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहां कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बेल, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया
1: करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने, हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और आगे वाला अगले साल तक उसका देखभाल करेगा।
0: मथुरा चटपट के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नीतीश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नीतीश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को माँ सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की अनीता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें।
2: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश।

0: त्रिपाठी का।
1: जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायु दाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तहसील सदर कुंडा लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारी सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आमजन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाली योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निर्देशक DRDA दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग्या अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर योग्या अभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जन प्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योग्या अभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत पहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभास सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में CPR देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान NDRF की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देश गान सुन रहे थे। 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में आप समात फरमाएंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फ़रोग़ में उर्दू ज़बान का किरदार, और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं।

0: जनाब अब्दुस्सलाम सलाम फैज़ी। लेकिन सामईन, आज 10 जून है और आज का दिन मंसूब है वर्ल्ड आई डोनेशन के हवाले से। समात फरमाइए एक मुख्तसर तकरीर, आँखों की अतिया का आलमी दिन। आँखें इंसानी जिस्म का सबसे अहम और ख़ूबसूरत हिस्सा हैं। आँखें सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि इन्हीं आँखों से मोहब्बत व नफ़रत और जज्बात व एहसासात का इजहार होता है। उर्दू शायरी में आँखों को बतौर इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है। गुलाबी आँखें, हसीन आँखें, पुरकशिश आँखें और न जाने क्या क्या। गुलाब आँखें, हिजाब आँखें, यही तो हैं लाजवाब आँखें। इन्हीं में उल्फत, इन्हीं में नफ़रत, सवाब आँखें, अजाब आँखें। कभी नज़र में बला की शोखी, कभी सरापा हिजाब आँखें। कभी छिपाती हैं राज़े दिल को, कभी हैं दिल की किताब आँखें। वो आए तो लोग मुझसे बोले, वो आए तो लोग मुझसे बोले, हुजूर आँखें जनाब आँखें। अजीब था गुफ्तगू का आलम, अजीब था गुफ्तगू का आलम, सवाल आँखें जवाब आँखें। सामईन, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी आँखें बड़ी अहमियत रखती हैं। खालिक कायनात का करम व एहसान है जिसने हमें दो खूबसूरत आँखें दी हैं। ऐसी हसीन आँखें जिनसे हम कुदरत के नज़ारों का मुशाहिदा करते हैं। मगर ज़रा सोचिए, हमारे इर्द गिर्द, हमारे शहर और हमारे गाँव में, हमारे मुल्क में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आँखों की इस नेमत से महरूम हैं। वो पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे का शिकार होने की वजह से नाबीना हैं। क्या उन्हें हक नहीं कि वो भी कुदरत के हसीन मनाजिर को देखें? क्या उनके दिलों में ये तमन्ना नहीं मचलती होगी कि वो भी अपने प्यारों की शक्ल सूरत को देखें? मारूफ शायरा आरफा शबनम की ये गज़ल एक ज़माने में बहुत मशहूर हुई थी। मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेडिकल साइंस तरक्की करके उस मुकाम पर है कि अगर कोई इंसान वसीयत कर जाए कि उसकी वफ़ात के बाद उसकी आँखें किसी नाबीना इंसान को लगा दी जाएं, यकीनन ये एक बेहतरीन समाजी अमल है। हमारी एक छोटी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी का चराग रोशन हो सकता है। 10 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया जाता है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद ये है कि किसी इंसान की वफ़ात के बाद उसके कार्निया के अतिया की अहमियत को उजागर किया जाए। तो आइए आज के दिन यानी वर्ल्ड आई डोनेशन डे के मौके पर हम ये अहद करें कि हम सब इस मुहिम का हिस्सा बनकर किसी नाबीना की आँखों को रोशन करने का वसीला बनेंगे। सामईन, ये तो थी चंद बातें वर्ल्ड आई डोनेशन के हवाले से। और आइए अब रुख करते हैं मकाले की जानिब। उर्दू ज़बान के खमीर में हमेशा से ही अमन मोहब्बत की फ़ज़ा परवान चढ़ रही थी। उर्दू ज़बान ने हमेशा इत्तेहाद व मोहब्बत की गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं जनाब कलीम सिफ़ात इस्लाही से उनका मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फ़रोग़ में उर्दू ज़बान का किरदार।
1: अहले इल्म इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा बाहमी मेल जोल और इत्तेहाद व इत्तेफाक़ से हुई। मुख्तलिफ मज़हब व कल्चर के मानने वाले, मुख्तलिफ इलाक़ों में रहने वाले और मुख्तलिफ पेशों के अफराद अरसे से एक मरकज़ पर आने की तमन्ना रखते थे। उर्दू उसी ख्वाहिश का समरा है। चूँकि ये ज़बान कौमी यकजहती के पैदावार है और उसका बीज मुश्तरक तहज़ीब में बोया गया है, इसलिए उसमें इब्तदाही से रंग बिरंगी तहजीब व माशरत की झलक मिलती है। उसकी इन्हीं खूबियों के सबब कृष्णचंद ये कहने पर मजबूर हुए, उर्दू अदब शुरू ही से एक मुश्तरक हिंद आर्याई तहजीब और कल्चर का गहवारा रहा है। उसकी तरवीज व इशात में हिंदुओं और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। उसने अपने दायरे में हर मजहब व मिल्लत, हर रंग व नस्ल के अफराद के महसूसात

बहुत हुआ और रहने दो, और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो। रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, बेहतर है अपनी राह लो, देखो मियाँ बहुत हुआ। बेहतर है अपनी राह लो, देखो मियाँ बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ। और शेर समाज फरमाए कि लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अजियतें, लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अजियतें, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ।

0: पार तो कब की हो चुकी, बुग्ज़ो अनाद की हदें पार तो कब की हो चुकी, अब ऐ दियारे कुफ़े ना मेहरबान बहुत हुआ, अब ऐ दियारे कुफ़े ना मेहरबान बहुत हुआ। मक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि अब तो समेट लो सलाम अपनी बिसाते आरजू, अब तो समेट लो सलाम अपनी बिसाते आरजू, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमाए, अर्ज क्या है कि बज़्म यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, बज़्म यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, तू भी है मौजे हवा, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, और अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, और मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, और फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, और डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, जानिबे दस्त जरा दीदे तर सोच के चल, जानिबे दस्त जरा दीदे तर सोच के चल।
1: जनाब सलाम फैजी के नशार के साथ ही सामईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में अवधि युगल लोकगीत। सबसे पहले ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में प्रस्तुत है देवी गीत।

जगदम्बे दयाल भई। अभी आपने ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत सुना, और अब आइए सुनते हैं नकटा। स्वर ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव का है।

0: हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी। अभी आप सुन रहे थे ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में ये नक्टा। लोकरंग कार्यक्रम में अभी आपने ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में अवधि युगल लोक गीत सुने। संगतकर्ता थे ढोलक पर अनूप कुमार मिश्र, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर आशीर्वाद कठेरिया। श्रोताओं, इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपको बता दें, ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के गाए अवधि युवल लोक गीत का आनंद आप ले सकेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है।

0: बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं, पुनः सुन सकेंगे चित्रपट से कार्यक्रम 10:20 से। 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुबह के 10:10 होने वाले हैं। सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण, बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आवर्जन प्रक्रिया शुरू हुई। ओमान तट पर सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे

0: लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों की समर्पित जनसेवा और उनके नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पुर्तगाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुर्तगाल के लोगों और पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यह घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आवर्जन और सामान संबंधी औपचारिकताओं को पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। उन्होंने बताया कि वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा और कहा कि अमरीका ने ईरान के संकल्प की परीक्षा ली है। इस बीच लेबनान में कुछ ही दिन पहले हुआ युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान बंदरगाह शहर टायर पर हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। नवीनतम संघर्ष ने इसराइल और ईरान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: दक्षिणी फिलीपींस में कल बचाव दल ने क्षतिग्रस्त इमारतों की तलाशी ली ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रह गया हो। एक दिन पहले आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 37 लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 500 घायल हुए और 32,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। पिछले कई दशकों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक इस भूकंप के बारे में अधिकारियों ने बताया कि 4 लोग अब भी लापता हैं। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 और कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से ए से होगा और फाइनल मैच खेला जाएगा 21 जून को। बेंगलुरु की सृष्टि किरण ने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है। सृष्टि ने लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतकर और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 ग्वाटेमाला में उप विजेता रहकर ये स्थान हासिल किया है। 13 वर्षीय सृष्टि किरण ने ITF जूनियर रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 357वीं रैंक प्राप्त की, जो विश्व स्तर पर अंडर 13 खिलाड़ियों में सर्वोच्च रैंकिंग है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आव्रजन प्रक्रिया शुरू हुई। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को हरा दिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से में। श्रोताओं आइए सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और शान ने। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आइए सुनते हैं तेरे नाल लव हो गया फिल्म का गीत।

और अब आइए सुनते हैं सत्यमेव जयते फिल्म का गीत, जिसे गाया है आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने। गीत के बोल कुमार के हैं और संगीत है रॉक है कोहली का।

और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुपर 30 फिल्म का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में द स्काई इज पिंक फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

और आइए आप सुनते हैं आतिफ असलम को फिल्म बजरंगी भाईजान में।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सचिन जिगर और राघव चैतन्य की आवाज में तेरी बातों में उलझा जिया, इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर था 747 किलोहर्ट्ज पर, ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ से फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी आपकी अपनी मित्र विभा श्रीवास्तव। श्रोताओं, ये एक ऐसा मंच है जहां आवाज़ बनेगी हमारी पहचान, आपके विचार, आपकी बातें और आपके अनुभव होंगे इस महफिल की असली जान। तो उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए हमसे और कहिए अपने मन की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो सबसे पहले हम आपको अपना नंबर बता दें जिसपे आप हमें करिए फ़ोन और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गीत। नंबर है 0522, ये लखनऊ का कोड है 2238825। नंबर एक बार फिर से 0522-2238825। तो शुरू करते हैं सुरों की शानदार महफिल और जुड़ते हैं कार्यक्रम के पहले कॉलर से और देखते हैं ये कहाँ से है और इनकी फरमाइश क्या है।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ मैं मिंटू तिवारी बोल रहे हैं, ग्राम बखाना तहसील खागा जिला फतेहपुर से।
0: मिंटू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मिंटू तिवारी जी, कैसे हैं आप, बताइए कुछ अपने बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छे हैं मैम, बस फोन मिला रहे तो फोन लग भी गया, पहले ही कॉलर हैं हम।
0: हाँ बिल्कुल, आज आप कार्यक्रम के पहले
1: नहीं, इसमें हमारा लगता नहीं है जल्दी फोन में।
0: असल में मिंटू जी, ऐसा होता है ना कि लाइन बिजी हो जाती है तो फिर नेटवर्क इशू इतना हो जाता है कि जिसका मिल जाता है तो लग जाए तो फिर बात हो जाती है। आप लोग कोशिश करते रहिए, फोन कभी ना कभी मिलता है। चलिए देखिए, कोशिश कामयाब हो गई आपकी मिंटू जी, कोशिश कामयाब हो गई आपकी।
1: जी जी जी मैम, और बताइए आप कैसी हैं।
0: बस हम बहुत अच्छे हैं। तो मिंटू जी, करते क्या हैं आप?
1: बस मैम, खेती किसानी का काम करते हैं।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है खेती किसानी का। आजकल तो धूप बहुत है, उसी में खेती किसानी का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम करते हैं भाई आप लोग।
1: जी जी मैम।
0: तो चलिए फिर आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
1: हमको जमाना दीवाना सुना दीजिए, साथ छोड़ू ना तेरा। हाँ। ये गाना हम किसी को डेडिकेट करना चाहते, सुनाना चाहते, थोड़ा नाम ले लें।
0: हाँ बिल्कुल लीजिए, डेडिकेट करिए।
1: नाम पहले तो मांगीलाल चंदेल जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, जितेंद्र पाल जी हैं, सुनील कुमार सीतापुर से हैं।
0: हाँ। और जितने
1: और
0: हैं आपके
1: मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, मुन्ना तिवारी, और मेरे छोटा भाई मेरा भी मिलेश तिवारी।
0: हाँ।
1: और रसूलपुर गुलराज हो गए प्रभाकर तिवारी जी।
0: तो जितने आपके जानने वाले हैं सभी को डेडिकेट कर देते हैं ये।
1: हाँ,
0: क्योंकि आप अगर नाम लेते रहेंगे
1: उन सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो हेलो हेलो
0: नमस्कार
1: हेलो
0: नमस्कार,
1: जी दीदी नमस्कार।
0: आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम हिमांशु यादव, ग्राम कोकलवाड़ा, जिला श्रावस्ती।
0: श्रावस्ती से बोल रहे हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में। तो
1: जी,
0: हिमांशु जी बताइए क्या
1: बड़े
0: कर,
1: दिनों के बाद कॉल लगाए।
0: अब बहुत दिनों के बाद कॉल लगाया तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको कि आज आपसे बात हो रही है। तो हिमांशु जी क्या करते हैं आप बताइए।
1: दीदी जी, हम पढ़ाई करते हैं, अभी तो स्कूल खुली नहीं है, हाई
0: हाँ आजकल तो की
1: स्कूल
0: तो
1: में पहुंच गए हैं। अब
0: अरे
1: स्कूल
0: वाह
1: जल्दी खुलने वाली है तो अब फोन भी
0: बिल्कुल
1: मेरा कम लगेगा।
0: चलिए ठीक
1: स्कूल
0: है।
1: जाना रहेगा तो कहाँ, 2 बजे छुट्टी होगी तो
0: लेकिन
1: कहाँ 11 बजे का टाइम निकल जाएगा।
0: लेकिन आप छुट्टी वाले दिन कॉल कर सकते हैं, आप संडे को कॉल
1: हाँ
0: करिएगा,
1: हाँ
0: हमारा
1: संडे को
0: कार्यक्रम तो रोज जाता है, आप ही लोग के
1: जी।
0: लिए है कार्यक्रम। और पहले पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी करते रहिए और हमारा कार्यक्रम भी सुनिए। हाँ, कार्यक्रम हमारे हर प्रकार के होते हैं जिसमें आपको जानकारी और बहुत कुछ सुनने को मिलता
1: जी
0: है कि नहीं? तो
1: जी
0: आज हिमांशु जी कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप बताइए।
1: जी जी फिल्म का नाम है जीवा
0: हाँ
1: और गाने के बोल रहे हैं, आए हम बराती बरात लेके।
0: चलिए भाई हिमांशु
1: और
0: जी,
1: दीदी जी कुछ मित्रों को डेडिकेट कर लें, बहुत दिनों के बाद को लगे।
0: चलिए जल्दी जल्दी नाम लीजिए जिसमें हम आपके गाने को
1: सबसे पहले तो
0: सुनवाना,
1: दीप्ति दीदी,
0: दीप्ति जी को। चलिए
1: क्योंकि
0: भाई,
1: वो आती हैं तो मेरा कॉल नहीं लगता।
0: ओहो, तो आप कोशिश करते रहिएगा, कभी ना कभी कॉल लग जाएगा। ठीक है,
1: और दीदी जी आप हैं,
0: धन्यवाद।
1: दिनकर सिंह जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: मांगीलाल चंदेल जी हैं।
0: तो जितने
1: जी
0: आपके सुनने वाले हैं सभी को डेडिकेट ये।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से फ़ोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो हम नंबर एक बार फिर से बता देते हैं जिसमें हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ सकें। नंबर है 0522238825 0522 2228825। तो देखते हैं अब कौन जुड़ा है हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए जिसमें हम आपका नाम जान सके। क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, पोस्ट मलेथुपुर तहसील मिल्कीपुर जिला अध्यक्ष मैं गुंजन तिवारी बात कर रही हूँ।
0: गुंजन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए क्या करती हैं आप, बताइए।
1: जी मैम, मैं घर का काम करती हूँ।
0: घर का काम करती हैं, तो आपने पढ़ाई की है?
1: जी मैम, 10th तक पढ़ी और नहीं पढ़ पाई।
0: नहीं पढ़ पाई तो आप घर पे ही अपनी, जब आप 10th तक पढ़ी हैं तो फिर तो आप पढ़ सकती हैं, तो घर पे ही अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कुछ कुछ पढ़ते रहिए, ज्ञान को बढ़ाइए, है कि नहीं? तो ज्ञान बढ़ाने से बहुत फायदे हैं, आप औरों को भी ज्ञान दे सकती हैं, ठीक है? तो और बताइए गुंजन जी, कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए?
1: जी मैम, तू है तो मुझे तेरा और क्या चाहिए।
0: अच्छा भाई, तो ये तू है तो

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: जी मैम, नमस्कार जी।
0: और बताइए अपना, पहले तो नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए, आपका क्या नाम है?
1: आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है थोड़ी
0: बहुत
1: सी।
0: धीमी आ रही है, अब आई।
1: हाँ भाई मैम, मैं पंजाब से जिला जलंधर ग्राम प्रतिया कला से गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ।
0: गुरुमुख सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी
0: तो
1: धन्यवाद मैम आपका।
0: तो अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं दृष्टिहीन हूँ, छोटी सी किराने की दुकान चलाता
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, किराने की दुकान चलाते हैं।
1: हूँ।
0: तो ये बताइए, आज गाना कौन सा चुना है आपने सुनने के लिए?
1: जी मम्मी काली घटा का तू चलिया मेरी महबूबा, तुझे दिल दूंगा तुझे जान दूंगा, वो मैम पूरा
0: हाँ,
1: नारा सुन।
0: पूरा ही गाना मैं सब सुनवाती हूँ, आपको भी पूरा गाना सुनवाऊंगी, किसी का गाना मैं काटती
1: जी
0: नहीं हूँ,
1: मैम,
0: ठीक है?
1: हाँ जी
0: लीजिए भाई, आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। ये गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी और
1: ओके
0: आशा भोसले ने। ठीक, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। और
1: मेरा
0: बताइए।
1: नाम पूरन वर्मा है और मैं
0: हाँ
1: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना कंचनल बगला से बात कर रहा मैडम जी।
0: हाँ पूरन वर्मा जी, आपको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: मैडम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी आवाज हमारी तरफ पहुंचाइए।
0: कह रहे हैं आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हम समझ गए कि आप पूरन वर्मा जी बोल रहे हैं। तो आज
1: जी मैडम
0: कौन सा
1: जी
0: गीत
1: मैडम,
0: चुना
1: क्योंकि
0: है?
1: आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से हम सुनते रहते हैं मैडम, और आप आरजे
0: बिल्कुल,
1: आते हो तो आरजे को भी हम पहचान जाते हैं और
0: हाँ
1: आरजे भी हमको पहचान जाते हैं, तो ये
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत खुशी की बात
0: तो
1: होती है मैडम।
0: हाँ, तो पूरन जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप, बताइए आज।
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम, और गाने जो बोले तेरी नजर का तीर, ऐसा कुछ गाना है।
0: अच्छा, चलिए भाई, पिक्चर का नाम है खुल्लम खुल्ला, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और जसविंदर नरूला ने, तो आपको सुनवा देते हैं।
1: जी, और मैं कुछ दो तीन मित्रों को याद कर लूँ आपको इजाजत हो
0: चलिए भाई कर लीजिए, और दोस्तों से कहिए वो भी फोन मिलाए तो उनके भी
1: तो। हाँ
0: नंबर
1: जी हाँ जी
0: लगेंगे।
1: हाँ,
0: हाँ
1: वो भी कर रहे हैं मैडम ट्राई, तो लग जाएगा
0: हाँ
1: मेरे बात
0: हाँ चलिए बताइए किसको
1: जी।
0: डेडिकेट।
1: सबसे पहले तो आप है मैडम, आपका नाम नहीं सुन
0: धन्य
1: पाया मैं पहला कॉल, क्योंकि मेरी लाइट नहीं थी तो अभी थोड़ी देर पहले आई था आप
0: वे
1: नाम आपका।
0: मैं विभा श्रीवास्तव बोल रही
1: जी थैंक यू मैडम,
0: हूँ।
1: विवाह श्रीवास जी आपका, और सबसे पहले तो आप है,
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है भगवान सिंह परवान जी है, रमेश प्रजापति जी है, अभिनाथ जी है, गोल्डी भाई है,
0: हाँ
1: और इटावा से रोहित है, और जितने भी कॉलर लाइव सुन रहे हैं
0: सबके
1: आकाशवाणी
0: लिए
1: लखनऊ।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।

0: इश्क में पड़ गया रे, तेरे इश्क में पड़ गया रे।
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका?
2: मैं बढ़िया हूँ।
1: और आप पूरा परिचय बताइए अपना।
2: आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है स्लो।
1: अब आई आपको आवाज़?
2: आवाज़ आई, बोलिए, बढ़ाइए फुल, तब आएगी। क्योंकि मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम।
1: अच्छा सतीश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज कौन सा गाना चुना है आपने सुनने?
2: क्योंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष हो चुके हैं, तो आकाशवाणी मुझे ये सिखाती है फोन लगाना है और बातचीत करना है, तो बहुत अच्छा लगता है।

0: हमारे के नंबर पर सोच के, नंबर
1: बिल्कुल
0: पर की
1: बिल्कुल
0: जगह शुभकामना देना चाहता हूँ कि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में कलेंगे, खरबूजा तरबूज और खीरा ककड़ी ये खाना चाहिए,
1: बिल्कुल खाना
0: और
1: चाहिए।
0: अभी
1: हाँ
0: तो जामुन लगे तो जामुन खाना चाहिए थोड़े बहुत, और आम
1: हाँ
0: भी मलियाबाद के आम तो बहुत फेमस हैं, आपको जानती
1: बिल्कुल
0: होगी।
1: बिल्कुल, मलियाबाद के आम बहुत फेमस है। और ये हाँ
0: हाँ,
1: तो
0: और जैसे पक्षियों को पानी रखना चाहिए, पेड़ पौधे
1: हाँ
0: ना काटना चाहिए, वृक्ष लगाना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए, फिर
1: वृक्ष
0: पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: पेड़ पौधे
1: बिल्कुल
0: काटते हैं तो दिक्कत हम ही लोगों ने होती है, और
1: बल्कि
0: गर्मी का
1: हाँ
0: मौसम तो जानते हो बहुत
1: बहुत,
0: तापमान 47 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसी में
1: बिल्कुल
0: तो कार्बन
1: वृक्ष लगाना तो बहुत
0: वगैरह नहीं
1: ज़रूरी
0: हो
1: है।
0: रही है।
1: वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज कौन सा गाना चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
0: आज फिल्म का नाम है
1: हम
0: हम गाने बोले कागज का दबातला, ये गाना प्ले कर दीजिए।
1: चलिए भाई, आपकी पसंद का ये गाना प्ले कर देते हैं। ठीक है,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद सतीश जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: हाँ क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? पूरा परिचय बताइए।
1: मैं सत्यम बात कर रहा हूँ, अमृतसर से। सत्यम
0: फिर से नाम बताइए। क्या नाम बताया? सत्यम जी। सत्यम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कुछ तुम कहो कुछ हम
1: जी,
0: कहेंगे।
1: धन्यवाद मैडम जी। और आपने मेरी कॉल उठाई तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पहली बार कॉल लगी है
0: अरे
1: अमृतसर
0: वाह।
1: से।
0: अच्छा
1: अमृतसर
0: वैसे
1: में मैडम जी अभी
0: हाँ
1: तो धूप ऊप पड़ रही है तो गर्मी आएगी।
0: हाँ गर्मी आजकल सब जगह है, लेकिन वहाँ मौसम थोड़ा ठीक होता है शायद शाम को।
1: हाँ, वो आपका नकलो प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। मीडियम में रेडियो पकड़ता नहीं है, डीटीएच पे और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पे। हाँ,
0: हाँ तो किस पे सुनते हैं आप?
1: नकलो बहुत दूर दूर सुना जाता
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ लखनऊ बहुत।
1: कोना नहीं है नकलो सुना नहीं जाता। नकलो
0: बिल्कुल
1: फेवरेट प्रोग्राम हो गया है।
0: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि लखनऊ फेवरेट हो गया है। तो ये बताइए सत्यम जी, क्या करते हैं आप?
1: आपके इधर मौसम कैसा है नकलऊ का? मेरे यहाँ तो गर्मी का धूप उबली गई, गर्मी गर्मी है थोड़ी बहुत।
0: हाँ
1: बस
0: गर्मी के मौसम में बहुत लखनऊ बहुत गर्म होता है। गर्म है लखनऊ भी बहुत। ये है
1: हाँ,
0: तो क्या करते हैं सत्यम जी आप?
1: मैं कंपनी में जॉब करता हूँ।
0: जॉब करते हैं। अच्छा तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के
1: आज
0: लिए?
1: दिल फिल्म का सुनवा दियो, प्रिया प्रिया
0: चलिए भाई आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं सत्यम जी। धन
1: जी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार
1: नमस्कार बहन जी,
0: भाई।
1: नमस्कार।
0: परिचय तो आप दे ही दीजिए, वैसे हम तो जान गए हैं कि आप कौन बोल
1: ग्राम
0: रहे हैं।
1: सनोतिया, जिला
0: हाँ,
1: गुना,
0: मध्य
1: मध्य प्रदेश
0: प्रदेश
1: से
0: से।
1: विभा श्रीवास्तव जी का छोटा भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो रहेगा फर्ज, और गाने के बोल रहेंगे, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने,
0: चलिए,
1: चाहे ना माने तू ना माने, ऐसा ही कुछ बोल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: चाहे तू माने चाहे न माने। चलिए
1: जी
0: भाई,
1: जी जी
0: आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। ठीक है,
1: जी आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी।
0: कह रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आपको ये गीत
1: जी
0: सुनवा
1: जी
0: देते
1: जी अब
0: हैं
1: बढ़िया आवाज आई, अब
0: ना।
1: बढ़िया।
0: चलिए ठीक है, मांगीलाल जी नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार बहन जी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: विभाजी राधे राधे।
0: राधे राधे, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं?
0: बस हम भी ठीक हैं। आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी, बिल्कुल। मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो

0: आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है हम लोग को कि आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं। और बताइए कौन सा
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नियमित श्रोता हूँ आपका, आकाशवाणी लखनऊ का, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, मैं बहुत ही नियमित श्रोता हूँ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, और इसीलिए आप लोग को सारे कार्यक्रम याद भी रहते हैं और पता भी रहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल विभा जी, फिल्म का नाम है साहिबान और गीत के बोले कि तू क्या प्यार करेगी प्यार मैंने किया, ये वाला गाना सुनना है। और ये गाना प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल जी और दिनकर सिंह जी, विजय कुमार पांडे जी और कानपुर से पूनम दीदी बहन जी हो गई और राहुल कुमार जी हो गए और
0: सबको, जितने आपके सुनने वाले हैं सभी को डेडिकेट,
1: सभी को डेडिकेट रहेगा। और मणिराम पाल जी हो गए, जितेंद्र पाल जी हो गए,
0: चलिए भाई सबको डेडिकेट ये फिल्म आपको।
1: और जितनी हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं सभी को डेडिकेट,
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी डेडिकेट रहेगा,
0: धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर था 747 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 401.6 मीटर था 747 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना

0: बात करें आज कॉफी की, लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
1: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
0: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
0: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
0: जी
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के

0: बारे में कुछ बताएंगे?
1: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा
0: जी।
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ
0: जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह,

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: कौन है?
1: आइए आइए, स्वागत है आपका।
0: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
2: जी
0: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
1: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
0: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली हैं।
3: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
0: अच्छा।
3: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
0: मतलब
3: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
0: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
1: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
3: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नीरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
3: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार श्रोताओं, और दिन के 12:30 हुए हैं। ये समय होता है सदाबहार नगमों का, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा के वो सुनहरे गीत जो आज भी हमारे दिलों की धड़कन बने हुए हैं। पुराने दौर के इन मधुर गीतों में प्यार है, एहसास है और ऐसी मिठास है जो हर पीढ़ी को जोड़ देती है। तो आइए शुरू करते हैं सुरीले सफ़र का सुरीला नगमा।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। उम्मीद है ये सुनहरे गीत आपकी यादों को ताज़ा कर रहे होंगे। आइए संगीत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

और आइए अब आपको सुनाते हैं सदाबहार नगमों में ये प्यारा सा नगमा जो है फिल्म दिल अपना प्रीत पराई से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

और इसी गीत के साथ ही सदाबहार नगमों का सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टि

0: दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। अगन राम, पुत्र राम प्रसाद, मरैला बुटहर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री खुशबू 17 मई सन 2026 से कहीं लापता हैं। खुशबू का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 20 वर्ष, लंबाई लगभग 152 सेंटीमीटर, रंग सांवला, इकहरा मजबूत जिस्म, चेहरा गोल। इनके हाथ में गुदना का निशान है। जिस समय खुशबू घर से निकली थी, इन्होंने लाल रंग का सलवार सूट और पैरों में चांदी की पायल पहनी हुई थी। इनके मिलने की सूचना अगर प्राप्त हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर दें 7906170938। मोबाइल नंबर एक बार फिर से 7906170938। कौशल्या, पत्नी स्वर्गीय देवी प्रसाद जनपद बलरामपुर से सूचित करती हैं कि उनकी बहू सुशीला पत्नी गोवर्धन 10 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता है। सुशीला का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 35 वर्ष, लंबाई 4.6 फिट, इकहरा बदन। जिस समय वो घर से निकली थी, उन्होंने नीले रंग का सूट और नीले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। पैरों में चांदी की पायल पहनी हुई थी। इनके मिलने की सूचना कृपया इस मोबाइल नंबर पर दें 8341106391। मोबाइल नंबर एक बार फिर से 8341106391। रामदिन, पुत्र जमुना प्रसाद, मसहा मोतीपुर कला थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री करिश्मा 10 मई 2026 से कहीं लापता हैं। करिश्मा का हुलिया इस प्रकार है। उम्र 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंगोरा, इकहरा बदन। इनके हाथों में गुदना और सर में चोट का निशान है। जिस समय करिश्मा घर से निकली थी, इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट और पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। इनके साथ एक 10 साल का लड़का और 6 साल की लड़की भी है। इनके मिलने की सूचना अगर प्राप्त हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर दें 6387678702। नंबर एक बार फिर से 6387678702। द्वारिका ग्राम मौजा जमुना भवानियापुर जनपद श्रावस्ती से सूचित करते हैं कि किरण देवी 2 मई 2026 से कहीं लापता है। किरण देवी का उलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 26 वर्ष, लंबाई 154.94 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की कोई भी सूचना अगर प्राप्त हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर दें 9935544728।

0: जीरो। नंबर एक बार फिर से 9935544720। इन सभी के मिलने की सूचना आप इस पते पर भी दे सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर्षवर्धन चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 1:10 हुए हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाया था और 27 मई 1964 तक खिदमत अंजाम दी। पंडित नेहरू की बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुद्दतकार 4398 दिन थी। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलसल मुद्दतकार अब 4399 दिन हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है।
0: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA आज नई दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, जिसमें 12 साल मुकम्मल होने का और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा कायदीन और NDA की तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तमाम 22 NDA की हुकूमत वाली रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला के साथ साथ तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज दारुल हुकूमत लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 असेंबली हलकों के मंदिरों में खसूसी पूजा अर्चना का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर, वुजरा, मेम्बरान पार्लियामेंट और मेम्बरान असेंबली बतौर मेहमान खसूसी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। मौनी बाबा मंदिर आलमबाग में बीजेपी के रियासती नायब सदर पंकज सिंह शामिल हुए। दरियसना, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर और दीगर इजला में भी इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इज्जत माँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा कि इज्जत माँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमृतकाल की रहनुमा क़ुव्वत और 1.45 बिलियन हिंदुस्तानियों की खिदमत, सलामती और खुशहाली के लिए मुसलसल वक्फ रहने वाले रहनुमा, हिंदुस्तान में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर दिली मुबारकबाद

आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंचे नीना सोनकर बहिनी के नमस्कार, जय हिंद। अब पंचे हम ही तो ना पूछब कि कैस हो, लेकिन देखो ये होत है ना, कभो कौनो का टेलीफोन करो, जैसे मोबाइल से करत हो ना टेलीफोन, तो कैस हो भैया, तो ये पूछे का पड़त है। जब साप्ताहिक कार्यक्रम है, सप्ताह में एक दिन जब बुधवार के दिन आत है, तो हम तो ये पूछबे कर अब कई सौ, लेकिन मौसम के मिजाज ऐस नहीं ना कि हम पूछी कि सब लोग ठीक हाओ, लेकिन हम ये दुआ करत हन, ये कामना करत हन कि सब लोग ठीक रहो। अब देखो ये कहे की बात नहीं ना कि उत्तर भारत इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी से, लू से, लपट से, घाम से, तपिश से, जीव जान मनई के हलकान हैं। सुबह सुबह देखो बिल्कुल तड़के सवेरा है, सुबह एकदम देखो बिल्कुल सूर्यदेव ऐस चमके लागत है, ऐस चमके लागत है कि लागत है कि हे भगवान, हे ऊपर वाले से प्रार्थना यही करत है मनाई कि आज बदरिया हो जाए, ना बारिश की बूंद पड़े, ना बरखा बूंदी पड़े, तो थोड़ी बदरिया हो जाए मनई का, थोड़ा मन जौन है उके संतुलित रहे। आए कहूनो कुछ कम काम काज करे का है, बाहर तो जाए का है, तो कैसे जावा जाए। देखो पंचे, ये गर्मी, ये भीषण ताप, तपेश, लू, लपट, घाम, ये सब हुईबे करी पसीना, ये सब गर्मी में होता है, कौनो नवी बात नहीं ना। अभी तो देखो कही कहा ही जा रहा कि अब की एक अलनीनो भी हो सकता है, एक ऐसी मतलब कहा जाता है कि जब अलनीनो आता है ना तो

मतलब कहा जाता है सूखा हो छू जाता है, मतलब ज्यादा पानी वानी नहीं बरसत है। लेकिन अभी जो समाचार मिल रहा कि केरल तक पहुंच गया मानसून, और धीमे धीमे धीमे धीमे देखो बरखा जौन है धीरे धीरे उधर से जो शुरू भई है तो अब बरसना चालू भा है। लेकिन अब यहाँ पे तो बारिश से अभी हुई नहीं रही बरखा बूंदी, लेकिन जब तक नहीं हुई रही पंचे, बाहर जाए के पहले फिर वही बात कि ताजा भोजन स्वच्छ जल ये सब पिए का है, अपने मूड़ का ढके का है, गमछा ले ले ओ, काला वाला या लाल या नारंगी नहीं सफ़ेद गमछा ले ओ, तो जिससे तपिश जौन है मूड़े में थोड़ी कम लगी कपाल में, तो ये सब जौन है आपका करे का है घर में ORS के घोल रखा हो। नहीं ना ORS के घोल तो नमक और शक्कर तो सबे के बन होती, नींबू सबे के बन होते, खेत खलिहान वाले हो सबका मालूम है कि नींबू कितना उपयोगी होता है ये मौसम में, नींबू की शिकंजी पियो, ये सब जौन है घर की बनाई भाई, ईद ग्यार बार के ठेला ठूली पे ना पियो, शरीर में पानी की कमी ना होए दे, खान पान सही रखो, ताज़ा भोजन खाओ। अब जैसे खरबूजा खीरा ककड़ी संतरा तरबूज ये सब मौसमी फल हैं, अभी जो भीषण गर्मी पड़ा थी तब है तो आ से आम वाम ऐसे कैसे आई है, धूप से बचाव करे का है। अब कहियो कहना बड़ा आसान है, अब हम तो कहिए सकत हन कि धूप से बचे का है, बहुत जरूरी ना होए तो बच्चे और बुजुर्ग जौन हैं 12 बजे से लेके शाम का 4 बजे के बीच बाहर ना निकलें, उसके बाद निकलें, अगर निकलना भी पड़े तो टोपी छतरी सूती कपड़ा पहन के निकलें, टोपी छतरी का उपयोग करें। त्वचा की देखभाल बहुत जरूरी है, कहा जाता है कि झुलस जाती मन की त्वचा, उसके ऊपर आइस लगाते जैसे कोई खरोच दिस है, और ई जो हीट स्ट्रोक कहा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन हम आपका बताई लू के जो लक्षण हैं जो प्रभाव है ऊका कहा जाता है। यदि बहुत तेज बुखार आए ऐसे कैसे जनियो की हीट स्ट्रोक हुआ है, या मतलब ताप बहुत जोर से पकड़ ली से आपकी देही, बहुत तेज आपका बुखार आई, चक्कर आई, उल्टी, त्वचा सूख जाई, और ऐसा लगी जैसे गरम गरम महसूस हो रहा, और मन करी कि कोई ठंडी जगह पे जाके मन ही मतलब पोड़ा रहे लेटा रहे ऐसे, मतलब ये मन करत है। लेकिन ये बात बताई दी ऐसा जब कभी ऐसी नौबत आती ना तो बिल्कुल जरको समय नहीं गंवाए का है, तुरते जौन है डॉक्टर के पास जाए का है। और ये लू भी बीत जाए, ये गर्मियों बीत जाए, अब तो देखो मतलब एक इंतजार है तो मानसून के, यानी जब बरखा आई तो बरसबे करी, तो ये हम आप मिलके यही सोच के मतलब थोड़ा प्रसन्नता अपने में ग्रहण कर ली कि देखो आम वाम खाए रहन, तरबूज खाए रहन, खरबूजा खाए रहन, खीरा ककड़ी खाए रहन, तो यही के साथ साथ मतलब समय भी मनाई के बीती और बरसा बरखा भी आ सकती थी। और हम यहू आपको बता दे कि घर परिवार जब मनई के स्वस्थ रहा था ना, तो सबसे ज़्यादा घर परिवार के बारे में कौन सोचा थी, घर की मेहरिया सोचा थी। अब आप भी सोचा तो यो कि अरे हम हूँ सोचा था जो घर के मनई हैं मनसिद्धू हैं कौनों मेहरिया के, तो घर परिवार की गाड़ी जौन है सबके मतलब खींचे चला थी, मतलब यो नहीं कि आप अकेले जौन हैं कौन, मतलब कहा जाता है कि एक अकेला चना जिसे भाड़ नहीं, मतलब जैसे आप तो भड़मुझे कपन कभा जात हो वैसे तो अब देखो धीरे धीरे बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हैं एक चना आप भाड़ में डालो तो का वो भुनत है का नहीं, तो सब बहुत ज़्यादा डाला जाता है तब वो अच्छी नीके तनी के भुनत है। वैसे ही घर परिवार है सबके सहयोग से मिल बाँट के मनाई चलत है तो सब होत है। तो ये सब बातें देखो हम करबे करब, इसके बाद देखो गौनई सुनबे भी आपका, ओके बाद हम आप का बताइबे कि जौन न प्रसूता ही उकी कैसे देखभाल की जाए, उके पोषण कैसे हुए, और यहू हम आपका बताइबे कि जो ऑपरेशन से आजकल बच्चे के चलन है तो काहे होत है, और ये जौन नॉर्मल जो प्रसव है वो सही रहा है या ऑपरेशन से, ये सब बातें कि हम जानकारी देब। लेकिन उके पहले देखो ये गौनई देखो इंतजार कर रही, जब गर्मी की बात किया है तो आम का कैसे भूल सकत हन, गलका का कैसे भूल सकत हन, और ये आम की बगिया बगीचा सब देखो इम्मा है। अंजू बहनी बताए रही कि आम के महीना है और दुखदाई तो है थोड़ा, मतलब गर्मी घाम तो लगता है लेकिन जब खाए लागो तो फिर का है मुँह चलत है स्वाद लेता तो ले स्वाद।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बगिया मछाई बाहर हो अमुआ के महीना तो ऐसे होते अमुआ के महीना पसीनो टपकत है मने आम खाना नहीं मुला छोड़त है। तो आम खाना है आम खाए का है पंचे तो ये मौसम भी झेले का होत है। तनी मतलब ऐसी जगह बैठ के खाओ जहाँ पेड़ वेड़ होए थोड़ी ठंडी ठंडी भाई आरो लगा देही का। तो कुल मिलाए कि कहा जाते प्रकृति अपन हर मौसम बदलत थी। अब मान लो झमाझम वर्षा हो जाए तो मने इतराही माम करत है कि बिजली कड़क रही कैसे खेत खलिहान में काम होई और का होई ऊके जो बाहर है देखो तना तना के वीडियो मने डाल रहा इधर यार बाहर। अब देखो कल इटावा में का हुआ इतनी तेज आंधी आई कहा जाते कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आई और एक मेहरिया रही और वो आंधी में जाने कहा यार बार करत रही तो कहो बाल बाल बच गई उके नहीं तो खोपड़िया पड़ जाता है टीन। तो मौसम वोसम की जानकारी जो रेडियो के माध्यम से मिलत थी ना समाचार के माध्यम से यही वदे कहा जाता है कि रेडियो सुनाओ तो पता चली कि कब मौसम का बिगड़ी कैसा होई और आपका का करे का है। कहा से जो ये पंच है ना हमरे आंगनबाड़ी सुनने वाले ये ग्रामीण पंच ज़्यादा हैं। तो मौसम की तो हो गई बात तो प्रसूता की भी बात कर ली जाए कि पंचे जब देखो कौनो बाल बच्चा लड़का बच्चा जन्म ले तो घर परिवार में देखो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना तो देखो जाने कितने घर परिवार में किलकारी गूंजी हुई है सबका हमरे आशीर्वाद हैं। और देखो एक बच्चे का जन्म केवल परिवार में नई खुशी लेके नहीं आता है बल्कि महतारी के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। अब गर्भ अवस्था का ही 9 माह के बाद जब प्रसव होता है ना तब वो जो मेहरिया है उसके शरीर अत्यंत थका और कमजोर हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक जीव का अपने अंदर समेटत भय यही लिए महतारी का बहुत बड़ा दर्जा है कि कैसे अपने बच्चे का जन्म देती। ऐसे में प्रसव के बाद के समय जी का प्रसूति काल कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय यदि महतारी की नीके तरीके देखभाल और उचित पोषण पर ध्यान न दिन जाए तो का स्वास्थ्य जौन है लंबे समय तक कहा जाता है कि प्रभावित हो सकत है। कईयों बार गांवन में देखे हुए को पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। तो हम बार बार कहा था कि लड़का बच्चा का लोग मार चुमका रहते हैं पुचका रहते हैं छाती से लगाते हैं लेकिन महतारी का पीछे छोड़ देते हैं। महतारी के साथ साथ जो नवप्रसूता उनके स्वास्थ्य भी पीछे छोड़ दें जबकि सच ये है कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ एक बच्चे का जन्म देती और अच्छी परवरिश भी महतारी ही कर पाती। यानी अपन देही जब उनकी बिल्कुल सही हो जाती तब है और सही कैसे हुई जब घर परिवार ध्यान दे। प्रसव के बाद क्या होता है जौन मेहरियाओं के शरीर में अनेक तरह के नवप्रसूता के बदलाव आते हैं। गर्भाशय जौन है धीरे धीरे अपन सामान्य आकार में लौटत है। शरीर में खून की कमी हो सकती कमजोरी बनी रह सकती हार्मोन में अचानक से बदलाव आते हैं। यदि प्रसव के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव हो जाए तो वो नवप्रसूता का चक्कर आ सकते हैं थकान कमजोरी ये सब महसूस हो सकती। ऐसे समय में परिवार का समझे का चाहिए कि नवप्रसूता का आराम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती उका केवल काम पर लौटे के लिए प्रेरित नहीं करे का है बल्कि शरीर का ठीक होए तक उका आराम दे का है। कईयों घरन में कहा है ये मान्यता है कि प्रसव के बाद महिला का कम पानी देखा चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ खाए से बचना चाहिए कि मतलब जो सही नहीं ना ये धारणा न रखे पानी बहुत ज़रूरी है लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। स्तनपान कराए के लिए महिला का अधिक से अधिक जो नवप्रसूता ही उका अधिक पोषण और पर्याप्त तरल पदार्थ की आवश्यकता होती। यदि महतारी पर्याप्त भोजन ना करी तो उसकी कमजोरी बढ़ी और बच्चे का भी पूरा पोषण नहीं मिल सकता है ना मिल पाई। इसके लिए कहा है भोजन में दाल है दूध है दही हरी पत्तेदार सब्जी हैं फल है दलिया खिचड़ी बाजरा रागी चना गुड़ तिल मूंगफली और मौसमी खाद्य पदार्थ शामिल करे का चाहिए। और जो नवप्रसूता जो महिला है उसके लिए आयरन और कैल्शियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई जौन नवप्रसूता ही सोचती हुई है कि प्रसव के बाद दवा बंद कर दे का चाहिए।

0: लेकिन डॉक्टर और ANM अक्सर सलाह देती हैं कि आयरन और कैल्शियम की गोली कुछ महीनों तक जारी रखे का है। आयरन शरीर में खून की कमी का पूरा करत है, जबकि कैल्शियम हड्डी और दांतन का मजबूत बनाते, खासकर स्तनपान कराए वाली जौन महतारी हैं उनका बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता होती है कि बच्चे के विकास के लिए पोषण महतारी से ही जात है। अब स्तनपान प्रसव के बाद की देखभाल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये सबका मालूम है, जन्म के का है पहले घंटे के भीतर कहा जाते है बच्चे का महतारी के दूध मिलने का चाहिए। कई बार परिवार में पुराने भ्रम होते हैं, पहला गाढ़ा पीला दूध नहीं देखा है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है पंचे। यही पहला गाढ़ा पीला दूध जी का कहा जाता है कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए अमृत समान होते हैं, इमरोगन से लड़की बहुत शक्ति होती और ये बच्चन का जो नवजात बच्चे हैं तना तना के संक्रमण से बचाए थे। माँ कही समझे का चाहिए कि 6 माह तक केवल अपन दूध पिलाए का है और उके लिए पर्याप्त होता है बच्चे के लिए। प्रसूता की मानसिक स्थिति के भी ध्यान रखे का होता है कि कई बार जौन प्रसव के बाद महिलाएं हैं जो नव प्रसूता हैं अचानक बहुत भावुक हो जाती हैं, कभी कभी बिना कारण रोती हैं, चिंता करती हैं, घबराहट होती, अकेलापन महसूस होता है उनका, मतलब वो सामान्य नहीं रहती हैं। लेकिन यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसका कहा जाता है प्रसवोत्तर अवसाद, इसके संकेत है। ऐसे में परिवार का महिला का डांटे करना चाहिए, उनकी भावना के समझे का चाहिए, उनका नजरअंदाज नहीं करे का है। पति और परिवार के भावनात्मक सहयोग इस समय सबसे बड़ा सहारा बनत है, कोई भी कौनो न प्रसूता हुए। और बहुत सी बातें देखो हो गई, ये सब बातें ऐसी हैं ना कि आपका जाने का होता है कि मतलब केवल नव प्रसूता मतलब उका प्रसव हुई का लड़का बच्चा आप गोदी में अपन ले लो कन्या में और उके बाद उका ऐसे छोड़ा तो ऐसा छोड़ा तो कई घर पर बाबा हम देखा यूँ ना कहो कि हम नहीं करें, सब अपनी अंतरात्मा से पूछो ऐसा करत हो, अगर करत हो तो आइंदा ना करे हो। सब लोग अपनी भौरिया का जीव जान से चपटाए के रखा हो, जितना जीव जान से रखिए हो नव प्रसूता का उतनी जल्दी वो सही हुई, अपन उके जो अंदर के हार्मोन है वो बिल्कुल सही रही है, जो उनके अंतर मन की चिंता है व्यथा है और जो झुंझुलाहट है और जो प्रसवोत्तर जो मतलब स्थितियां जो उन्हें बदलाव होते हैं वो सब बड़ी जल्दी नॉर्मल हुई हैं। उनके साथ साथ का होता है सब घर की गाड़ी नीके तनीके चलती, यही वधे कहा है कि घर की गाड़ी जौन है एक मनई के खींचे नहीं खिंचती, सब मिल के उका चलात है, खींचना नहीं कहा जाते है, मोहब्बत से प्यार से ऐसे रंग भरा जाते है घर माँ। और देखो ये जौन कार्यक्रम है ये कार्यक्रम तो पंचे आप जानते हो कि घर परिवार के लिए है, तो वैसे मातृ शिशु स्वास्थ्य के है तो महतारी बच्चा की बात करें। अब जैसे महिलाएं हैं देखो जैसे जैसे समय बीतत है प्रकृति जब कोई चीज़ का जन्म देती ना तो उके उम्र भी होती, चाहे कोनो पेड़ पौधा देख लो छोटा सा होता है उके बाद इतना बड़ा हो जाता है जाने कितनी शाखा कितने बड़े बड़े दरख्त ऊपर लटके दिखत हैं। कोई अगर 86-87 साल के कोनो बूढ़ ठूढ़ मने दिख जाए तो उससे पूछो तो कहिए कि अरे हमरे सामने तो फलनवा ही लगाइस रहा और देखो क्या इके बिरवा देखो कितना बड़ा होगा, उके मन का शांति मिलती, ऐसे ही शरीर होता है। अब जैसे मान लो ये महिलाएं हैं उनके तो देखो शरीर प्रकृति अलग तरह से बनाई से, उनके शारीरिक संरचना अलग ही है। और जब तक कहा जाता है कि प्रोस्टोजन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है कोई भी महिला के लिए जिससे बच्चा बच्चा पैदा होता है महावारी से, तो वो जब समाप्त हो जाते हो धीरे धीरे जो वृद्ध हुआ ना उनके शुरू होता है स्टार्ट होता है तो का होता है हर चीज़ की देखो उम्र होती, तो जैसे बाल झड़त हैं जौन त्वचा है ढीली पड़त थी दांत वात थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो ऐसे समय में कि जो महिलाएं ही ध्यान से सुने जिनके दांत वात में कौन समस्या आई रही ई भेंटवार्ता आज उन्हीं के लिए है, तो आप सुनो और इम्मा पूरा डॉक्टर साहब के परिचय भी है तो ध्यानपूर्वक सुनो। श्रोताओं आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के दंत संकाय के प्रोस्टोडोंटिक्स विभाग के प्रोफेसर साथ ही विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूरन चंद जी को, जो आज हमें जानकारी देंगे कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में दांतों की किस तरह की समस्याएं आती हैं और कब से इस तरह की समस्याएं आनी शुरू होती हैं। डॉक्टर पूरन चंद जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। जब हम बढ़ती उम्र की बात करते हैं तो जो एज ग्रुप है यानी कि किन उम्र की महिलाओं को हम इस एज ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र का तो मतलब वही हुआ कि जब किसी भी महिला को मेनोपॉज हो जाता है या उस कगार पर है

0: क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सही कहा है आपने कि हमारे भारतीय महिलाओं में उम्र के साथ साथ बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, उसके हिसाब से हमारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेज में जो आपने बताया कि पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है, जिसमें शरीर में बहुत से ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं जो कुछ हानिकारक भी हो जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं, और फिर उसका सही ढंग से उपाय न किया जाए तो वो आगे चल के एक समस्या बन जाती है। देखा जाए तो 45 से 50 साल के बीच में भारतीय महिलाओं में ये आता है, और कुछ लोगों में थोड़ा सा पहले यानी 40 साल से भी हो सकता है, ये आगे 55 साल तक जा सकता है, कुछ लोगों में 60 के भी जाता है। लेकिन जो हम वैज्ञानिक रूप से देखा जाए या साइंटिफिकली देखा जाए तो इसको माना जाता है कि 44-45 से लेके आपका 50-55 तक चला जाता है। तो इस स्थिति में हमारे शरीर में जो हमारे भारतीय महिलाएं हैं उनमें शरीर में बहुत से ऐसे हार्मोनल चेंजेज होते हैं जो शरीर के ऊतकों पर या शरीर क्रिया पर अपना प्रभाव डालते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि मेनोपॉज शुरू होते ही या फिर जब मेनोपॉज हो जाता है किसी भी महिला में, तो उस समय जैसे शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव पड़ता है, दांतों पर भी पड़ता है। अब ये जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वृद्धावस्था में जो बहनें हैं ये कार्यक्रम सुन रही हैं, वो ये ध्यान से सुने कि जब मेनोपॉज हो जाता है और आप एक तरह से कहा जाए कि धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ती हैं, तो दांतों की संरचना, उनके मौखिक स्वास्थ्य में उम्र के साथ कई जैविक बदलाव भी आते हैं, तो क्या ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं दांतों में, ये बताइए।
1: जब मेनोपॉज के करीब पहुंचते हैं, जिसे पेरी मेनोपॉज बोलते हैं
0: जी,
1: पेरी मेनोपॉज में ही सिम्टम ज्यादा आते हैं। अब सिम्टम में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, मुंह में लार बनने की जो मात्रा है कम होने लगती है, तो मुंह सूखना, प्यास ज्यादा लगना, दांतों में इरिटेशन होना यानी मंसूड़ों में खिंचाव आना, टेस्ट बड भी डिमनेस हो जाता है यानी टेस्ट हमारा बहुत अच्छा नहीं लगता है खाने में, स्वभाव में आता है कि चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है तो शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जब ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाते हैं तो हड्डियों में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, दांतों को कमजोर होना, ये सब चीजें आती हैं। तो अक्सर देखा गया है कि इस उम्र की महिलाएं जो आती हैं, जो अपनी परेशानी बताती हैं, उसमें ऐसी चीजें देखने में नजर नहीं आएगी, परेशानी तो उनको रहती है, लेकिन कभी कभी हम भी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इनकी परेशानी शुरू कहाँ से है। तो हमें सबसे पहले उम्र को देखना होता है, फिर हम माहवारी की स्थिति को पूछते हैं कि हाँ किस स्टेज में है, क्या हो रहा है, तब जा करके उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हाँ ये चीजें उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। ये कभी कभी पेशेंट आती है, जो महिलाएं हमारी आती है कि साहब वो दांतों में अजीब सा दर्द होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि किस तरह से दर्द है, जबकि दांत में कोई सड़न नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, कहीं पारिया की शिकायत भी नहीं, लेकिन दर्द है। कभी होता है कि जब हमारा मुंह में लार बनना कम हो जाता है तो कुछ समस्याएं अपने आप होने लगती हैं, कि जैसे है कि दांतों पर प्लाक बनने लगना, क्योंकि जब सलाइवा है लार नहीं बनेगा तो मुंह की सफाई भी नहीं हो पाती है, या बात करने में जबान सही ढंग से नहीं चलेगा तो दांतों पर पपड़ियां जमने लगती हैं, यदि लार कम बन रहा है तो दांतों में सड़न भी शुरू होने लगता है, फिर कभी कभी होता है कि ज्यादा हो गया तो मुंह से बदबू भी आने लगता है। कुछ कुछ महिलाएं आती हैं कहती नहीं हमारे मुंह से लार ज्यादा बनता है, वो तब होता है जब पारिया की भी शिकायत हो तो लार बनने लगता है। तो ये समस्याएं आती हैं और उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, एक तो अपने ओरल कैविटी को, अपने दांतों के डॉक्टर को दिखावें कि जो पहले से कोई समस्या है उसको ठीक कर सकें, यदि हार्मोन का ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हमें महिला चिकित्सक से मिलें, वो उसका अपना इलाज करेंगे, और यदि कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले ये चीज कि दांतों का सफाई ठीक रखें, अपने भोजन पर ध्यान दें क्योंकि उनके लिए इस उम्र में कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसी चीजें जिसमें कैल्शियम मिलती है भोजन में प्रचुर मात्रा में लें, मल्टी विटामिन यानी जो सीजनल फल और सब्जियां हैं उनमें ज्यादा लें, उनके द्वारा जो हार्मोन के चेंजेज आने वाले हैं वो थोड़े से कम होते हैं, विटामिन सी की डिमांड बढ़ जाती है, तो भोजन में एक संतुलित भोजन और प्रचुर मात्रा में पानी का पीना, ये तीनों चीजें करें तो इन सब समस्याओं से हम बच सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार पूर्वक बातें बताई कि जब मेनोपॉज हो जाता है किसी भी महिला के और कई तरह के जब परिवर्तन शरीर में आते हैं तो इस तरह की दांतों से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। आपने मसूड़ों की बात की, दांतों की बात की, और दांतों की जड़ों में भी कभी कभी देखा गया है कि सड़न पैदा हो जाती है, मसूड़ों में सिकुड़न हो जाती है, आपने प्लाक की बात की कि उसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं होती हैं, दांतों का घिसना ये एक आम समस्या है, मुंह का सूखापन आपने बताया कि मुंह सूखता है, जबड़े की हड्डी जो है उसका आकार चेंज होता है, और क्या क्या बताना चाहेंगे?
1: हाँ, जो दांतों के घिसने की बात बताते हैं कि देखिए उस समय मनोदशा भी थोड़ा सा परिवर्तित होता है
0: जी,
1: शरीर में चिड़चापन आता है, अक्सर देखा गया कि परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव सी स्थिति हो जाती है क्योंकि हर चीज में उनको थोड़ा सा चिड़चापन आ जाएगा और उसकी वजह से

0: बढ़ता है। जब तनावग्रस्त होगी तो फिर वह दांत पीसने की आदत भी आ जाती है, दांत घिसने भी लगते हैं। दूसरे कैल्शियम यदि कम हो रहा है तो कैल्शियम होने की वजह से हड्डी गल रही है, हड्डी के साथ साथ दांतों में से भी कैल्शियम निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये समस्याएं तो अनएक्सप्लेन रहती हैं, देखने में नहीं लगेगा क्या है, लेकिन ये बताएं कि दांतों में अजीब सा दर्द हो रहा है, जड़ों में भी दर्द होता है, या चबाने में हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, या ये खाने में कि हम मसूड़ों में कभी कभी ये भी आता है कि हाँ छाले बन जा रहे हैं, जबान पर कहते हैं कि हाँ ड्राइनेस होने लगती है, खाने में टेस्ट नहीं मिलता है, कि जो चीज़ खाएंगे वही पहले चीज़ें जो खाती थी ठीक लगता था, अब उनको टेस्ट नहीं मिलता तो बदलती रहती है, अरे नहीं ठीक बना, वो नहीं ठीक बना, फिर बनाने वाले दोस्त देने लगते हैं तुमने नहीं अच्छा बनाया
1: जी।
0: तो ये सब समस्याएं थोड़ी सी यदि हम उसको सोच समझ के करें तो हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, अपने भोजन को थोड़ा सा और अच्छा करके उस जो हार्मोनल डिसबैलेंसेज हो रहे हैं हम उसको भी कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी हो रहा है तो अपने चिकित्सक से मिलें, हो सकता है उनको और भी थेरेपी की जरूरत हो तो देंगे और आप स्वस्थ रहेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, ठंडा गर्म लगना दांतों में, क्या इसी दौरान ही इस तरह की समस्या आती है या ये एक आम समस्या है?
0: ठंडा और गर्म लगने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, प्रेगनेंसी में ठंडा पानी लगने की शिकायत बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में जब हम प्रथम तिमाही होती है उसमें वहाँ भी हार्मोन की ही वजह से महिलाओं में उल्टी करने की जो वोमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो एसिड हमारे मुंह की तरफ से आने लगता है और वो इनेमल में जो हमारा मिनरल्स है उसको कम करने रहता है, उससे ठंडा पानी लगने की शिकायत बढ़ती है। यदि दांत हम बहुत रगड़ करके जो हम टूथपेस्ट या पाउडर प्रयोग में ला रहे हैं और वह एब्रेसिव है तो उससे दांत घिसने लगता है, उससे भी ठंडा पानी लगता है। या ब्रश हमारा जो कठोर है, हार्ड है, उसको यदि हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हमारे इनेमल घिसने लगते हैं या जड़ें घिसने लगती हैं, उसकी वजह से भी ठंडा लगता है। या दांतों में कहीं कैविटी है, सड़न है, उसकी वजह से भी ठंडा पानी लगता है, तो वो दंत चिकित्सक को दिखाने के बाद ही देखें कि उसका कारण क्या है। कारण का निवारण ही उसका इलाज है कि यदि ब्रश की वजह से हो रहा है, टूथपेस्ट की वजह से हो रहा है, टूथ पाउडर की वजह से उसको बदल दें, वो आप मुलायम ब्रश यूज करें, इसे टूथपेस्ट यूज करें जो दांतों को घिसे नहीं। यदि दांतों में जड़ों में खुलने की वजह से आ रहा है तो वो पायरिया की शिकायत यदि हो रही है उसके लिए दिखाएं। यदि कहीं कैविटी है या दांत में चोट लग के उसका फ्रैक्चर हो गया है उसका इलाज कराएं। तो ये सिम्टोमेटिक इलाज जो कारण हो उसी के हिसाब से करें। लेकिन हाँ, कई कई कारण होता है कि जब हड्डियां गलने लगती हैं, दांतों में से गलने तो भी अजीब सी दर्द की शिकायत लेके आती हैं, और कभी कभी वो ठंडा पानी को, मीठा को या खट्टे से, ये तीन चीजों से ही दांतों पर दर्द का असर आता है। और दांतों में जो भी असर आएगा वो दर्द के फॉर्म में ही आएगा और इसे नहीं लगेगा कि कुछ और हो रहा है। तो ठंडे से भी दर्द हो सकता है, मीठे भी से दर्द हो सकता है और खट्टे से भी हो सकता है। ये तीनों कारण है और उसमें जो कारण है उसी का हटा करके उसका इलाज करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या कोई जेनेटिक कारण भी होता है कि मान लीजिए कि माँ को हुआ हो दांतों से जुड़ा कोई रोग मेनोपॉज के बाद, या फिर नानी को हुआ हो तो जीन्स के माध्यम से वो इस तरह से आते हो?
0: इतना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीन से संबंधित हैं, लेकिन इसका लोकल और शारीरिक रूप से प्रभाव ज्यादा है कि हम अपना रहन सहन कैसे रख रहे हैं, हम अपना खान पीन क्या रख रहे हैं, उससे ज्यादा प्रभावित है। कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी हम अपने भोजन पर अच्छा व्यवस्था रखें, जो संतुलित भोजन लें और अपनी दिनचर्या ठीक रखें और अपना योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन जो भी आप करते हैं वो अपने स्वस्थ रहने के लिए आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हमारी परेशानियां यदि होने भी वाली होगी तो कम हो जाएंगी।
1: जी तो देखो, ये रहे डॉक्टर पूरन चंद जी, हम भले ध्यान पूर्वक सुनत रहें कि काका बताए रहें पूरन चंद जी, और पूरी हमका उम्मीद है कि जो हमारी बहनी लोग हैं उनका ये सब बातें अच्छे से जानकारी सही से मिली हुई है कि डॉक्टर साहब काका बताइन हैं। और ये हम आपका बताए दी एक बार फिर से, डॉक्टर पूरन चंद जी प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग दंत संकाय किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के, मतलब कहा जाए वन पर प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं। तो इनकी जानकारी आप तक पहुंचावा है हम, इका हमका लिखे भी मेल वेल माँ कि कईस लगा कार्यक्रम, कहा जाए दो चार मेल आया था तो उससे कैसे पता चली कि कईस इतने बड़े बड़े डॉक्टर अपना समय, मतलब हम लोगों का देते हैं आपे के बदे, तो आप लोग कम से कम मेल करो कि कईस लगाते कार्यक्रम। आप देखो जैसे मेल करिन हैं, ये हैं विजयपाल यादव जी, ये लिखिन हैं कहाँ से, किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला लखीमपुर खीरी से शुभम यादव हैं, ऋचा यादव हैं, शिखा यादव हैं, गुड़िया राजेश कुमार और विजय पांडे। लिखिन है कि 3 मई के कार्यक्रम मातृत्व की सही आयु बहुत नीक लगा कि ज़्यादा उम्र जब हुई जाती तो काका दिक्कत आती। डॉक्टर पुष्पलता शंखवार जी बहुत उपयोगी जानकारी दीहीन और आप इनसे बतकही करो, और 90 वर्ष पूरे हुए पे दीदी जी और आप सबको आकाशवाणी परिवार का सबका शुभकामनाएं। भैया शुभकामनाएं तो आप सबका, कैसे आप लोग ई 90 वर्ष के साक्षी हो और आप लोग साथ साथ चल रहे हो तब है हम लोग पीछे पीछे चल पाए रहें।

अब देखो, एक हमारे श्रोता पंच हैं जिनका हमेशा एक मतलब एक शिकायत रहा थी रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर के जौन श्रोता पंच हैं कि हमारे आंगनबाड़ी में नहीं पढ़े हो, तो हम आज उनके भी नाम पढ़े दे रहे हैं। राम राज राजू भानु, राम शंकर पत्रकार, बहाई वाले रक्षा मौर्या, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले मिर्जा इमरान बेग और घर परिवार के सब सदस्य, भैया आज आपकी हम जो शिकायत रही वो दूर कर दिया है। और यही के साथ देखो, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना गोलू, कुसुमबाई बापू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी हैं, यहू लिखिन है कि सब बहुत अच्छा लागत है, नीक लागत है। जो जो बात बताई जाती सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के बारे में जो बताए हो, मातृत्व की सही आयु के बारे में बताए हो, 3 तारीख के कार्यक्रम बहुत निक लगा। एक देखो, इंद्र कुमार मिश्रा जी भी हैं, ये लेकिन आंगनबाड़ी कार्यक्रम ग्रामीण श्रोता भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। 3 मई का मातृत्व की सही आयु के बारे में जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी, गीत बेहद पसंद आवा। और ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा, आशा अवनीश, विनीश अक्षत, गरिमा रजनी के साथ सब घर परिवार के मनई। और दुर्गेश नागनपुरे भैया लड्डू ढेर सारी सगर सगर लड्डू भेजिन है, नमत्ते उकर इन है, सुपर लिखिन है। और इनके साथ एक और हैं सतीश मिश्र जी, बहु कुछ लिखिन है कि 90 साल पूरे होए के लिए आप सबका बधाई। और हम ये आपका बात कहा रहा कि सामान्य प्रसव और ऑपरेशन द्वारा प्रसव ई बात जौन है बताते हैं आपका, जो डॉक्टर बहनी होती हैं वो बतौती हैं कि आपका सामान्य प्रसव कराए का है कि कैसा ई सब। जब डॉक्टर के पास जाइए हो ना, जब गर्भधारण करती हैं मेहरिया जौन घर की हैं और रजिस्ट्रेशन करवती हैं, तब उनका पता चली कि डॉक्टर बहनी काका कह रही हैं और काका नहीं, तो उनकी देख रेख में रहो। काहे से कि हो सकता है डॉक्टर साहब के पास आप जाती हो सीएससी पीएससी पे और सब कुछ सही है, आखिर समय में आइस कुछ हो जाए कि ऑपरेशन करे की नौबत आ जाए, तो गलती से भी जर को इन्ना सोचे हो कि घर पे प्रसव हो जाए तो अच्छा है। देखो एएनएम बहनी आए रही, आशा बहुरिया आए रही, आपे के बदे आए रही, तो घर के ऊपर प्रसव की ना सोचो सरकार द्वारा। देखो काका, इतनी सारी योजनाएं, जननी सुरक्षा योजना, मातृ शिशु वंदना योजना, सुमन योजना, मातृत्व आश्वासन योजना, और योजना योजना आयुष्मान कार्ड भी है, सब कुछ है, तो भैया काहे नहीं जाता। अब जो हमारे पंच लोग सुन रहे हैं वो जाएं और उनके लाभ उठाएं, लेकिन उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराए का होता है। तो ये बात डॉक्टर तय करिए कि डॉक्टर बहनी तय करिए कि आपका ऑपरेशन से प्रसव कराए का है या आपके नॉर्मल जैसे सामान्य तरीके से मनई के प्रसव होता है, तो ये सब बातें जो उन्हें जाने के लिए आपका डॉक्टर के पास ही जाए का पड़ता है, तो वही बताइए कैसे सब कुछ सही है। अचानक पता चला कि बच्चा जो उन्हें शिशु वो थोड़े करवट ले ली, तो पता चला कि आड़ा बेड़ा होगा, तो ये सब बहुत गंभीर हो सकता है। जब तक अस्पताल पहुँचो पहुँचो तब तक लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो हमारी यही कामना है कि आप सब बिल्कुल घर परिवार समेत बिल्कुल स्वस्थ रहो और जल्दी से पता नोट कर ले। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। देव नीना सुनकर बहनी का आज के कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति, सभी श्रोता पंचन का नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को जय हिंद। तो भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम है मेरा मेल और पत्रों पर आधारित, तो सबसे पहले हम आपको मेल आईडी बता देते हैं जिसमें कि आप हमें करिए मेल और सुनिए अपनी मनपसंद फिल्मी गाने।

हमारा मेल आईडी है कार्यक्रम जवानों के लिए @gmail.com। तो जब तक आप हमें मेल करते हैं तब तक हम आपको सुनवा देते हैं मुकेश की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

देखिए भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए, और मेल भी आ गए हैं। ये मेल आया है हमारे पास सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का आपने लिखा है हमको। जवानों के लिए कार्यक्रम में ज़रूर से शामिल करिए, बिल्कुल आप लोग के लिए ही कार्यक्रम है। तो और इन्होंने गाना लिखा है पल पल हर पल कैसे कटेगा पल। तो चलिए भाई, आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं। ये है लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का।

और देखिए, ये अगला मेल आया है हमारे पास विजय पाल यादव जी का। ये है किसान रेडियो क्लब से, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी। विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी, आपने लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा वो होती है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करे, चाहे वो आपके सपने हो, चाहे परिवार हो, खुशी हो, चाहे सफलता की चाह हो, या फिर समाज की सेवा। आपसे निवेदन है कि आप हम सभी को वो बाजीगर फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। तो भाई, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं। इन्होंने बोल भी लिखे हैं कि छुपाना भी नहीं आता, तो आपको सुनवा देते हैं फिल्म बाजीगर का गीत, जिसे गाया है विनोद राठौड़ ने।

देखिए, ये मेल आया है हमारे पास ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा का। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा का, और ये भारती नागनपुरे जी का। आप सब ने फरमाइश की है सिलसिला फिल्म के गीत को सुनने की। इन्होंने बोल भी लिखे हैं सर से सर के। तो चलिए भाई, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: संदेश के पहले आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत। इसी गीत के साथ ही जवानों के लिए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। फौजी साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री।

0: पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

0: हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब सुनिए विज्ञान और किसान कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सुनील कुमार राय से की गई भेंटवार्ता। पशुओं में खुरपका मुंहपका कारण और निवारण। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।

0: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं तो वहां पशुओं में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे पशुओं में खुरपका मुहपका रोग। इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास डॉक्टर सुनील कुमार राय साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में खुरपका मुहपका रोग है क्या?
1: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। खुरपका मुहपका विषाणु जनित रोग है और यह एक एप्थस वायरस ग्रुप के वायरस से ये रोग जो है उत्पन्न होता है और इसकी फैमिली जो है वो पिकोरना वायरिडी है। इस विषाणु की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके 7 टाइप होते हैं तथा 100 प्रकार के सब टाइप होते हैं।
0: अच्छा,
1: 7 जो टाइप होते हैं वो हैं ओ ए सी, एशिया 1, एशिया 2, SAT1, SAT2, SAT3 और इनके 100 सब टाइप होते हैं। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो ये 100 जो अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं इस विषाणु की, वह एक ही रोग को जन्म देती है, वह है खुरपका मुहपका।
0: इसके लिए कोई खास समय है कि जब खुरपका मुहपका का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है?
1: नहीं, यह रोग 12 मास फैल सकता है पशुओं में और इस रोग की जो सबसे बड़ी खासियत है ये एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब कि ये हवा से ही यह रोग जो है फैलता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो अगर किसी किसान के घर पे अगर किसी पशु को खुरपका मुहपका रोग अगर हुआ है तो वो किसान अगर उस पशु का दूध निकाल रहा है, जिस बर्तन में दूध निकाल रहा है, जिस कपड़े को पहन करके दूध निकाल रहा है, उन कपड़ों से, बर्तन से, हवा से, यहाँ तक कि उनके चप्पल जूते से भी अगर वह उस घर से दूसरे घर में, उस गांव के या उस शहर के दूसरे मोहल्ले में भी जाता है तो वो किसान जो है उस रोग को फैला सकता है। कुल मिला जुला करके संक्रमण इतना तेज होता है कि अगर एक गाँव में एक पशु को हुआ तो एक हफ्ते के अंदर पूरा गाँव इस रोग से प्रभावित हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा विकासखंड, पूरा मोहल्ला इस रोग से प्रभावित हो सकता है।
0: यानी ये संक्रामक रोग है
1: जी।
0: तो इसमें खास लक्षण क्या होते हैं?
1: सबसे पहले जब इस रोग की शुरुआत होती है तो 105 से 106 डिग्री के आसपास पशुओं में बहुत तेज बुखार होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जैसा कि रोग का ही नाम है खुरपका मुहपका, मतलब खुर का पकना और मुंह का पकना। खुर में छाले पड़ जाते हैं, पैरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं। और इस रोग की एक खासियत और भी है कि ये जिन पशुओं के, ऐसे पशु जिनकी खुर बीच में फटी होती है उन्हीं पशुओं में यह रोग होता है।
0: हाँ।
1: जैसे गाय, जैसे भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, इन पशुओं के खुर फटे होते हैं। अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो क्लोवन फुटेड एनिमल, या ऐसे पशु जिनके खुर फटी होती हैं, ऐसे पशुओं में ही यह रोग खुरपका मुहपका पाया जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब, बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं कि पशुओं में खुरपका मुहपका हो ही ना?
1: कोई भी विषाणु जनित रोग जब होता है और वह रोग जब धीरे धीरे धीरे धीरे जब समाप्ति की ओर होता है तो उसमें फिर जीवाणुओं का संक्रमण होता है।
0: अच्छा,
1: तो इस रोग की भी खासियत है जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब यह रोग शुरू होता है तो पहले बहुत तेज बुखार होगा, पशुओं के जीभ में या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुर में छाले पड़ जाते हैं, अगर संक्रमण बहुत ज्यादा तेज है तो यहाँ तक कि थन में भी छाले पड़ जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और 3 से 4 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक जब यह रोग जब तक रहता है, जब तक विषाणु का प्रकोप रहता है तब तक यह छाले दिखाई देते हैं, और इसके बाद जब यह छाले सूखने के कगार पे आते हैं तो ये फट जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और जब ये छाले फटते हैं तो उसमें जीवाणुओं का संक्रमण होता है। हमारा स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है जो इसमें बहुत तेज संक्रमण करता है, और जब यह संक्रमण होता है तो उसमें जो है मुंह में घाव पड़ने लगते हैं, खुर में घाव हो जाते हैं, थन में घाव हो जाते हैं। तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब पशु के पूरे मुंह में या जीभ में अगर छाले पड़ते हैं और वो फट जाते हैं और घाव हो जाता है तो पशु खाना चारा छोड़ देता है, जिससे पशु धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। खुर में जब घाव होता है तो खुर में मक्खियां बैठती हैं, जिससे जो है कीड़े पड़ जाते हैं, पशु लंगड़ाना शुरू कर देता है। थन में जब घाव होते हैं और थन में जब छाले फटते हैं तो जब घाव होगा तो उसमें भी मक्खियां बैठेंगी, कीड़े पड़ेंगे, और जिसके कारण दूध, पशुपालक दूध नहीं निकाल पाता है, जिससे जो है थनेला होने की संभावना रहती है।
0: यानी प्राथमिक संक्रमण विषाणु का भले होता है लेकिन अगर सावधानी न बरती गई तो जीवाणु और अन्य समस्याएं भी होंगी।
1: जी, जीवाणु का जो है जिसको कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि द्वितीय रूप में जो है जीवाणु का संक्रमण होता है, जिसके कारण जो है इस बीमारी में परेशानियां पशुपालक के लिए ज्यादा

0: बढ़ जाती है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि हमारे जो भी हमारे पशुपालक भाई या बहने हैं, वो हमारे पशु को पालते हैं दूध उत्पादन के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह रोग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस रोग के होने के बाद पहले तो रोग के कारण ही दूध की कम होता है, इसके बाद जब पशु के छाले पड़ते हैं और वो फटते हैं, इसके बाद जब घाव होता है पशु महीनों तक खाना छोड़ देता है, पैर से लंगड़ाना शुरू कर देता है, थन में छाले और घाव पड़ने के कारण थनेला होने की संभावना रहती है, तो इससे दूध उत्पादन बिल्कुल शून्य हो जाता है, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से पशुपालकों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है।
1: तो डॉक्टर साहब, बचाव के उपाय कौन कौन से हैं जो पशुपालक भाई आसानी से अपना लें?
0: अगर हम गाँव के स्तर पे बात करें तो इस रोग में जब तक विषाणु जनित जब ये रोग रहता है, उस समय नीम की पत्तियों को पानी में खौला करके, जब पानी ठंडा हो जाए तो जितने भी छाले चाहे थन में पड़े हैं, खुर में पड़े हैं या मुंह में पड़े हैं, उनसे उसकी धुलाई की जा सकती है
1: जी।
0: बाकी बाजार में या पशु चिकित्सालयों पे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम पोटास कहते हैं,
1: लाल दवा
0: पोटास को हम जो है एक चुटकी भर पोटास हम लगभग 5 लीटर पानी में डाल लें और उससे जो है मुंह की, खुर की और थन की धुलाई करें। ये तो हमारा प्राथमिक उपचार हो गया। इसके अलावा जब वो घाव बन जाता है, जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ये कह लीजिए कि द्वितीय रूप से जब उसमें जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में जो भी पशुओं के लिए एंटीबायोटिक उपलब्ध है वो दे दें, दर्द निवारक दवा दे दें, जिससे धीरे धीरे जो है उसमें राहत मिलती है।
1: और वो भी राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार?
0: जी, पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार जो है, जो भी उनके द्वारा सलाह दी जा रही है या चिकित्सालय से जो दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसके अनुसार जो है पशुओं का उपचार किया जाए, तो जल्दी से जल्दी जो है यह रोग सही हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही उपचार की बात, बचाव के उपाय में क्या टीकाकरण भी संभव है?
0: देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो पशु हैं उसमें जो मुख्य खासियत ये होती है कि खुरपका मुंहपका जो रोग है, यह आर्थिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, इस वजह से हमारी भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारों द्वारा इस रोग के प्रति संज्ञान लिया गया है। राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त पशु चिकित्सालयों से हमें साल में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पे इस खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण कराया जाता है, जिससे जो है पशुपालक लाभान्वित हो सकते हैं और ये टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है।
1: और शत जानवरों को टीका लगवाना जरूरी है?
0: जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो है 100 प्रजातियां होती हैं और हर प्रजाति के में ये क्षमता होती है कि इस रोग को जो है ये उत्पन्न कर सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका बचाव जो है वो टीकाकरण ही है। तो पशुओं में इसीलिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है और टीकाकरण कराने से ही जो है धीरे धीरे जो है इस रोग से हम निजात पा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में खुरपका मुंहपका कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 7905874521, 7908574521, 7908574521।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का पशुओं में खुरपका मुंहपका कारण और निवारण के बारे में? डॉक्टर,
0: सबसे पहले तो मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक माइक्रो प्लान बनता है, एक शेड्यूल बनता है, हर ग्राम पंचायत के लिए जो है एक तिथि निर्धारित होती है, तो मैं अपने पशुपालक भाइयों और बहनों से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे पशु चिकित्सालय के अंतर्गत कार्यरत अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर आपके दरवाजे तक खुरपका मुंहपका का टीकाकरण कराने जाएं, तो आप लोग निश्चित तौर पे आप जो है टीकाकरण कराएं, जिससे जो है सबसे पहले हमारा चाहे पशुपालन विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उसमें एक ही नारा लगाया गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि उपचार से बचाव जो है सबसे बेहतर उपाय होता है। तो हम टीकाकरण के माध्यम से हम खुरपका मुंहपका पर विजय पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। अतः मैं सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि इस रोग से आप लोगों को मुक्ति मिल सके, आर्थिक दृष्टिकोण से आप लोग जो है सुदृढ़ हो सके।
1: डॉक्टर सुनील कुमार राय साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार राय से की गई भेंट वार्ता, विषय था पशुओं में खुरपका मुंहपका कारण

0: निवारण। भेंट करते थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। राजित राम पुत्र कुरकुट बेलरी थाना मल्लीपुर जनपद श्रावस्ती से सूचित करते हैं कि इनके पिता कुरकुट पुत्र छुटकाई 10 मई 2026 से कहीं लापता हैं। कुरकुट का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 81 वर्ष, कद 157.48 सेंटीमीटर, रंग ये हुआ गोल चेहरा। जिस समय घर से निकले थे इन्होंने लाल रंग का बनियान हाफ निक्कर पहना हुआ था, साथ में सफ़ेद गमछा भी लिया था। इनके बाएं अंग में पैरालिसिस यानी फॉलेज है। इनके मिलने की सूचना आप इस पते पर दे सकते हैं, राजित राम पुत्र कुरकुट बेलरी थाना मल्लीपुर जनपद श्रावस्ती। श्री अब्दुल रहीम ग्राम पूर्वामीर कानपुर नगर से सूचित करते हैं कि दिलशाद, उनके पुत्र दिलशाद 5 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। दिलशाद का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 17 वर्ष, लंबाई 4 फीट 10 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा, इनके दोनों कान छिदे हुए हैं। दिलशाद जब घर से निकले थे इन्होंने ग्रे टी शर्ट और हरा लोअर और सफ़ेद जूता पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं, 8429780186। मोबाइल नंबर एक बार फिर से 8429780186। आप इन सबके मिलने की सूचना इस पते पर भी दे सकते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, देश की धड़कन। इस समय 2:45 हुए हैं और ये समय होता है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी का। तो श्रोताओं, आज हम आपको बता दें, ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव के अवधि युगल लोकगीत आप सुन सकते हैं। और सबसे पहले ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव से सुनते हैं ये सोहर।

अभी आपने ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव के युगल सुरों में सुना ये सोहर, और आइए अब ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव के युगल सुरों में सुनते हैं ये काजर गीत।

अभी आपने सुना ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव के युगल स्वर में ये काजर गीत। और आइए कार्यक्रम के अंत में ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव के युगल स्वर में सुनते हैं ये नक्ता।

वाचिक मीटर था 747 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

सरता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। अभी आपने सुना ममता श्रीवास्तव एवं संगीता श्रीवास्तव के युगल स्वर में ये नकटा। आपके साथ संगत पे थे ढोलक पे अनूप कुमार मिश्र, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर आशीर्वाद कठेरिया। इसी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माद्री अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, आपको बता दें एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय होने को है शाम के 5 और हम हाजिर हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में जन कल्याण पर केंद्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख और प्रमुख जनसंख्यिकी समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए की बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध किया। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। ये प्रणाली उपग्रह सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग को बाधित करके और सिग्नल स्पूफिंग तथा भ्रामक जैमिंग करके दुश्मन के GNSS रिसीवर के प्रदर्शन को कम करने में सक्षम है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम के वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG और PNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस समय वक्त है शाम के 5:05 और ये वक्त है, हम आपको बता दें, आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है और सरकार के 12 वर्ष पूर्व होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस विषय पर कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 11:10 से। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। युवा तरंग कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा समाज आधारित अर्थव्यवस्था, इस विषय पर भेंटवार्ता डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। नई उड़ान कार्यक्रम में आज शाम 5:45 पर सुनिएगा OB आधारित कार्यक्रम विषय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

है फिट इंडिया, जल संकट विनाश की आहट। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान आप सुनेंगे आज शाम 6:30 से। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के लिए विषय है खरीफ उत्पादन की तैयारी में उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। कानून की बात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 से। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा ऐश्वर्या द्विवेदी एडवोकेट हाई कोर्ट से अतिश श्रीवास्तव की बातचीत, विषय होगा पॉस्को एक्ट 2012 में बदलाव। बातों बातों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 सुनिएगा श्री मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे उस्ताद अहमद हुसैन का राग यमन में शहनाई वादन। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:20 पर सुनिएगा मुक्ता चटर्जी के गाए गीत एवं भजन। श्रोताओं आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कल आप सुनेंगे साइंस एंड टेक विषय पर कार्यक्रम। कल आप सुनिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान का उद्बोधन। और कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात 11:10 से। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:10 पर सुनिएगा जल विलय उर्वरकों से फसल पोषण। श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:45 पर। और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 7 आप सुनेंगे महिलाओं के लिए आहार में कैल्शियम और आयरन का महत्व, आलेख एवं वाचन नीना सोनकर का। जिले की हलचल कार्यक्रम होगा कल सवेरे 9:15 पर। और उर्दू कार्यक्रम के तहत कल सवेरे 9:30 से समाअत फरमाइएगा नकमनी तहरीर आसिफ इकबाल की। घर आंगन कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वार्ता, विषय है खेल के मैदानों में बच्चों के व्यक्तित्व देते नए आयाम। वार्ताकार डॉक्टर मंजू शुक्ला। और कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:15 से। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दोपहर 2:30 सुनिएगा खरीफ सब्जियों की अगेती खेती, इस विषय पर डॉक्टर रविन्द्र कुमार तोमर से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। कल शाम 5:10 पर कार्यक्रम होगा युवा तरंग। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा समाज कार्य में भी है रोजगार के अवसर, डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी की वार्ता आपको सुनवाएंगे। नई उड़ान कार्यक्रम होगा कल शाम 5:45 पर। और लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कौशल विकास से सशक्त होता ग्रामीण भारत, डॉक्टर आसिया बानू की वार्ता। खेती किसानी के कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर सुनिएगा नए बाग लगाने की तैयारी, इस विषय पर भेंटवार्ता डॉक्टर कृष्ण मोहन चौधरी से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत आप सुनेंगे। खेल जगत कार्यक्रम होगा कल शाम 7:30 से। और हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8 सुनिएगा सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर प्रभाव, इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ का राग ललित में सारंगी वादन। और रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद अहमद अली खान का राग तोड़ी में गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर आपको सुनवाएंगे चंदन दास की गायी गसलें। श्रोताओं ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:10। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में, जिसे लेकर आज हाजिर है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं अनुष्ठा
1: और मैं दिव्यांशु। दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम और शुरू हो चुका है आपका युवा तरंग, जो हर शाम शुरू होता है ठीक इसी ही वक्त और इसी ही जगह पर।
0: जी हाँ दोस्तों, दुनिया लगातार बदल रही है। तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया है। लोग एक दूसरे से पहले से अब कहीं ज़्यादा जुड़ चुके हैं और अलग अलग देशों में संस्कृति तथा समाज के बीच संवाद अब पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। तो ऐसे समय में एक विषय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वो है सभ्यताओं के बीच संवाद।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, सभ्यताओं केवल इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे विचारों और जीवन मूल्यों को भी दर्शाती है। दुनिया में अलग अलग भाषाएं, परंपराएं, जीवन शैलियाँ और मान्यताएं हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच संवाद ही वो माध्यम है जो लोगों को एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का काम करता है।
0: जी हाँ, और जब अलग अलग सभ्यताओं के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे के अनुभवों से वो सीखते हैं, तब समाज में सहयोग, शांति और आपसी विश्वास की भावना भी और ज़्यादा मजबूत होती है। तो आज के युवाओं के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में वही एक समाज की नींव बनाएंगे जो विविधता को स्वीकार करे और संवाद को ही प्राथमिकता दे।
1: बिल्कुल, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि संवाद किस प्रकार समाजों और सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब लाने का काम करता है। इसके साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक विशेष भेंट वार्ता, जिसमें डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी समाज आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नागेंद्र रघुवंशी, और इस भेंटवार्ता में वो बताएंगे कि समाज, अर्थव्यवस्था और विकास के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए तथा किस तरह का समाज केंद्रित दृष्टिकोण समावेशी विकास की दिशा में योगदान दे सकता है। तो फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की इस बेहतरीन गाने के साथ।

0: समाज आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, भारत की पहचान हमेशा से कृषि, कुटीर उद्योग और सामुदायिक सहयोग की भावना से जुड़ी रहती है। आज भी देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और क्षेत्र लाखों की आजीविका का आधार बना हुआ है। बदलते समय के साथ स्वरोजगार, जैविक खेती, डेयरी उद्योग और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास सामने आए हैं, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है।
0: वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं स्थानीय प्रतिभा, पारंपरिक उत्पाद और छोटे उद्योगों को पहचान दिलाने का काम भी कर रही हैं। और ये पहल न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि लोगों को अपने क्षेत्र में रहकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित कर रही है।
1: इन्हीं सब पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आज की इस खास भेंट वार्ता में डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी समाज आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर अपने विचार साझा कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र रघुवंशी। तो आइए सुनते हैं इस खास भेंट वार्ता को।
2: जीवन के सुचारू संचालन के लिए हम विविध तरह के प्रयास करते हैं और इन्हीं प्रयासों में हम देखते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उसके आधार पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही हमारा आधार होता है। क्या कुछ कार्य किया जा सकता है सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण यानी समाज आधारित जो अर्थव्यवस्था है वह कैसे फलीभूत हो सकती है, कैसे उसका एक अंग बनकर जो एक तथ्य उसका हो सकता है उसको लेकर आगे बढ़ने का जो हमारा प्रयास होता है क्या कुछ होना चाहिए, इसी बात की जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आपने सुन ही लिया, डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी साहब हैं, प्रधानाचार्य हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आपसे जानना चाहेंगे कि समाज आधारित अर्थव्यवस्था तो बहुत पहले से सुनी जा रही, चाणक्य के जमाने से सुनी जा रही है, लेकिन आज के परिवेश को अगर आप देखते हैं तो क्या कुछ कहते हैं समाज को?
3: प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज के पास उपलब्ध तथा ज्ञात दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति सेवाओं के उत्पादन एवं उपभोग के द्वारा की जा सकती है। उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन कुछ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन आर्थिक गतिविधियों से आर्थिक इकाइयों को आय प्राप्त होती है, जिसे या तो उपभोग कर लिया जाता है अथवा बचत कर लिया जाता है या निवेश कर दिया जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, लेकिन दूसरा पहलू इसका, अगर पहला पक्ष कहें, दूसरा पहलू क्या पहला पक्ष है वह यह है कि समाज है। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे समाज में उठता बैठता है, वहीं से सीखता है और फिर पढ़ाई तो बाद में आती है, लेकिन समाज आधारित तो जो अर्थव्यवस्था कहें परंपरागत से रही है उसको देखता है, समझता है और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारे पूछने का आशय यहाँ यह है कि आज का जो समाज है उसमें किस किस तरह का आप देख रहे हैं कि प्रयास किया जा सकता है, कुछ अपना विचार।
3: देखिए, समाज आधारित अर्थव्यवस्था में मेरे विचार से सर्व प्रमुख जो है वो कृषि है। आज भी करीब 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित, तो हम कृषि के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। विशेष रूप से ये COVID-19 के बाद आपने देखा होगा कि शहर की तरफ से गांव की तरफ पलायन हुआ है। जब कोविड की पहली लहर आई तो लोग गांव से अपने शहर से अपने गाँव की ओर गए।
2: बिल्कुल सही।
3: तो ऐसी स्थिति में गाँव में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अब बढ़ावा मिलेगा और काफ़ी आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि शहर छोड़ के लोग गए और गाँव में जाके अपना उन्होंने कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए, जैसे डेयरी उद्योग चलाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने जैविक खेती शुरू कर दी और कहीं अच्छा पैसा भी वो कमा रहे हैं। तो ये देखने में आया है कि अब कृषि जो है वो समाज आधारित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
2: आज भी हम समाज को देखते हैं तो विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है, जातियों के समूह से ही तो समाज बना हुआ है, ये भी कह सकते हैं एक भाग उसका वह भी है। लेकिन जब हम इस दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे बढ़ई गिरी है, लोहार गिरी है, भले उस जाति विशेष से न जोड़ा जाए, लेकिन ये स्कोप कार्य करने का, उद्योग लगाने का, आगे बढ़ने का तो है ही। अब इसको अगर समाज की जो दृष्टि आज है उस दृष्टि को इस उद्योग में उतारने की हो तो क्या कुछ इसके लिए सरकारी प्रयास या फिर सामाजिक प्रयास या व्यक्तिगत प्रयास क्या कुछ किए जा सकते हैं?
3: देखिए, भारतीय समाज में जाति आधारित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्राचीन काल में जाति के आधार पर व्यवसाय भी बटे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ आज भी है, लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं है। उतना महत्वपूर्ण

दोस्तों, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अक्सर बड़े उद्योग, कारखानों और व्यापार की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी देश की असली ताकत उसके गांव, किसान, कारीगरों और आम लोगों की मेहनत में ही छिपी होती है। जब समाज, हर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनता है, तब केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरा

0: नहीं रह गई है, बल्कि समाज आधारित हो गई है। वो अब समाज के सभी वर्गों के लोग उन व्यवसायों को अपना रहे हैं।
1: तो समाज का कोई भी अंग हो वह इस दिशा में आगे बढ़े और अपनी अर्थव्यवस्था जो है कोई भी बढ़े, लेकिन अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ता ही है डॉक्टर साहब। तो इसी दृष्टि से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ सरकारी प्रयास, जैसा कि आपने पहले भी कहा था, या फिर सामाजिक प्रयास या व्यक्तिगत प्रयास, कोई बेरोजगार है तो कैसे आगे बढ़ने की और क्या कुछ सोच होनी चाहिए, विशेष रूप से जो आपने बात कही थी ना कि कोविड उपरांत जो स्थिति हुई थी, सेकंड फेज या फर्स्ट फेज जो इसका था, तो काफी कुछ लोग आए हैं, परिदृश्य को देखते हुए आप क्या कहेंगे आगे रोजगार शुरू करने के लिए या फिर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए?
0: देखिए, इस क्षेत्र में हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, जैसे कौशल विकास के अंतर्गत लोगों को कारपेंटरी की, इसी तरह अन्य व्यवसाय की, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके वो अपना स्वतः रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन समाज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट एक योजना चलाई,
1: बहुत अच्छी योजना है।
0: अब इस योजना को आप देखिए कि पूरी तरह से समाज आधारित और कृषि आधारित ये कार्यक्रम है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और इससे जहाँ एक तरफ समाज में लोगों की आय बढ़ रही है, दूसरी ओर रोजगार का सृजन भी हो रहा है।
1: इसमें किस रूप में देख रहे हैं कि बेहतर है ये अन्य योजनाओं से?
0: एक तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सबसे अच्छी बात ये है कि जिस जिले में जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है या वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, वो उनको बढ़ावा मिल रहा है। अब इस तरह लघु या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। अब गाँव का आदमी वहीं रह के उत्पादन कर रहा है, उसको मार्केट भी मिल रही, बाज़ार की तलाश नहीं करनी पड़ रही है, और इस तरह वो जो गांव से शहर की ओर पलायन होता वो भी रुक रहा है, गांव की स्थिति सुधर रही है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है, ODOP का नाम आपने लिया, बहुत सराहनीय है और प्रधानमंत्री जी भी इसकी बड़ाई कर चुके हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसे बढ़ाना चाहिए आगे। इसी तरीके से ODOP को अगर एकदम सूक्ष्म यूनिट मान के चलें तो रोजगार पकड़ने की जो एक ललक होती है किसी भी युवा में, किसी भी व्यक्ति में, तो उसका यह बृहत्तर स्वरूप कहें कि हमारे बीच में।
0: और आप देखेंगे कि ODOP का GDP पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: किस रूप में, कैसे?
0: सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हर जिले में कुछ इस तरह की योजना चल रही है, हर जिले में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे में जो GDP है उसका बढ़ना स्वाभाविक।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है आप कह रहे हैं, तो इसमें समाज को भी अगर लेकर के चलते हैं, देखते हैं
0: जी,
1: कहिए तो क्या वही कहते हैं ना कि जहाँ पैसा ज़्यादा हो जाता है वहाँ समाज जो है संकुचित होने लगता है, एक सामान्य सी बात कही जाती है, पता नहीं विद्वानों द्वारा कहाँ तक ये प्रतिपादित की गई है कि नहीं की गई है, आप बेहतर बताएंगे। तो ये क्या ऐसा तो नहीं कि ये अर्थव्यवस्था जो छोटी छोटी जगहों पर भी समृद्ध हो रही है तो फिर समाज कमज़ोर हो, ऐसा कुछ
0: नहीं? जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसी समस्या तब आती है जब हम बड़ी मशीनों से उत्पादन करते हैं, ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादन करते हैं, जहाँ श्रम कम लगता है, मशीनों से काम अधिक होता है और ऐसी स्थिति में उत्पादन भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो योजना है ये बड़ी मशीनों से नहीं हो रहा है इसका उत्पादन
1: जी,
0: ये तो श्रम आधारित उत्पादन है या बहुत छोटी मशीनें हैं या वो चीज़ें हाथ से निर्मित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप कह रहे हैं कि समाज संकुचित हो सकता है या लोग, ऐसा नहीं है, बल्कि समाज आधारित है, लोग इसमें जुड़ेंगे, समाज के जब आवश्यकता पड़ती है तो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, सामाजिक संबंध इसी से बनते हैं। तो ये जो योजना है ये लोगों को जोड़ने का काम करे।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये श्रम आधारित है, श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, न कि ये यंत्र आधारित है, तो जहाँ श्रम रहता है, श्रमिक जुड़े रहते हैं, तो एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था खड़ी होती है और उसका एक अपना समाज होता है जो मूल समाज से जुड़ा हुआ रहता है। ये मैं समझ पाया जहाँ तक आपकी बात, और बेहतर स्थिति यही है, किसी भी देश के विकास की जो प्रक्रिया है यहीं से आगे बढ़ती है, गुजरती है। कोई बात जो छूट रही हो डॉक्टर साहब, आप समझते हो कि यहाँ शामिल करना ज़रूरी है, तो उसे आप शामिल कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें?
0: जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि समाज आधारित अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिल ही रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस क्षेत्र में अपना सराहना

0: अपनी योगदान दे रहे हैं। जैसे हमने अभी कौशल विकास मिशन की बात आपसे कही
1: जी,
0: या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही। इसके अलावा आप देखिए कि ऑर्गेनिक खेती को बड़ी तेज़ी से बढ़ावा मिला है, अब लोगों का रुझान ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में जो ऑर्गेनिक खेती है या मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो लोग खेती कर रहे हैं उसकी, इससे जहां अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद के क्षेत्र में भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोग जड़ी बूटियों की तरफ बढ़ रहे हैं, उन दवाओं को लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। एलोपैथ की तरफ से रुझान कुछ कम हुआ है
1: जी, बिल्कुल,
0: यद्यपि एलोपैथ का अपना प्रभाव है,
1: कोविड की एक देन ये है,
0: लेकिन कोविड की एक देन ये भी है।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: और हम समझते हैं कि जो भी स्थिति है, परिस्थिति है हमारी कोविड उपरांत की, यहाँ से बिल्कुल सचेत होकर चलना है, तभी हम अपने समाज और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसका समायोजन करते हुए विकास की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए सफल होंगे। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास भेंट वार्ता जिसमें डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी ने समाज आधारित अर्थव्यवस्था पर बात की, जिनसे बात कर रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। अब सुनते हैं एक और गाना और मिलते हैं आपसे गाने के बाद।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि ये ODOP असल में है क्या, तो आपको बता दें कि ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये हमारे देश के हर ज़िले की उस अनोखी कला स्वाद या प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने की एक खूबसूरत मुहिम है जो वहाँ की असली पहचान है दोस्तों।
6: जी हाँ, और हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक हुनर होता है, और इसी हुनर के सफ़र पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जो अपनी संस्कृति, घाटों और आध्यात्मिक विरासत और अद्भुत कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी यानी काशी की।
5: तो चलिए आज वाराणसी की उन्हीं गलियों से गुजरते हुए बात करते हैं उस खास उत्पाद की जिसने फैशन की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और जो यहाँ के ODOP उत्पाद है। ये गौरव है बनारसी रेशमी साड़ी।
6: जी हाँ दोस्तों, वाराणसी को दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में से गिना जाता है, लेकिन आज हम यहाँ की गलियों से गुजरते हुए बात करेंगे उस खाद्य उत्पाद की जो फैशन की दुनिया में तहलका तो मचा ही रही है, जिसे हम कहते हैं बनारसी रेशमी साड़ी। और दिव्यांशु, सबसे मज़ेदार बात जानते हो क्या है? भारतीय शादियों में या किसी भी बड़े त्यौहार में जब तक अलमारी से एक चमचमाती बनारसी साड़ी बाहर ना निकले ना, तब तक महिलाओं का श्रृंगार अधूरा लगता है।
5: बिल्कुल, और इस शुद्धता और बेजोड़ कला की वजह है बनारसी साड़ी, जिसे GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक

0: केतिक भी मिला हुआ है जो इसके असली होने की गारंटी है।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी बनारसी साड़ी पे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि हाथों का हुनर है, सदियों का अफसाना है, ये बनारसी सिल्क है जनाब, इसे तो पूरी दुनिया ने माना है।
0: वाह क्या बात है। तो श्रोताओं, वोकल फॉर लोकल बनिए, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और जब भी मौका मिले हमारे देश के इन बेहतरीन कारीगरों का हौसला जरूर बढ़ाइए। सुनते हैं गाना, मिलते हैं गाने के बाद।

0: दोस्तों ये था हमारा आज का युवा तरंग, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हो गया जाने का वक्त। दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु और
1: अनुष्ठा को इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

श्रोता, हम आपको बता दें कि आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के लिए विषय है खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व। और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र, कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 5:45। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नई उड़ान।

लोकल पर। देखिए, जब हम किसी स्थानीय उत्पाद को चुनते हैं दोस्तों, तो हम केवल एक सामान नहीं खरीदते हैं, बल्कि किसी कारीगर की मेहनत, किसी छोटे व्यापारी के सपनों को और किसी युवा उद्यमी के संघर्ष को भी सम्मान देते हैं। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी खरीदी किसी परिवार की मुस्कान का कारण बन सकती है। हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग विशेषता है। लखनऊ की चिकनकारी हो, वाराणसी की बनारसी साड़ी हो, मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, या फिर किसी गांव की हस्तशिल्प कला, ये सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि हमारी विरासत और संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं, है ना? देखिए, वर्षों से इन कलाओं और हुनरों को स्थानीय कारीगरों ने अपनी मेहनत और लगन से जीवित रखा है, और ऐसे में जब हम किसी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति को भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आज के समय में बड़े-बड़े ब्रांड्स और विदेशी उत्पादों की चमक दमक के बीच अक्सर स्थानीय उत्पाद पीछे छूट जाते हैं, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात को कभी न कभी महसूस जरूर करते होंगे। पर हमें ये समझना होगा कि स्थानीय व्यापार जितना मजबूत होगा, हमारे शहर और देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी। जब किसी स्थानीय दुकानदार की बिक्री बढ़ती है, तो उसके साथ कई अन्य लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी रहती है। इस तरह एक छोटा सा निर्णय पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल की जब हम बात करते हैं, तो हम हमेशा ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे आसपास की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अपने एक छोटे से प्रयास से बढ़ावा दे सकते हैं, है ना? वोकल फॉर लोकल केवल स्थानीय सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय उत्पादों की तारीफ करने, उन्हें दूसरों तक पहुंचाने और उनके बारे में जागरूकता फैलाने का भी नाम है। जब हम अपने दोस्तों से, परिवार वालों से या सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की विशेषताओं को साझा करते हैं, तब हम वास्तव में इस अभियान का हिस्सा बनते हैं और हमारी आवाज़ स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। दोस्तों, ये बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए। दोस्तों, जरा सा उस कारीगर के बारे में सोचिए जो कई दिनों की मेहनत से एक खूबसूरत कोई चीज़ तैयार करता है। उसके लिए वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं होता है, बल्कि उसकी कला, उसकी पहचान और उसके परिवार की उम्मीदों का प्रतीक होता है। जब हम उसके बनाए उत्पाद को खरीदते हैं, तो हम केवल पैसे नहीं देते, बल्कि उसके आत्मविश्वास और सपनों को एक नई उड़ान देते हैं। और नई उड़ान कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने का प्रयास करें, लोकल फॉर वोकल को हम बढ़ावा दें और अपने मन में एक जो देशभक्ति है, जो देश प्रेम है, उसको बढ़ावा दें, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आइए आपको सुनवाते हैं और लौट करके आएंगे तो आगे की बातचीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तो दोस्तों, बातें हम अक्सर आपसे करते हैं, मगर आज कुछ बात उसकी जो हर किसी की इस वक्त पीड़ा है, लेकिन शायद लोग उस पर कुछ करने से कतरा रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम क्या कर पाएंगे या हम क्यों करें। बात आज दोस्तों उस संकट की जो हम सबको आने वाले समय

0: तो दोस्तों, बातें हम अक्सर आपसे करते हैं, मगर आज कुछ बात उसकी जो हर किसी की इस वक्त पीड़ा है, लेकिन शायद लोग उस पर कुछ करने से कतरा रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम क्या कर पाएंगे या हम क्यों करें। बात आज दोस्तों उस संकट की जो हम सबको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुसीबत में डालने वाली है। देखिए, गर्मी का मौसम है और आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके आसपास के जितने नल थे, जो अभी नए लगे हैं, 1-2 साल पुराने, वो तो शायद चल रहे होंगे, लेकिन जो शायद 10 साल पुराने होंगे या 5 साल पुराने होंगे, वो शायद चलना बंद हो गए होंगे। या जो सबमर्सिबल लगे हुए हैं इस वक्त, उनको लोग जो है और नीचे करवा रहे हैं या कॉलम बढ़वा रहे हैं ताकि मोटर उनका पानी खींच सके और उनको दे सके। और मुझे लगता है कि हर 2 साल 3 साल में 10-10 फीट 15-15 फीट के आसपास जो है पानी, वो जो जलस्तर है नीचे का, वो घटता जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम जल संकट की बात कर रहे हैं तो हम क्या इस मुसीबत में फंसने वाले हैं? एक बड़ा सवाल ये है, और अगर फंसने वाले हैं, उसकी आहट हमें अभी से महसूस हो रही है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आइए आज जल संकट पर ही कुछ लोगों के विचार जानते हैं और आपका भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज की विशेष श्रृंखला में हम आपको बताते हैं जल संकट विनाश की आहट पर लोगों की क्या राय है, और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है हमारी सहयोगी रीना श्रीवास्तव जी ने। आइए सुनते हैं।
1: बूंद बूंद घट भरे, ये जो पानी बूंद बूंद करके बहता जा रहा है, यही अगर बच जाए या इकट्ठा हो जाए तो
2: एक आकलन में अगर आपको बताऊं, 100 स्क्वायर मीटर की छत में वार्षिक रिचार्ज जो हम कर सकते हैं वो लगभग 70 से 80 हजार लीटर पानी केवल हम 100 स्क्वायर मीटर की छत पर रिचार्ज कर सकते हैं। 70 से 80 हजार लीटर पानी एक आम परिवार जो 500 लीटर पानी उपयोग करता है उसका लगभग 5 महीने का पानी का रिक्वायरमेंट या 6 महीने का पानी का रिक्वायरमेंट केवल 100 स्क्वायर मीटर की छत से वो पूर्ति कर सकता है।
3: पानी को बचाने के लिए कुछ करते हैं?
4: संभाल के यूज करते हैं बस, नॉर्मल।
5: कई कंपनियां ऐसी हैं जो जीरो डिस्चार्ज पर काम कर रही हैं।
2: पानी जो है एक साइकिल में घूमता है, पानी ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। ना हम नया पानी बना सकते हैं ना हम पानी को खत्म कर सकते हैं।
1: जब पानी ना बन सकता है ना खत्म होता है तो पानी की कमी क्यों है? क्यों आज ये जल संकट है जो भविष्य में किसी विनाश की आहट दे रहा है? विश्व में कई देश तो ऐसे भी हैं जिनके पास मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर या कहीं पीने योग्य पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं जिनमें समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है और तब वहाँ इसका उपयोग होता है। इसीलिए इन डीसैलिनेशन प्लांट्स पर कोई भी खतरा इनके लिए बहुत मायने रखता है।

0: एक जमाना वो था जब हम कहते थे कि हमने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन आज जमाना बदल चुका है और अब हम इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि पानी के टैंकर, पीने के पानी की बोतलें, वाटर फिल्टर और आरओ, ये सब आज हमारे जीवन का हिस्सा हैं। साफ पीने के पानी का संकट तो है ही, इसीलिए हमने विशेषज्ञों से बात की जिससे हम ये समझ सकें कि आखिर स्थिति क्या है।
1: साथियों, पुराने जमाने में जगह जगह कुएं थे, तालाब थे, तलैया थी, पोखर थे और अपनी भूमि को पानी से रिचार्ज करने के लिए हर वो यत्न हम करते थे जो हमें करना चाहिए। लेकिन आज हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी नीचे जा रहा है। क्या समस्या है और क्या है समाधान, इसके लिए हमने बात की है लखनऊ मंडल के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर श्री आदित्य कुमार पांडे से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

0: वैश्विक परिदृश्य में अगर बात करें तो जो वाटर साइकिल है उसको आप हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
1: पानी ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। ना हम नया पानी बना सकते हैं ना हम पानी को खत्म कर सकते हैं, वो बस अलग अलग फॉर्म में इसी साइकिल में हमेशा घूमता रहेगा। तो पानी वाटर साइकिल जिसे हम कहते हैं वो पानी का प्राकृतिक चक्र है। उसमें तीन अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब सूरज की गर्मी से समुद्र नदियों तालाबों का पानी जो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, उसके बाद होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये जो भाप होती है ये ठंडी होकर बादलों का रूप ले लेती है
0: जी।
1: और अगला स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब ये जब बादल भारी हो जाते हैं तो ये बारिश के रूप में धरती पर वापस आ जाते हैं। ये तीन प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। पर इसी के साथ एक जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर चर्चा थोड़ी कम होती है वो होता है इन्फिल्ट्रेशन, जिसके लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन ही वो पानी है जो जमीन के अंदर जाके ग्राउंड वाटर का रूप ले लेता है
0: जी। और इसमें सर एक चीज और जोड़ देनी जरूरी लगती है, पानी का जो प्रदूषण हो रहा है वो सर अगर वाटर साइकिल में मिल जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भूजल प्रदूषण जो होता है ना वो एक बहुत ही साइलेंट प्रॉब्लम है। वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देगी, वो हम नेकडाई से देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ग्राउंड वाटर को नीचे ग्राउंड के अंदर जाके उपचार कर पाए। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का इकलौता उपचार ये है कि उसे रोका जाए, और कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। पानी नीचे जो होता है एक्वीफर्स में रहता है अलग अलग, अगर कोई भी एक्वीफर पॉल्यूट हो गया तो उसका सोल्यूशन बस यही है कि हम उस एक्वीफर को यूज ही करना। तो इसलिए अल्टीमेट सोल्यूशन हमको ये करना है कि हमें पॉल्यूशन को रोकना ही है। पॉल्यूशन के अलग अलग कारण होते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज है, ओवर यूज है। खुले में यदि हम प्लास्टिक या कचरा या गंदा पानी डालें, कहीं तक सीपेज हो जाए तो वो एक ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का कारण बन सकता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होता है। तो हम लोगों को करना यह है कि पानी के जो सोर्सेस हैं, यदि कोई बोरिंग वगैरह है आसपास तो वहां पर केमिकल का यूज को बहुत लिमिटेड कर देना है। सेप्टिक टैंक अगर लोगों के घरों पे है तो उसका मेंटेनेंस पीरियोडिकली लोग कराते रहे। वो जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा वो जो आसपास के लोगों को मिलेगा सप्लाई के रूप में, क्योंकि किसी के घर में पंप लगा होगा तो उसके पास वही पानी की सप्लाई होगी।
0: ग्राउंड वाटर लेवल का जो महत्व है वो क्या है?
1: ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है जिसे हम भूजल कहते हैं, ये एक्चुअल हमारा एक स्टोरेज सिस्टम है, हमारे पानी का नेचुरल स्टोरेज सिस्टम है। ये रिचार्ज किससे होता है? ये बारिश से रिचार्ज होता है। जब भी बारिश होती है जमीन जो हमारी जमीन है कच्ची जमीन, उससे ये पानी धीरे धीरे रिसता हुआ ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे जमा हो जाता है। मतलब आप ग्राउंड के नीचे पूरा स्टोरेज सिस्टम है, नेचुरली बना हुआ है। यही पानी जो है धीरे धीरे हमारी नदियों को, झरनों को, कुओं को, सबको सपोर्ट करता है। जब हम हैंडपंप चलाते हैं पानी निकल के आता है, या पंप चलाते हैं, मोटर चलाते हैं पानी निकल के आता है, ये वही पानी है। अपनी ज्यादातर दैनिक जरूरतों के लिए इसी ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक यूज हो जो हम पीने के लिए, पेयजल के लिए घरों में यूज करते हैं, या हम जो खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए यूज करते हैं
0: जी। ग्राउंड वाटर लेवल की क्या स्थिति देखते हैं पहले के समय में और अब के समय में, क्या अंतर आप पाते हैं?
1: जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज की डेट में ज्यादातर दैनिक जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है। तो इस वजह से पानी का जो यूज है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एनुअली जो नेचुरल रिचार्ज हमारा हो रहा था बारिश से, कई बार हम उससे ज्यादा वाटर का एक्सट्रैक्शन करने लगे हैं। तो अब ऑब्वियस है मैडम, जब आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए अकाउंट के अगर आप 105 रुपए निकालेंगे तो आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव ही होगा। सेम चीज पानी के साथ हो रही है। हम एनुअली पानी जितना रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं। तो इसकी वजह से कई एरियाज में, जैसे हम लोग अगर अपने लखनऊ के लिए बात करें तो लखनऊ शहरी क्षेत्र में कई जगह पे वाटर लेवल डाउन हो रहा है।
0: साथियों, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और जल हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब बातें हम सुनते हैं लेकिन फिर भी हम पानी की बर्बादी तो करते ही हैं, और ये सोचते भी नहीं कि ये पानी अगर खत्म हो गया तो हम आगे क्या करेंगे, या हमारे बच्चे क्या करेंगे, किस तरह से अपने जीवन को बिताएंगे, इस बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हम अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, हमें सोचना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम आ पहुंचे हैं गिरीश कुमार सर के पास, जो कि सीनियर एनर्जी कंसल्टेंट हैं नेडा लखनऊ के लिए, और इससे पूर्व आप सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर पहले काम कर चुके हैं और उस पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जल की, जब पानी की हम बात करते हैं तो वो

0: जलवायु परिवर्तन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे श्रोताओं के लिए कि जो आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से फ्रेश वाटर की जो उपलब्धता है उस पर क्या असर पड़ेगा।
1: जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट है जल का, और हम इस समय एक तरह से विनाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के बारे में हम रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उससे क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर हम उतना नहीं सोच पा रहे। अगर इस जो टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता रहे तो हमारी ऋतुएं डिस्टर्ब होंगी, गर्मी के टाइम पर प्रॉपर गर्मी नहीं होगी, बारिश के टाइम पर प्रॉपर बारिश नहीं होगी, सर्दी के टाइम पर प्रॉपर सर्दी नहीं होगी ठीक प्रकार से, और जब गर्मी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो ग्लेशियर हैं, पहाड़ों के ग्लेशियर, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। हम पहले जानते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती थी, लेकिन आज गंगोत्री से नहीं, उसे कई काफी ऊपर जाकर के, पहले उसमें गोमुख था, गोमुख से भी और ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कि इतना ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल चुका है। अब अगर ग्लेशियर इससे पिघलता रहेगा ग्लेशियर, तो उसका नतीजा निकलेगा हमारी बाढ़ ज्यादा आएगी, नदियों में पानी ज्यादा बहता चला जाएगा, और ये पानी जब समुद्र में जा रहा है तो समुद्र का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, खारा पानी ज्यादा हो जाएगा, और कुछ सालों के बाद यही हालत रही तो कुछ सालों के बाद हमको पानी ही नहीं मिल पाएगा, नदियां हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी जब ग्लेशियर ही खत्म होने लगेगा।
0: जी,
1: ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है जिसके ऊपर हम अभी नहीं विचार कर पा। हमारी द्वारका नगरी समुद्र के ऊपर ही तो बनी होगी, समुद्र के बगल में, समुद्र के अंदर नहीं होगी, समुद्र के बगल में बनी होगी, जमीन पर बनी होगी। आज समुद्र का लेवल इतना बढ़ चुका है कि द्वारका पूरी डूब चुकी है, राम सेतु बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है जो ऊपर रहा होगा। एक देश है हॉलैंड जो पूरा पूरा समुद्र तल के नीचे है, तो ये सब चीजें ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा समुद्र का लेवल कितना बढ़ता गया है, और इस वजह से हमारा खारा पानी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी कम होता चला जाएगा और उसके लिए मारामारी शुरू हो जाएगी।
2: साथियों, जब मेरी दादी थी तो वो पानी की बर्बादी पर बहुत डांटती थी कि तुम लोग धरती का पानी खत्म करे दे रहे हो। तो हमने सोचा कि आज कितना पानी इस्तेमाल होता है इसकी भी जांच कर लें।
3: क्या नाम है आपका?
4: पूजा।
3: कहाँ रहती हैं पूजा?
4: रामनगर धोबी घाट बर्फखाने के पास।
3: अच्छा, आपके घर में नल लगा है?
4: नल नहीं लगा है, बाहर रोड पर टंकी लगा।
3: तो कितना पानी आपको लाना पड़ता है? टंकी पर ही सारा काम होता है कि घर में कुछ पानी आप?
4: हम टंकी पर धोते हैं और बर्तन बासन वहाँ पानी भर के नहाना धोना बर्तन बासन अब हम घर पे करते हैं।
3: कितने बाल्टी पानी रोज आप अपने घर में लाती हैं?
4: 6-7 बाल्टी लाते हैं।
3: तो 6-7 बाल्टी में कितने लोगों का खाने पीने का और नहाने की व्यवस्था हो जाती है?
4: 4-5 लोग, 4 लोग हम घर में जाए।
3: अच्छा, मतलब आपके घर में जो महिलाएं हैं वो घर में नहाती हैं और पुरुष जो है वो टंकी पे बाहर नहा लेते होंगे?
4: कपड़े पहन के नहाते बाहर, हम लोग का कोई की सुविधा नहीं है।
3: मीनू जी, आपके घर में लगभग कितने लोग होंगे?
5: हम लोग 5 लोग हैं, एक पोता और 2 बेटे और एक बहू।
3: जी, तो आप 5 लोगों का परिवार है, क्या आप बता सकती हैं कि 5 लोगों के परिवार के लिए आप लगभग में कितना बड़ा टैंक आपके घर में है?
5: हमारा लगभग 1000।
3: 1000 लीटर का टैंक है आपके घर में? एक दिन में एक बार भरने से काम चलता है?
5: नहीं, 2 बार।
3: 2 बार, यानी कि 2000 लीटर पानी पर डे आप यूज करते हैं?
5: गर्मियों में तो 2 टैंक लग जाते हैं, जाड़ों में एक ही टैंक में 1000 लीटर हो जाता है। जाड़ों में तो एक ही बार भरते हैं और गर्मियों में 2 बार भरते हैं।
3: आपका नाम बताइएगा?
6: मनोज रस्तोगी।
3: जी, आपकी फैमिली में कितने लोग होंगे?
6: 11।
3: कितना बड़ा टैंक आप यूज करते हैं?
6: 1000 लीटर का।
3: एक दिन में कितने बार भरना पड़ता है?
6: 4-5।
3: मतलब कि 4000 से 5000 लीटर पर डे का आपका एक्सपेंस है।
6: जी जी जी।
3: सतीश जी, आपके घर में आरओ है?
7: हाँ है।
3: पानी को बचाने के लिए कुछ करते हैं?
7: पानी वेस्टेज तो कहीं नहीं करनी चाहिए, हम भी नहीं करते हैं। कोई टैब है अगर लीक होता है तुरंत रिपेयर कराते हैं, पर इतना सेव हो सकता है लिमिटेड उतना ही पानी यूज ही करते हैं।
3: आपका गुड टीम?
8: सिद्धार्थ।
3: वाटर कंजर्वेशन के

0: आप क्या क्या करते हैं?
1: संभाल के यूज़ करते हैं बस नॉर्मल।
2: वाटर कंजर्वेशन में हम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर लेवल आप जान रहे हैं कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं ये जो स्कैर्सिटी है ये बढ़ेगी, तो अगर अभी हम लोगों ने सेव नहीं किया तो फिर कमिंग जनरेशन के लिए बहुत टफ है। कोशिश करते हैं मैम कि जो डे टू डे डेली हम लोग काम करते हैं वो रनिंग टैप में ना हो, अननेसेसरली थ्रो ना हो ना। जैसे आप आरओ की बात करें तो आरओ में पानी वेस्ट बहुत होता है।
3: दोस्तों अब लगाते हैं यहाँ पर सिंपल गणित। 5 लोगों के परिवार में अगर 2000 लीटर पानी की जरूरत हर रोज पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति हर रोज 400 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर ये मान लिया जाए कि एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है तो उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 20 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जो फ्रेश वाटर उपलब्ध है हम उसका संचयन करें। कैसे करना है ये आइए सुने।
4: रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो हमारे ग्राउंड वाटर के लेवल को बचाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
5: क्योंकि शहर में कंक्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्र के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही सबसे उपयुक्त विकल्प है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी छत पे पड़ने वाला जो पानी है वो शुद्ध पानी होता है। बारिश का पानी इतने प्रोसेसेस से होता है कि वो शुद्ध पानी होता है, वो डायरेक्टली बोरिंग के माध्यम से रिचार्ज हो जाता है। उसकी एफिशिएंसी 80-90% तक होती है। आपकी छत 100 स्क्वायर मीटर की है तो एक आकलन में अगर आपको बताऊं 100 स्क्वायर मीटर की छत में वार्षिक रिचार्ज जो हम कर सकते हैं वो लगभग 70-80 हजार लीटर पानी केवल हम एक 100 स्क्वायर मीटर की छत पर रिचार्ज कर सकते हैं। 70-80 हजार लीटर पानी एक आम परिवार जो 500 लीटर पानी उपयोग करता है उसका लगभग 5 महीने का पानी का रिक्वायरमेंट या 6 महीने का पानी का रिक्वायरमेंट केवल एक 100 स्क्वायर मीटर की छत से वो पूर्ति कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जा रहा है आज के परिदृश्य में कि हम लोग किसी भी तरह से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, सभी लोग इसको प्रमोट करें। गवर्नमेंट की तरफ से भी 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर के भवनों के लिए कंपलसरी कर दिया गया, 200 स्क्वायर मीटर का भी बना रहे हैं, 100 स्क्वायर मीटर का भी घर बना रहे हैं। अगर हम उसका 1% या 2% खर्चा इसके लिए निकाल लेते हैं तो ये हमारे लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद।
4: लगभग में कितनी कॉस्टिंग क्या है इसकी?
5: रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कॉस्टिंग जो है एज लो एज 20-25-30,000 से स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए अलग अलग मॉडल हम लोगों ने अपने विभागीय वेबसाइट upgwd.gov.in पर उपलब्ध करा रखे हैं, नागरिकों के लिए ही उपलब्ध कराए हुए हैं कि आप उनमें से डिजाइन देख लीजिए, आपका कैसे फिल्टर मीडिया कैसे आपको डिजाइन करना है और उसकी कॉस्टिंग भी अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है वो सब एक बुकलेट के फॉर्म में हम लोगों ने अपनी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया हुआ है।
3: हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि पानी को बर्बाद करने से पाप लगता है, इसी नाते ही सही आइए हम पानी का संरक्षण करें। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: बिल्कुल दोस्तों, आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। पता हमारा आपको पता है, ये हमें पता है, इसलिए पता हम आपको फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ गुजारिश ज़रूर है आपसे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि अभिषेक को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसानों के लिए सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। आज के सवालों के लिए विषय है खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों

में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र, अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। श्रोताओं, सूचना एक बार पुनः सुन लीजिए। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के लिए विषय होगा खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

श्रोताओं, अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं सुनिए। थाना नवीन मॉडर्न पुलिस थाना जनपद श्रावस्ती से लीलापति ने हमें सूचित किया है कि दीपक गोस्वामी, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, दिनांक 10 मई 2026 से कहीं लापता हैं। दीपक का रंग गोरा, चेहरा लंबा, ऊंचाई 5.5 फीट है और शरीर की बनावट इकहरी है। गुमशुदगी के वक्त दीपक ने काले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती। थाना बिल्हौर जनपद कानपुर से हमें सूचना मिली है कि नरेंद्र उर्फ गुरुदयाल, जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, दिनांक 24 जनवरी 2026 से कहीं लापता हैं। नरेंद्र का रंग सांवला, चेहरा लंबा और ऊंचाई लगभग 5 फुट है। गुमशुदगी के वक्त उन्होंने गर्म स्वेटर और आसमानी रंग की जीन्स पैंट पहनी हुई थी। जिस किसी को भी नरेंद्र के बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुईं। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
1: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
1: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मंत्रिमंडलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,200,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मंत्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
0: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG सम्पर्कान् PNG सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिकगृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गुलिकाप्रहारे नागरिकाणां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायां ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नैनो यूरिया के निर्माता इफको।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर कमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: पंचो जय हिंद।
4: पुनीता बहनी।
5: हाँ प्रकाश भैया।
4: बहुत दिन बाद भेटानी हो।

0: आजकल कहाँ जो है व्यस्त रहे हो?
1: अरे भैया देखो, गर्मी में यहाँ, और गर्मी तो होते हैं, और ऊपर से ई महीना में यहाँ खेती किसानी के अत्यंत ज्यादा काम हो जाते हैं कि हम अपन सब जाको वह में लाग रहे थे, और जब मौका मिला तनी जुड़ाए लागे थे भैया।
0: तो ये बताओ नर्सरी से परी कि नहीं?
1: हाँ भैया बिल्कुल परी।
0: अच्छा, तो ये देखो बहुत बढ़िया बात है कि जो तुम्हार नर्सरी समय से परी गया है, लेकिन ये बताओ बीज के शोधन भवा रहा?
1: बिल्कुल भैया, बीज क्या शोधन, भूमि क्या शोधन, और जो है भैया माटी के जांच, हम तो भाई देखो सब कुछ कराए थे।
0: देखो ये बहुत जरूरी बात है, और अपने कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि चाहे जौन बीज लो भैया, शोधित हुए तो अपने घर में लायक फिर से एक बार शोधित कर दो तो कोनो बुराई नहीं है।
1: बिल्कुल शंका नहीं रह जाते भैया, तो
0: हाँ
1: बिल्कुल वो अच्छा हो जाते हैं।
0: एकदम। और यहाँ पर खरीफ की तैयारी की बात हो रही है, तो यह समय जहाँ नर्सरी पर रह गए हैं तो बहुत सारे पंच हैं, उनका जो है यही सलाह है कि जो है अपन जो बीज लावें वो बीज के शोधन जरूर कर लें, और साथ ही साथ जहाँ नर्सरी डालेंगे वहाँ भूमि के शोधन भी जरूर करें।
1: जरूर कर लें भैया। और उनके अलावा जो नी बातें होती हैं ध्यान रखे योग्य, तो देखो हम सबको यहाँ से नहीं बैठ गए हैं, या जो उन्हें जानकारी दीन करी थी और दिवावा करी थे, है ना।
0: एकदम। और देखो
1: हाँ
0: यहाँ विशेषज्ञ के जो बात होती है वही का हम लोग गुणित है, और वही गुणे के हिसाब से हम लोग काम करित है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया।
0: अपन खेती भी बढ़िया सफल हो जाते हो और अपन आमदनी भी बढ़िया हो जाती है। तो आज है बुधवार,
1: बिल्कुल
0: और आज के दिन देखो कोई ना कोई ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो न अपने पंचन की जो समस्या है उसके समाधान फोन के माध्यम से करते हैं।
1: हाँ। और भैया बिल्कुल जो विशेषज्ञ भैया होते हैं
0: हाँ
1: वो बिल्कुल जो समसामयिक चीज होते हैं, जी की हमका वह बिरिया जरूरत है, वह के जानकारी जो है हमका सबका जो है दिन जाते वह जानकारी हमका सबका
0: उपलब्ध
1: मिलत
0: करावत
1: है।
0: हैं, तो आज जो विशेषज्ञ उनके परिचय पहले करा दी जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो आज देखो जो विशेषज्ञ भैया हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, वरिष्ठ प्रसार अधिकारी प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से।
0: और देखो जो आज विषय हैं जो पंच जो है ले सकते हैं जी बाहर बात कर सकते हैं, वो विषय हैं खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, धान की उन्नत प्रजातियां व नर्सरी प्रबंधन,
1: धान की
0: धान की सीधी
1: बुआई
0: बुआई
1: तकनीक।
0: तकनीक, ई के बारे में यहाँ बातचीत हुई, और साथ ही साथ और जो पंचन की समस्या है या जो अभी फसलें हैं खेत में यहाँ उससे संबंधित कोनो समस्या है तो उसके बारे में भी सवाल कह सकते हैं, उसके
1: बिल्कुल
0: भी
1: भैया।
0: जानकारी ले सकते हैं। और देखो ई कार्यक्रम के जो संचालक हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, और अपने जो विशेषज्ञ भैया हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह भैया, दोनों भैया जो है आके बैठ गए हैं।
1: भैया
0: और
1: जरूरी है इसके लिए कि हमसे कैसे जुड़े हमारे पंच भाई, उके लिए फोन करब, और फोन नंबर है आज क्या तू हम बता दी, 0522 पंच भाई लगा ले हैं ये फोन नंबर से पहले, और नंबर है 2238825 38825।
0: यानी पुरान वाला नंबर है, नंबर में कोई बदलाव नहीं है, 0522 223 8825 यानी 0522 2238825 नंबर है आज के कार्यक्रम के। तो पंच से जो है निवेदन है कि अपने कार्यक्रम में यहाँ फोन करें और अपनी समस्या के समाधान
1: समाधान
0: पावें,
1: पावे।
0: तो चला जाए विशेषज्ञ के पास।
1: बिल्कुल भैया
2: धन्यवाद पुनीता बहनी, ओम प्रकाश भैया, नमस्कार किसान भाइयों बहनों। हर बुधवार की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर केएम सिंह साहब आज के विशेषज्ञ हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और वरिष्ठ प्रसार अधिकारी हैं प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में आपका।
3: नमस्कार किसान पंचो, सभी को मेरा नमस्कार।
2: और अब से लेकर के 7:20 तक आप हमारे साथ होंगे स्टूडियो में, और किसान भाइयों बहनों के लगातार सवाल होंगे। आज का फोन इन का नंबर बता दें किसान भाइयों बहनों को, 0522 223 8825 यानी 0522 2238825। और आज खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में, धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में, उनके नर्सरी प्रबंधन के बारे में, जहाँ धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं वहाँ कैसे तकनीक अपनाएं ताकि जलवायु परिवर्तन के दौर में आपको टिकाऊ उत्पादन मिले, इसके अलावा माटी की सेहत महत्वपूर्ण है कि मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे हो ताकि माटी का हीमोग्लोबिन बना रहे, और कम खाद में कम रासायनिक खाद के प्रयोग से भी ताकि लागत भी कम हो और टिकाऊ उत्पादन मिल जाए, और साथ में इसके अलावा बीज और भूमि शोधन कैसे करें, इन सब पर बात होगी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों का फोन आए उसके पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करें कि खरीफ अभियान शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों बहनों से कि कैसे शुरुआत करें,

0: कैसे फसल योजना बनाएं पूरे खरीफ की?
1: सबसे पहले तो किसान भाइयों से मेरा कहना है कि जो हमारे जो जो खेत हैं जो गेहूं कटने के बाद खाली हुए हैं, तो खरीफ की फसल लगाने से पहले उनकी सिंचाई करके और पलेवा करके उसकी तैयारी करें। और इस समय जैसे धान की ज़्यादातर किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी है, लेकिन किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि नर्सरी में दिन के समय जो पानी भरा नहीं रहना चाहिए, उसकी वजह से जो है हमारी पौध गलने की संभावना रहती है।
0: साहब, नर्सरी की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन एक किसान भाई इस बीच जुड़े हैं। हेलो
2: जी। हाँ नमस्ते साहब।
0: नमस्ते भैया, नाम बताएं।
2: जी बच्चालाल दुबे, ग्राम सजनवा ब्लॉक रुपये जी, जनपद गोंडा से बोली साहब।
0: बहुत स्वागत है बच्चालाल भैया। रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं ताकि आपकी आवाज साफ आ जाए। सवाल पूछें।
2: सर साहब, धान की नर्सरी हमारी लगी हुई है, पहले जून का नर्सरी साहब डाला है,
0: यानी 10 दिन की हो गई।
2: जी सर, जी सर।
0: कौन सी वेरायटी लगाया आपने?
2: पाइनियर 38 और पाइनियर 37 सर।
0: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा।
0: तो
2: लेकिन सर उसमें झुलसा रोग लग गया,
0: देखिए
2: फुंजिया सब सूख रही हैं।
0: देखिए ताव का असर है। डॉक्टर साहब इस समय करें क्या?
1: देखिए उसमें जो है ना, जो फुंसियाँ सूख रही हैं, इसमें कभी कभी रस चूसने वाले कीड़े भी आ जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा जो है, अधिक तापमान में दिन में पानी न रखें, तो इसका सबसे बढ़िया उपचार है कि शाम के समय इमिडाक्लोरपिट जो है
0: 1 ml 3 लीटर पानी में
1: और साथ ही साथ जो कार्बनडाइजिन प्लस मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे।
0: हाँ।
1: तो आपका खेत सही हो जाएगा।
0: यानी जो भी धान की नर्सरी है जो आपने लगाया है 2 वेराइटी की, वो एकदम रौनक पर आ जाएगा। आप निश्चिंत रहें कि इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवाई 3 लीटर पानी का हिसाब होगा, और 3 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कम्बिनेशन है उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें नर्सरी में। जो भी हानिकारक कीट या बीमारी या जो डॉक्टर साहब मौसम का स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा।
1: हाँ वो भी होगा, चूंकि जो हमारे मैंकोजेब होता है ना उसमें मैंगनीज होता है, वो एकदम हरापन ले आएगा।
0: डॉक्टर साहब नर्सरी की बात चली है तो शुरुआत नर्सरी प्रबंधन के पहले धान की जो उन्नत प्रजातियाँ हैं, बहुत सारे किसान भाई बहन अभी भी धान की उन्नत प्रजातियों को चुनना चाहते हैं ताकि नर्सरी अब डालें। कुछ किसान भाई डाल चुके हैं तो उनको क्या सलाह देना
1: अब है? जैसे जो किसान भाई लेट हो गए,
0: अभी लेट तो क्या है,
1: लेट नहीं अभी समय से बुवाई के लिए हैं, तो जैसे अपनी जो या आपकी जो PNR है 381 है, मालवी 36 है, नरेंद्र धान 2065 है, नरेंद्र धान 2064 है, ये प्रजातियां चयनित करके बुवाई कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब समय के अनुसार कम अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की प्रजातियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक किसान भाई जुटे हैं लाइन पर हैं। हेलो हेलो।
3: हाँ हेलो सर, नमस्कार।
0: संतोष कुमार मौर्य हरदोई से सवाल पूछिए।
3: मेरी धान की बहन है वो पीली पड़ गई है और गिलहरी वगैरह खा रही है, इसको
0: रखवाली करिए। हेलो
3: जी सर, रखवाली करते हैं, कितनी देर करें?
0: खेत में पानी तो नहीं लगा है, नर्सरी वाले खेत में
3: पानी तो लग गया है।
0: यही तो बात है, पानी दुश्मन है नर्सरी का, तो पानी का निकासी जरूर करिए। पानी शाम के समय हमेशा चलाइए, दिन में कोई पानी मत लगाइए। शाम के समय जब ठंडा हो जाए तब नर्सरी में हल्का फसल की प्यास बुझाएं बस। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: गिलहरी की जो समस्या बता रहे हैं इसके लिए घरेलू स्तर पर हम कर सकते हैं, जो उसके जो आपने जो नर्सरी लगाई उसके चारों तरफ नेट लगा दीजिए और उसको जमीन से गाड़ देंगे तो गिलहरी उसके अंदर नहीं जाएगी और आपकी ये समस्या का समाधान हो सकता है। और जो पीली पड़ रही है उसके लिए आप जो है शाम के समय 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैंगोजेब प्लस कार्बनडाइजिम का आप स्प्रे कराएंगे, साथ ही साथ उसमें इमिडाक्लोप्रिड मिला लेंगे, जो हल्का सा कोई कीट आया होगा तो वो भी जो है आपका ठीक हो जाएगा, तो इसको आप प्रयोग करिए।
0: बहुत धन्यवाद संतोष कुमार मौर्य भैया हरदोई से। डॉक्टर साहब हम लोगों की बात हो रही थी कि देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारे किसान भाई बहन कम दिन वाला धान लगाना चाहते हैं, कुछ मध्यम अवधि का लगाना चाहते हैं, और कुछ जहाँ लो लैंड है या निचली जमीन है वहाँ दीर्घ अवधि की प्रजातियाँ चुनना चाहते हैं। तो उसमें
1: सबसे पहले तो जो हमारी जो कम अवधि की प्रजातियाँ हैं और जो असिंचित कंडीशन में भी हम लोग
0: लगा सकते हैं
1: वो साकेत 4

0: नरेंद्र 97 है, बारानी
1: दीप है।
0: दीप है, शुष्क सम्राट है, और नरेंद्र लालमती, ये प्रजातियां जो हमारे जो
1: कम
0: है
1: अवधि
0: कम
1: की,
0: अवधि की भी हैं, और कम सिंचाई, अगर एक दो सिंचाई भी आप उपलब्ध है तो उस केस में आप कर सकते
1: और
0: हैं,
1: जहां वर्षा के सहारे खेती है वहां के लिए भी
0: वो
1: उपयुक्त।
0: उपयुक्त है।
1: एक किसान भाई लाइन पर हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ भैया, नाम बताएं।
2: हाँ, हमारा नाम रामहित यादव है, बाराबंकी।
1: रामहित यादव भैया, कहाँ से,
2: ब्लॉक
1: गांव और ब्लाक बता दें।
2: फतेहपुर है
1: हाँ,
2: और जिला बाराबंकी है। गांव
1: और गांव का नाम।
2: का नाम ग्राम साढ़भारी है।
1: अच्छा, बहुत स्वागत है रामहित भैया, सवाल पूछें।
2: सर, एक कोदो का बिया कहाँ से मिलेगा? कोदो,
1: किस चीज का?
2: कोदो। हाँ,
1: अच्छा, कोदो का। आप
2: मो
1: अपने देखें, इस समय जो अपने ब्लॉक का जो राजकीय कृषि बीज भंडार है उसके
2: जी।
1: माध्यम से, मिनी किट के माध्यम से आपको ये जो मोटे अनाज में कोदो है उसका भी बीज
2: हाँ,
1: पहुंचा है, मुफ्त में मिल रहा है। आप अपने
2: अच्छा।
1: ब्लॉक के जो सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं या जो बीज गोदाम के इंचार्ज हैं उनके संपर्क में रहें। पहले आपको
2: अच्छा
1: पोर्टल पर पंजीकरण कराना है, आपको मुफ्त में मिलेगा, आप उनसे
2: अच्छा
1: संपर्क
2: जी जी
1: करिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मोटे अनाज में कोदो लगाना चाहते हैं तो क्या सलाह देते हैं रामहित यादव भैया को?
0: रामहित यादव, कोदो लगाएं, बहुत अच्छी फसल है। और इसका जो है ना बीज, जैसे अभी बताया है सुशील भाई साहब ने, आप जो है ना कृषि विभाग में अपना जो मोटे अनाज के लिए आप पंजीकरण पहले करा दीजिए, उसके बाद जो जब जैसे पंजीकरण हो जाएगा तो ये मिनी किट आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसका पैसा भी आपको नहीं देना होगा और
1: हाँ,
0: आपका वो अच्छा
1: और
0: हो जाएगा।
1: आप मोटा अनाज करके कम पानी में कम लागत में एक अच्छी फसल श्री अन्न पैदा कर सकते हैं, और उसका वैल्यू एडिशन करके अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते हैं।
0: जी,
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ भैया, नाम बताएं।
2: नारायण साहब, नमस्कार।
1: हाँ, कुलवंत सिंह भैया निंगासन लखीमपुर खीरी से, बहुत स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका? धान की बिहन पड़ी कि नहीं?
2: हाँ जी, हमको हो गए 12-13 दिन
1: कौन
2: गाजर
1: कौन
2: हुए।
1: सी वैरायटी लगाया आपने?
2: हमने एक ही वरायटी हम लोग लगाते हैं, PR 113।
1: PR 113, क्या
2: हाँ
1: खासियत
2: जी, उसमें थोड़ी
1: इसकी?
2: सी दिक्कत आ रही है, बढ़ नहीं रही है। 13-14 दिन हुए हैं।
1: इस पर हम बात करेंगे। ये बताएं कि PR 113 की खासियत क्या महसूस करते हैं?
2: खासियत हमारे इलाके में, सर, ये तराई का इलाका है, चलते ज्यादा यही है। ये
1: अच्छा, कितनी दिन में तैयार हो जाता है धान?
2: धान तो 110 से 120 दिन ले
1: नहीं, एक
2: लेता है,
1: सौ
2: एक सौ
1: बीस से
2: बीस
1: एक
2: दिन
1: सौ तीस
2: लगभग।
1: दिन के मतलब रोपाई के बाद, और इसमें 25 दिन की नर्सरी भी जोड़ी है।
2: 25 दिन की नर्सरी तो होगी हमारे यहाँ तो, लोगों को 20-25 दिन हो गए, बहुत बहुत लोगों को डाले नर्सरी, तैयार है कई लोगों को तो लगाने के लिए यहाँ।
1: तो क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: और फिर तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप किसानों के मसीहा हैं, मसीहा जिनको कहा जाता है ना।
1: अरे धन्यवाद आपका कि आप जैसे सजग किसान हैं जो कार्यक्रम हेलो किसान सुन रहे हैं, कार्यक्रम कृषि चर्चा सुन रहे हैं, विज्ञान और किसान सुन रहे हैं, और खेती किसानी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और अपनी
2: हम कर ऐसा है कि हम 1978 से लेके रेडियो सुन रहे आज तक,
1: जी
2: बराबर सुने रेडियो हम, बराबर 11 बजे
1: ये
2: तक रात के पूरे प्रोग्राम सुनते हैं हम आपके। जी,
1: आप हमारे लिए धरोहर हैं, सवाल पूछें।
2: आप सुबह भी आप आने लगे हैं ना, सवेरे जो 5-5 मिनट के लिए प्रोग्राम आता है
1: जी जी
2: उसमें भी आप आने लगे हैं, तो हमारे मेहमान विशेषज्ञ साहब को नमस्कार हमारा।
1: हाँ,
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: सवाल पूछें
2: पर ऐसा है
1: विशेषज्ञ से।
2: कि हमारे इलाके में ज्यादा ये PR 113 ज्यादा चलता है, तो इसकी नर्सरी में थोड़ी सी जरा कमजोर कमजोर नर्सरी हो रही है, तो उसमें कुछ कुछ कुछ बताओ कि इंतजाम के थोड़ा बहुत ये डालने से कुछ सही हो जाए।
1: डॉक्टर साहब, क्या नैनो DAP का छिड़काव इसमें फायदेमंद होगा?
0: फायदेमंद होगा, थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे, जब नर्सरी हम लोग डालते हैं तो नर्सरी का बीज जो है थोड़ा सा एरिया बढ़ा के डालना चाहिए, नर्सरी का जो बीज है दूर दूर पड़ना चाहिए, जो अभी जो समस्या आ रही है बीज घना होने की वजह से भी समस्या आती है कि
1: बैठ
0: हम
1: जाती है
0: बैठ
1: नर्सरी।
0: जाती है और उसमें कभी कभी नीचे से कल्ले सूखने लगते हैं।
1: हाँ,
0: दूसरा, इस समय जो है ना अगर नर्सरी को आपको अच्छे से चलाना है तो हमारे जो घुलनशील उर्वरक NPK 1919 2020 2018-18 आते हैं,

0: और उसका आप जो है 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके आप
1: एकदम बैलेंस फर्टिलाइजर,
0: बैलेंस फर्टिलाइजर आप इसका स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास मैंकोजेब प्लस कार्बन डाइजिम उसको भी मिला देंगे तो आपकी एकदम नर्सरी बढ़िया से चलेगी।
1: और अगर आपको शंका है कि कोई हानिकारक कीट भी फुनगी लग रही है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें। बहुत धन्यवाद कुलवंत सिंह भैया, एक सजग किसान हैं और एक जागरूक किसान हैं जो अपने खेत पर डटे रहते हैं, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोगों की बात हो रही थी कि मध्यम प्रजातियां कौन कौन सी हैं।
0: मध्यम प्रजातियां जैसे आप जानते हैं कि हमारा सरजू बावन आज भी स्टैंड करता है। सरजू बावन बहुत अच्छी प्रजाति है। नरेंद्र 359 ये भी अगर प्रजाति मिल जाए,
1: हाँ।
0: नरेंद्र 2065 2064 ये हमारी मध्यम देरी की प्रजातियां हैं। इसी के साथ साथ हमारी नरेंद्र जो है 3112-1 है, जो प्रजाति ये अभी लेटेस्ट है, ये भी अच्छा उत्पादन दे रही है। पंत 10 पंत 12 प्रजातियां भी आप लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते भैया, नाम बताएं।
2: नाम मनेजरलाल वर्मा, सीपुर ब्लॉक बहटा सीतापुर।
1: बहुत स्वागत है मनीजर भैया, आज का सवाल क्या है?
2: हम थोड़ा धान सीधी बोई करना चाहते हैं, हम बेड़न डालना चाहते हैं, तो खाद वाद क्या डालें इसमें?
1: बहुत सटीक सवाल है और इस समय पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये धान की सीधी बुआई भी करना चाहते हैं और धान की रोपाई भी करना चाहते हैं, फसल की भूख कैसे मिटाएं इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, अभी जो हमारा ये समय जो है ना, सीधी बुआई का बहुत अच्छा समय चल रहा है और इसमें किसान भाइयों को चाहिए सबसे पहले खेत का पलेवा करें, उसके बाद बुआई करें। तो क्या होता है कि हमारे जो खरपतवार शुरू में आने वाले होते हैं, एक जुताई में वो ख़त्म हो जाते हैं। और 1 एकड़ अगर आपको धान की चाहे बुआई करनी हो चाहे रोपाई करनी हो, यदि देखिए आपको जो है ना इस बार जो है जैसे खेत बचाओ अभियान है उसमें हमें रासायनिक खाद का उपयोग भी कम करना है,
1: यानी ठीक आधा करना है।
0: आधा करना है।
1: अगर आप 2 बोरी खाद प्रयोग करते थे तो इस बार 1 बोरी करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो कार्बनिक स्रोत हैं, कार्बनिक खादें हैं, उनका प्रयोग बढ़ाइए। जीवाणु खादों का प्रयोग बढ़े,
0: जीवाणु खादों
1: का, हरी खाद का प्रयोग बढ़ाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो चूंकि आपको बुवाई करनी है तो हरी खाद का हरी खाद तो अभी नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे DAP की मात्रा है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ है, लेकिन इसको आधा कर देंगे। लेकिन इसके साथ आपको करना है PSV कल्चर जो आता है उसको जो है ना 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 10 क्विंटल गोबर की खाद में मिलाकर 2 से 3 दिन रख दें, और जब खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो उस समय इसको जो है मिला दें, तो जो पूर्व की जो हमारी फास्फोरस है उसको घोल करके पौधे को उपलब्ध करा देगा, तो उसकी शुरुआती बढ़वार और अच्छे से होगी।
1: डॉक्टर साहब, बड़ी सटीक बात चल रही है, लेकिन एक छोटा सा अंतराल है, उसके बाद फिर कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बार फिर मिलते हैं। कार्यक्रम हेलो किसान में।

0: शाली 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार।

0: प्रभावशाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान।

0: भाइयों बहनों, आप सभी का डॉक्टर केएम सिंह साहब आज के विशेषज्ञ हैं, जो फसल विज्ञानी हैं, सस्य विज्ञानी हैं और वरिष्ठ प्रसार अधिकारी हैं कुमारगंज अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, इस चरण में भी आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, स्वागत है।
0: डॉक्टर साहब, लगातार किसान भाइयों बहनों के फोन आ रहे हैं। अब ये बताएं कि जहाँ लो लैंड है या जहाँ बाढ़ आ जाती है, पानी लग जाता है, तो वहाँ दीर्घ अवध की प्रजातियाँ?
1: दीर्घ अवध की प्रजातियाँ कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जैसे सावा सब्बन है, आप जलपरी है, ऐसी प्रजातियों का चयन करें जो कि अब पानी में, जैसे बीच में जब बाढ़ आती है उस समय 10 से 12 दिन तक उसको सहन करने की क्षमता हो, तो ऐसी प्रजातियों को हमें चयन करके वो करें। दूसरा एक और आप किसान भाई कर सकते हैं, लोकल विधि है, इसमें क्या है कि पहले जो है नर्सरी आप जो है मई में तैयार कर लें, उसको एक छोटे से प्लाट में,
0: यानी
1: संडा विधि छोटे से प्लाट में उसको रोपण कर दें, उसके बाद मेन प्लाट में उसकी रोपण करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी
0: मजबूत
1: पौधा बनेगा और जब बाढ़ का असर उस पर कम होता है और आपको उत्पादन अधिक मिलेगा, तो ये भी आप अपना सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो भैया, नाम बताएं।
2: राम और मिश्रा बोल रहे हैं साहब, बाबागढ़ ब्लॉक से,
0: प्रतापगढ़ जिला।
2: जी जी सर,
0: बहुत स्वागत है रामोद मिश्रा भैया, आप एक सजग किसान हैं। आज का सवाल है क्या?
2: जी, हमारे घुइया लगाए हैं, घुइया में हमारे जैसे ऊपर पत्तों पर से धूल जम जाए, लेकिन वो छोटे कीड़े हैं भूरे रंग और सफेद रंग,
0: हाँ,
2: तो और उसमें जुराई भी है, तो एक बार किसान कॉल सेंटर से हमने बात किया था, दवा बताए थे, कापर ऑक्सीक्लोराइड, उसका छिड़काव किया
0: तो उसका असर कुछ हुआ?
2: अभी भी पूरी समस्या गई नहीं है, अभी जुराई भी दिखाई दे रही है।
0: देखिए डॉक्टर साहब, एकदम सटीक जवाब देंगे आपका। डॉक्टर साहब देखिए,
1: पहले
0: अरवी यानी भुइया के फसल है
1: वो, मैं आपकी बात समझ गया, जुराई मतलब वो कीड़ा, कीड़े के बारे में बात
0: और
1: कर रहे हैं,
0: सफेद परत जैसे भी है,
1: ठीक है,
0: तो यानी फफूंद का भी असर,
1: फफूंद का असर है, तो इसके लिए आपको जो है ना एक काम करना है, देखिए घुइया पे जब भी आप स्प्रे करेंगे, एक तो सबसे पहले स्टिकर का प्रयोग करना है, क्योंकि उसका पत्ता इतना चिकना होता है कि जो
0: दवाई टिकेगी नहीं।
1: दूसरा आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, ये
0: कॉम्बिनेशन
1: 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, प्लस इसमें जो है ना एसिटामेप्रेट आता है,
0: एसिटामेप्रेट
1: आता है, इसमें दोनों प्रकार के जो रस चूसने वाले भी कीट और वैसे दोनों कीटों को ये कंट्रोल करता है, ये 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके स्प्रे करें, लेकिन ये ध्यान रखें स्प्रे शाम 5 बजे के बाद करें, चूंकि इस समय जो तापमान अधिक होने के कारण से पौधे के शरीर में दवा प्रवेश नहीं कर पाती है, तो इसलिए आपको शाम के समय इसका स्प्रे कराएंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा।
0: हाँ, रामोद मिश्रा भैया बाबागंज प्रतापगढ़ से, आप ये दोनों दवाओं का प्रयोग करें, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कम्बिनेशन है, फफूंदी नाशक है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर का पानी हो और 1 ग्राम एसिटामिप्रेड प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करें, लेकिन इसमें स्टिकर जरूर मिला दें ताकि अरुई के पत्ते या जो घुइया का पत्ता है उस पर दवा टिके और असर करे, रोग और कीड़ा से मुक्ति मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपको फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो देर से तैयार होने वाली प्रजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो देर तक का समय है उनके पास की धान की लंबी प्रजातियां लगाना चाहते हैं।
1: लंबी प्रजातियों में जैसे हमारा जो है नरेंद्र धान 2065 हमारा 135 से 140 दिन की वैरायटी है, और नरेंद्र 2064 हमारा जो है ये भी 135 से 140 दिन की वैरायटी है, इसको आप चयनित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सावा सब्बन है ये वैरायटी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा करती है। MTU से
0: 29
1: ये प्रजाति आप चयनित कर सकते हैं, ये वैरायटियाँ जो है ना हमारे लंबा अवधि की, और उसमें MTU 70-29 जो प्रजाति है,
0: बहुत अच्छी पैदावार,
1: अच्छी पैदावार, साथ साथ ये सुगंधित ग्रुप में भी आती है, तो इसका चावल जो है खाने में बहुत अच्छा लगता है।
0: सुगंधित की बात आपने शुरू की, तो सुगंधित जो प्रजातियां हैं उनकी भी चर्चा कर ली जाए।
1: हाँ देखिए, जो हमारा जो इस समय जो काला नमक एक प्रजाति, इसकी जो हमारे विश्वविद्यालय और पूसा नरेंद्र से पूसा इंस्टीट्यूट से विकसित हुई है, पूसा नरेंद्र काला नमक एक, पूसा

0: नरेंद्र, काला नमक दो, ये प्रजातियाँ हमारी काला नमक की जो सुगंधित प्रजाति है, जो हमारे विशेष करके तराई बेल्ट के लिए, यहाँ पूर्वी तराई बेल्ट के लिए।
1: लेकिन जो किसान भाई बीज चाहते हैं, बीज मिलेगा कहाँ?
0: बीज आपको प्राप्त करने के लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, और हमारा आचार्य नरेंद्र देव के जो बीज
1: सेंटर
0: एटिक सेंटर बीज विक्रय केंद्र पर इसका बीज उपलब्ध है। आप वहां संपर्क करें, और नहीं मेरा नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर पर बात करें तो हम उपलब्ध करा।
1: यानी किसान भाई जो भी काला नमक लगाना चाहते हैं, तो ये जो नई

0: केंद्र पर इसका बीज उपलब्ध है, आप वहां संपर्क करें, और नहीं मेरा नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर पर बात करें तो हम उपलब्ध करा।
1: यानी किसान भाई जो भी काला नमक लगाना चाहते हैं तो ये जो नई प्रजातियां हैं इनका बीज आप कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज से या जो कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थ नगर और बस्ती है वहां से संपर्क करके ले लें। इसके अलावा भी ढेर सारी सुगंधित प्रजातियां हैं जिनको चुन सकते हैं।
0: हाँ, जैसे पीबी 1728 है, पूसा सुगंध 5 है, टाइप 3 है, बासमती 370 है, पूसा बासमती 1 जो 1121 के नाम से आप जानते हैं। हाँ। वो बहुत अच्छी प्रजाति है।
1: मालवी सुगंधा भी,
0: मालवी सुगंधा है, लेकिन ये ना अब जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सुगंधित प्रजाति के नाम से ही आप प्रयोग कर सकते हैं, इनको बासमती ग्रुप में यहाँ नहीं
1: जी। डॉक्टर साहब एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो
2: जी सर,
1: नाम बताएं भैया, कहाँ से?
2: वीरेंद्र कुमार यादव।
1: वीरेंद्र कुमार यादव भैया कहाँ से?
2: लखीमपुर खीरी।
1: अपने गांव और ब्लॉक का नाम भी?
2: ललहुआ।
1: अच्छा, ललहुआ के किसान हैं, बहुत स्वागत है। यानी किसान रेडियो क्लब ललहुआ से हैं आप?
2: इसके सदस्य हैं।
1: बहुत स्वागत है, सवाल क्या है आपका?
2: सर, धान की नर्सरी कब तक डाली जा सकती है?
1: हाँ, ये सटीक सवाल है। बहुत सारे किसान भाई डाल चुके हैं, ये कब तक धान की बिहन डाल दें? डॉक्टर साहब,
0: ये जो धान की नर्सरी डालने का अंतिम पड़ाव चल रहा है, चाहे इसको सप्ताह मान लीजिए, एक सप्ताह तक आप डाल सकते हैं, चूंकि जो है ना धान की रोपाई हमको 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए, इस हिसाब से हमको डालना है।
1: और सुगंधित प्रजातियों के लिए थोड़ा समय
0: जैसे काला नमक है, इसको तो अभी 10 दिन बाद भी डालेंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो है ना जैसे सामान्य प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र 2064 या अन्य जो इस टाइप की प्रजातियां, उनको थोड़ा सा अभी इसी हफ्ते तक उसको डाल करके आप
1: लेट ना करें। हाँ, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कुमार यादव भैया, आप किसान रेडियो क्लब को सक्रिय करें और एक अलग जगाते रहें अपने अगल बगल के किसान भाइयों बहनों के बीच में, उनके अलग अलग गांवों के किसान भाइयों बहनों को जागरूक करें और हर गांव में किसान रेडियो क्लब जरूर बनाएं। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कुमार यादव भैया। डॉक्टर साहब, बहुत सारी समस्याग्रस्त भूमि है, वहाँ पर भी धान की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, जैसे ऊसर जमीन है।
0: ये धान की खेती ऊसर जमीन में लगाने से हमारा ऊसर सुधार बहुत अच्छे से होता है, तो उसके लिए जो हमारी प्रजातियाँ संतुलित की गई हैं वो साकेत 4 है, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2, ऊसर धान 3, CSR 10, 13, 30, 31, नरेंद्र धान 2008, 2009 और CSR 60, 56 और 45, ये प्रजातियां हैं जो ऊसरीली जमीन है उसमें बहुत आसानी से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जहां धान की नर्सरी अभी भी डालनी है तो कौन कौन सी बारीकी रखें किसान भाई बहन, बीज शोधन, भूमि शोधन और क्या क्या?
0: सबसे पहले किसान भाइयों से मेरा कहना है कि जो हम नर्सरी के लिए जो बीज को भिगोते हैं उसको बहते हुए नाले पानी में ना भिगोएं या बड़े हौज में ना भिगोएं। जितना आपके पास बीज है उतना बीज जो है एक टब या ड्रम में रखें। अच्छा। और उसमें ये देख लें कि कितने पानी में ये भीग जाएगी। हाँ। उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कार्बन डाइजिम जिसे वो या थीरम 2 ग्राम उसको उसमें पहले से घोल दें, फिर उसको उसमें बीज डालें, तो ये क्या है ना आपका बीज उसके अंदर
1: सीज जाएगा
0: और अंदर ये दवा चली जाएगी, तो ये बाद में हल्दिया रोग या काला कंडुआ रोग आता है वो रोग आपके खेतों में नहीं आएगा।
1: यानी टीकाकरण हो जाएगा बीज का टीकाकरण भी जरूरी है और भूमि का भी टीकाकरण जरूरी है। और एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, नाम बताएं।
3: नाम दयाल दास कसबा बोल रहे हैं जी।
1: कहाँ से?
3: अजीतमल ब्लॉक से,
1: औरैया से।
3: जी जी,
1: बहुत स्वागत है दयाल दास कुशवाहा भैया। ये बताएं कि कौन कौन सी खेती से जुड़े हैं आप?
3: जी, धान की है, बाजरा भी करते हैं, धान भी करते हैं।
1: इस बार खरीफ में क्या तैयारी है आपकी?
3: हाँ जी, तैयारी ये समस्या थोड़ी सर ये फंस रही है कि 1 किलो धान का बीज हम कितनी जगह में डालें, ये प्रॉब्लम फंस जाती है किसानों के बीच में।
1: अच्छा, नहीं
3: कभी कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है।
1: हाँ, ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे 1 एकड़ के लिए नर्सरी डालनी है तो लगभग 400 वर्ग मीटर प्रति एकड़ की नर्सरी के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप थोड़ा सा

0: उठा के डालें, अगर हो सकता है बढ़ते तापमान के चलते या कोई बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, डॉक्टर साहब क्या करना चाहेंगे
1: इसमें? पहले तो ये चीज़ है कि आपका बीज जो है ना बढ़िया होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए,
0: और बीज शोधन भी होना,
1: बीज शोधन होना चाहिए,
0: और भूमि शोधन,
1: भूमि शोधन के लिए आप जो कार्बन डाइजिम के अलावा आप जो जैविक विधि से करना चाहते तो ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेसियाना से आप उसको उपचारित करके अगर जब भूमि शोधन करके डालते हैं तो आपके में कीड़े और बीमारियां नहीं आएंगी। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो हम बीज जो उसमें डाल रहे हैं सामान्य से थोड़ा सा दूरी पर डालें तो उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा निकल के आता है मोटा मजबूत निकलता है और उसको अच्छा मिलता है। एक और चीज़ अगर आप पौध डालने जा रहे हैं तो आपको एक और आपको करना है, जैसे ही आपने पौध डालने के लिए आप कदेर करते हैं, कदेर करने के बाद जैसे गंदला पानी बैठता है तो आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध रहती है, उसको थोड़ा सा महीन मोटे छलने से छान लें और जैसे मिट्टी के साथ जैसे बैठ रही हो उसी समय अगर उसको डाल देंगे तो आपकी पौध जो है बहुत बढ़िया से चलेगी,
0: यानी उभर के आएगी,
1: उभर के आएगी, और जब आप उखाड़ेंगे तो वो जो है ना पौध जो है बहुत आसानी से निकल आएगी, जड़ नहीं टूटेगी।
0: बहुत धन्यवाद दयालदास कुशवाहा भैया अजीत मल औरैया से। आप अपने गांव में किसान रेडियो क्लब बनाएं, गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाएं, और अगर उनकी भी कोई समस्या है खेती किसानी बागवानी और पशुपालन से जुड़े तो हेलो किसान तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोगों की बात चल रही थी धान की नर्सरी की, लेकिन एक किसान भाई लाइन पर और हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
0: भैया, नाम बताएं। हेलो, हैं
2: महेश सिंह, ग्राम मधवापुर,
0: हाँ
2: थाना में चेता जिला सीता से।
0: बहुत स्वागत है महेश भैया, क्या सवाल है आपका?
2: अरे डॉक्टर साहब, हम भेड़ बोए ना, हम भादा जी का नागर मोथा का तो बहुत निकला है, कैसे का हो?
0: हाँ देखिए, नागर मोथा की समस्या बहुत रहती है डॉक्टर साहब। कई दिन की बेहन हो गई आपकी?
2: आज हो गई एक सप्ताह।
0: एक सप्ताह डॉक्टर साहब, नागर मोथा की समस्या बहुत जगह किसान भाइयों, भादा जिसको बोलते हैं, तो इस समय कुछ कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारा 240 जो आता है, 240 दवाई इथाइल ईस्टर जो होता है,
0: अच्छा वो काम करेगा?
1: वो काम करेगा। आप जो है उसमें जो है 200 मतलब आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं,
0: हाँ।
1: और उसका शाम के समय आप स्प्रे करिएगा तो मोथा आपका मर जाएगा। और एक आती है मेट सल्फ्यूराइड मिथाइल,
0: हाँ।
1: वो 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर होती है, तो आप उसका देख लीजिए कि हमारा
0: कितने रकबे में नर्सरी है,
1: कितने रकबे में नर्सरी है, उसी के हिसाब से आप उसका घोल बना के डाल सकते
0: हैं। यानी 1 एकड़ में 8 ग्राम ही मेट सल्फ्यूराइड दवा पड़नी है, जो सकरी पत्ती वाले इस तरह के खरपतवार हैं
1: जी
0: उनके लिए बहुत कारगर है। और 240 इथाइल ईस्टर की बात आपने की,
1: इथाइल ईस्टर
0: उसकी मात्रा कितनी?
1: वो 350 ml प्रति एकड़ की दर है, वो जो घोल बनाएंगे तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बना लेंगे।
0: अच्छा 2 ग्राम प्रति लीटर,
1: 2 ml,
0: 2 ml प्रति लीटर के। बहुत धन्यवाद महेश सिंह भैया मछरेहटा जिला सीतापुर से। डॉक्टर साहब एक अंतराल और है छोटा सा, उसके बाद कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
5: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
5: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।

0: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर केएम सिंह साहब जो फसल विज्ञानी हैं। डॉक्टर साहब इस चरण में भी आपका स्वागत है। लगातार किसान भाइयों बहनों के फोन आ रहे हैं। जो आज का फोन इन का नंबर है उसको बता दें 0522-223-8825 यानी 0522-223-825। आज अगर आपका कोई सवाल अभी भी रह गया है तो आप तुरंत फोन करिए और सीधे डॉक्टर केएम सिंह साहब से बात करिए। डॉक्टर साहब धान की बात हो गई, अब ये बताएं कि थाली में दाल का कटोरा भरा रहे इसकी भी तैयारी करनी है, लेकिन एक किसान भाई भी लाइन पर हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, नाम बताएं।
1: मैं परमहंस सिंह ग्राम बुधवन तहसील खागा जिला फतेहपुर से बोल रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है परमहंस भैया, बहुत दिन बाद फोन आया आपका।
1: जी जी जी।
0: क्या सवाल है आज का?
1: सर अभी एक किसान ने पूछा था नर्सरी में खरपतवार नाशी के लिए।
0: जी।
1: तो उन्होंने पूछा था 10 दिन के बाद के, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम खरपतवार नाशी डालना चाहे तो क्या डाल?
0: पेंडी मेथिलीन।
1: जी
0: पेंडी मेथिलीन एक दवा है जिसको आप 48 से लेकर के 72 घंटे तक, डॉक्टर साहब
2: हाँ 24 घंटे के अंदर तक डाल सकते हैं।
0: ज्यादा अच्छा है,
2: ज्यादा अच्छा वो प्रभावशाली।
0: हाँ, ज्यादा अच्छा होगा कि तुरंत डाल दें?
2: तुरंत डाल दीजिए उसको।
1: अगर 2-3 दिन के हो गए ये तो
2: कोई बात नहीं, 2-3 दिन की होगी डाल दीजिए, वो तो 48 घंटे तक काम करता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऑपरेशन नहीं करना, यानी उसके खेत के बीच से नहीं निकलना।
0: हाँ।
2: चूंकि ये अपना एक जाल सा बनाती है तो उसकी वजह से जो पहले खरपतवार जो जमते उनको जमने नहीं देती, बाद में आपका धान निकल आता है।
0: जी
2: ये कर सकते।
0: बहुत धन्यवाद परमहंस सिंह भैया फतेहपुर खागा से। और डॉक्टर साहब हम लोग दाल की बात कर रहे थे कि जो खरीफ की योजना बनाए किसान भाई बहन, तो जो उपहार खेत हैं या कोई नई तरकीब हो जिसमें अरहर उड़द और मूंग की भी बुआई करें, चाहे मुख्य फसल के रूप में या सब फसल के रूप में।
2: देखिए दाल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें अरहर की दाल हम लोग बहुत खाते हैं, तो अरहर की बुवाई का एकदम परफेक्ट समय चल रहा है। अगेती प्रजाति का परफेक्ट समय चल रहा है जून के महीने में।
0: कौन कौन सी वेराइटी?
2: इसमें पारस है, PA91 है, PAU881 है, PA16 है, आपकी पूसा 218-4 है। ये प्रजातियां हमारी, या उपास वैरायटी जो आती
0: उपास
2: है 120 है, ये प्रजातियां हमारी जो है ना अगेती के रूप में ली जाती हैं और इनकी अवधि लगभग 130-140 दिन होती है। और जो है इनका
0: इसको
2: जो
0: काटने के बाद गेहूं की बुआई भी कर
2: बुआई कर सकते हैं और इनसे औसतन उत्पादन 18-20 क्विंटल हमको प्राप्त हो जाता है।
0: लेकिन समय बुआई का यही चल रहा है पलेवा करके और उचित नमी में बुआई कर दें।
2: इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम पलेवा करके बुआई करेंगे, अगर आप आलू जैसी मेड़ बना लें
0: हाँ।
2: और उसमें अगर बीज चोप देंगे तो आपको जो बरसात होती है, जो बरसात कभी कभी ज्यादा खेत में पानी रुक जाता है तो उसकी वजह से उकठा जैसी समस्या आती है, वो आपके खेत में समस्या नहीं
0: आएगी, पानी निकल जाएगा,
2: पानी निकल जाएगा और आपके अरहर अच्छे से उत्पादन देगी।
0: डॉक्टर साहब मोटा अनाज और मक्का जहाँ करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो वहाँ क्या सलाह है?
2: जैसे खरीफ का मौसम है, इसमें मोटा अनाज आप सामा है, कोदो है, कुटकी है, ये सब जो फसलें हैं इनका आप बो सकते हैं 15 जून के बाद और 15 जुलाई के मध्य में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए वो खेत चयन करें जहाँ पे पानी नहीं रुकता हो, वो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं,
0: ज़्यादा अच्छा रहेगा।
2: दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी भी आपके पास समय है, यदि आप जो है मोटा अनाज लेट बोना चाह रहे हैं तो इस समय अगर हरी खाद भी बो देंगे तो वो खेत कवर हो जाएगा और उसके बाद आप बुआई करें।
0: यानी इस समय आप ढैंचा की बुआई कर दें
2: हाँ।
0: और जब तक बुआई करनी होगी मोटा अनाज की तब तक पलट देंगे
2: उसका।
0: एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर साहब। हेलो भैया, नाम बताएं।
3: हिमांशु यादव बोल रहे हैं श्रावस्ती।
0: बहुत स्वागत है हिमांशु, क्या सवाल है आपका? रेडियो सेट से
3: 10 दिन की नर्सरी हो गई है।
0: रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए, बताइए।
3: हेलो।
0: हाँ बोलिए। घास ज्यादा हो गई है
3: जी।
0: 10 दिन की नर्सरी हो गई, घास ज्यादा है तो
2: ठीक है, कोई नहीं
0: हाँ।
2: तो उसके लिए बिस्पायरविक सोडियम,
0: हाँ
2: बिस्पायरविक सोडियम जो आता है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से
0: घोल बना करके
2: आप स्प्रे कर देंगे तो ये जो हमारी जो घास जो हो गई है वो घास नियंत्रित हो जाएगी और आपका बहुत अच्छे से प्राप्त होगी।

0: बहुत धन्यवाद हिमांशु यादव श्रावस्ती से। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि जहां मक्का लगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो उन्नत प्रजातियां कौन सी हैं, संकर प्रजातियां कौन कौन सी हैं, और बुआई में क्या क्या बारीकी करें किसान भाई बहन?
1: मक्का लगाने के लिए किसान भाइयों को अच्छा मौसम है, और इस बार मक्का का जो सरकार की भी मांग ज़्यादा है, तो उसमें प्रजातियों का जो चयन करना है, कई तरह की प्रजातियां हैं। जैसे हमारे जो है बहुत अगेती प्रजाति विवेक 5 है, 15 है, 17 है, 21 है, 27 है, पीएच 2 है, और अगेती पकने वाली प्रजातियां जैसे हाइब्रिड में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जेएच 34-59 है, और प्रकाश है पीईएच 2 है, एक्स 33-42 है। पूसा संकुल प्रजाति में पूसा कंपोजिट 4 प्रजाति जो है हमारी इसके लिए है। अगर मध्य देरी वाली प्रजातियों का चयन करना चाहते हैं तो कई प्रजातियां हैं, उसमें से आपके एचएम 8 है, 10 है, इसी के साथ साथ हाइब्रिड अन्य प्रजातियां हैं, उनको आप ले सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाइयों बहनों से आपका सीधा संवाद हुआ, बहुत सारे किसान भाई बहन लगातार टेलीफोन पर लगे रहे लेकिन हेलो किसान तक नहीं पहुंच पाए, उनकी भी इच्छा होगी कि आपसे बात करें, अपने सवाल का जवाब मांगें, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हाँ किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 9307015439,
0: अंग्रेजी में
1: 9307015439,
0: एक बार और हिंदी में
1: 9307015439।
0: आज हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का, खरीफ अभियान की सफलता के बारे में और माटी की सेहत के बारे में और खेत बचाओ अभियान के बारे में?
1: किसान भाइयों, सबसे पहले जो है ना, हमें जो उर्वरक की मात्रा आदि करनी है, उसके लिए आपको रासायनिक खादों पर न डिपेंडेंट होते हुए हमें हरी खाद और जैविक खादों का प्रयोग करके हमें
0: जमीन को
1: जीवाणु खादों का प्रयोग करते हुए और उसको जमीन को स्वस्थ बनाए और अच्छा उत्पादन लें, ये आज का हमारा आपके साथ संदेश है।
0: और फसल की जो नई नई प्रजातियां हैं उनका भी
1: चयन करके उत्पादन लें।
0: बहुत धन्यवाद डॉक्टर KM सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो भी सवाल थे किसान भाइयों बहनों के, उनसे आपने संवाद करके उनका समाधान किया, बहुत धन्यवाद। अब आज का मौसम क्या है और 4 मंडियों का थोक बाजार भाव, इसको बता रही हैं पुनीता बहनी और ओम प्रकाश भैया। नमस्कार
2: पुनीता बहनी।
3: हाँ ओम प्रकाश भैया,
2: देखो कितनी बढ़िया बैठकी रही, और फिर जो डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह भैया रहे और अपने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया रहे, कितनी बढ़िया तरीके से सवाल भी पूछे और अपने पंचन की जो समस्या के भाव के समाधान भी।
3: बिल्कुल भैया, जो ईसाइद की जरूरत है, अपने खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे हैं पंच भाई, नर्सरी डाल रहे हैं, उनका समाधान उनके फोन के माध्यम से उनका मिल गया है, और बाकी जो पंच भाई फोन नहीं करें उन्होंने यहाँ सुनी के भैया उनका जवाब जो है वो मिल गया है,
2: और साथ ही साथ फोन नंबर भी तो बता देगा है ताकि अपने अगर पंचन का कोई समस्या हुए तो डॉक्टर साहब से फोन करके समस्या के समाधान ले सकते हैं।
3: बिल्कुल भैया,
2: तो अब दोनों भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब अपने हाथ में है मौसम के हाल और थोक मंडी भाव। तो पहले मौसम के हाल बता दीजिए। पृथ्वी मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, यानी आज यानी 10 तारीख से 14 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ चेतावनी भी है कि 11 और 12 यानी कल और परसों पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आंधी चले की चेतावनी जारी की गई, साथ ही साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की।
3: बिल्कुल भैया, तो देखो हमका सबका अपने खेती पाती के लिए काम के खातिर मौसम केयर होते जानकारी के बहुत ज्यादा जरूरत होते, और जो आप बताओ ना कि अति गति से हवा चले के, तो हमका सबका पहले से नहीं चेत जाए के यहाँ है और सावधान रहा के जरूरत है।
2: भैया आप चला जाए मंडी भाव, तो लखनऊ कानपुर गोंडा अयोध्या के थोक मंडी भाव में यहाँ गेहूँ के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 2585 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में यहाँ रहा 2585 रुपया, गोंडा मैयारा 2520 रुपया, और अयोध्या मैयारा 2585 रुपया।
3: भैया चना छोटा क्या भाव रहा लखनऊ मंडी में है 6650 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 6390 रुपया, गोंडा में यहाँ 6700 रुपया, और अयोध्या में यहाँ 6400 रुपया प्रति क्विंटल।
2: मक्का पीली वाली उके भाव कानपुर में यहाँ रहा 1950 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में यहाँ रहा 1970, अयोध्या में यहाँ रहा 2400 रुपया प्रति क्विंटल।
3: भैया मटर रही 4480 रुपया प्रति क्विंटल लखनऊ में यहाँ, कानपुर में 4510 रुपया।

0: गोंडा 4,200 रुपया और अयोध्या 4,270 रुपया।
1: गुड़ के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 4,680 रुपया और कानपुर में यहाँ रहा 4,340 रुपया प्रति क्विंटल।
0: भैया आलू सफ़ेद रहा 840 रुपया प्रति क्विंटल लखनऊ, कानपुर में 690, गोंडा 950 रुपया और अयोध्या में यहाँ 985 रुपया प्रति क्विंटल।
1: प्याज के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 1,360 रुपया, कानपुर में यहाँ रहा 1,340, गोंडा में यहाँ 1,600 और अयोध्या में यहाँ रहा 1,300 रुपये प्रति क्विंटल।
0: तो भैया ये तो रहे बाजार भाव, थोक मंडी भाव रहे।
1: कल के लोकायतन में यहाँ पंच सुनिए, कौशल विकास से सशक्त होता ग्रामीण भारत, इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताइए डॉक्टर आशिया बानो बहनी, और खेती किसानी में यहाँ पंच जरूरी जानकारी ले है। और अब देखो कार्यक्रम के समय समाप्त हो रहा है, तो पंचन सी लीजिए आज्ञा। जय हिंद।
2: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
3: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
5: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में

0: निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31। इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ऐश्वर्या द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट से अतिश कुमार श्रीवास्तव की भेंटवार्ता। विषय है पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव।
2: कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के विरुद्ध कुछ सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं परिवार में, वर्किंग प्लेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो इसी पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में बनाया गया था, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या सुधार हुए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है ऐश्वर्या द्विवेदी को, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लखनऊ में। ऐश्वर्या, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी

0: पॉक्सो एक्ट क्या है, किसके लिए है और कैसे हमारी आम जनता को इससे लाभ हो सकता है?
1: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया है, बहुत अच्छा इशू रेज किया है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, जो 2012 में आया था। इसमें आपको अवेयरनेस ये दी गई है कि सबसे ज़्यादा तरीके से जो चाइल्ड अब्यूज़ हमारे आसपास हो रहे हैं या हमारे देश में या देश के बाहर जहाँ भी हो रहे हैं, मैक्सिमम पाए गए थे कि मेल चाइल्ड के साथ ज़्यादा हो रहे थे। इसीलिए एक्ट बनाया गया कि इसमें जेंडर न्यूट्रल किया जाए, कि लड़की के साथ ही सिर्फ अब्यूज़ नहीं होता है, लड़के के साथ भी होता है। और ये जेंडर न्यूट्रल होने की वजह से ये पॉक्सो एक्ट लागू किया गया, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी लोग अवेयर हुए और बच्चों के साथ गलत होने से बचा। जैसे बैड टच अगर कोई होते हुए देखता था तो उनको कंप्लेन करने की सुझाव देना, ये सब तो ये अवेयरनेस फैली है आपके रेडियो के द्वारा। जैसे दूरदर्शन में अवेयरनेस, आपके इस गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अवेयरनेस दी जा रही है कि पॉक्सो एक्ट है, क्यों है, बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी जा रही है। इन सब चीज़ों से एक तरीके से हम लोग जागरूक हो रहे हैं और बच्चों के साथ गलत होने से बचा पा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा हमारे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों की अगर हम लोग सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये हमारे देश के लिए बहुत नुकसान की चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ आर कंट्री शुड बी वेरी मच प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो पॉक्सो एक्ट अगर अवेल की गई है, अगर लोगों की कंप्लेंट दर्ज होगी, लोग इस चीज़ से डरेंगे और बच्चों के साथ नहीं गलत होगा, बच्चे ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे और हमारे देश के लिए अग्रसर रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे।
0: तो ऐश्वर्य, इसमें आपको क्या लगता है कि जो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? तो अगर बढ़ोतरी हुई तो जानकारी लोगों को बढ़ रही है, इसका मतलब है?
1: देखिए, जैसे कि हमारा देश अब डिजिटलाइज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं, जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अगर अब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो कई केसेस में हमने देखा कि पहले लोग जो थे बोलने से डरते थे, घर में ही ये चीज़ें होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस हमारे पास आया था जिसमें एक घर के दादाजी ही अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ अब्यूज़ कर रहे थे। ये घर में किसी सर्वेंट ने देखा, उसने ये चीज़ जो है फैमिली में बताई, फिर ये चीज़ जो है क्लियर आउट होके आई, फिर इस चीज़ पे पॉक्सो एक्ट लगाई गई और उन पर उस हिसाब से कार्रवाई की गई। तो ये अवेयरनेस के कारण हुआ कि घर में एक पर्सन है जो आपका हाउस हेल्प है, वो भी इस चीज़ से अवेयर था, उसने इस चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि वो 8th तक पढ़ा हुआ था और उसने अपने स्कूल में ये चीज़ सीखी थी, तो वो अवेयर रहा, उसने बताया। पहले के ज़माने में लोग ये बात कहने से डरते थे और बच्चों को चुप करा दिया जाता था कि बेटा ये कुछ नहीं है, भूल जाओ। अब वो चीज़
0: मतलब
1: हट चुकी
0: है, वो जो बदनामी होगी परिवार की, ये भी रीजन
1: रहा। जी जी, ये वाला माइंडसेट अब लोगों का थोड़ा चेंज हुआ है अवेयरनेस की वजह से, और ये एक्ट आने की वजह से लोग अब थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी है, अब लोग थोड़ा स्टैंड लेने लग गए। पहले लोग इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते थे, कई बच्चे ट्रॉमेटाइज रहते थे बचपन में, उनके साथ 10-10, 11-11 साल तक लाइफ में, वो 6 साल की उम्र से लेके 18 साल के हुए जा रहे हैं और उनके साथ गलत ही हो रहा होता था और वो नहीं बोल पाते थे। अब वो चीज़ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो एक तरीके से ये अच्छी पहल हुई है हमारे कानून में,
0: समाज के लिए बहुत अच्छी बात।
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो ये घर के अंदर तो जो होता रहा है उसको नहीं बताया जाता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा सहारा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बच्चे भी उसमें होते हैं, तो उनके प्रति क्या रवैया लोगों का रहता है?
1: जैसे आपने क्वेश्चन रहे, कई फील्ड्स हैं, जैसे रेडियो हो गया या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, वहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, या कोई म्यूज़िक इवेंट होता है वहाँ भी बच्चे गाना गाते हैं, और बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बड़े लोग भी होते हैं जो मेजर एज के होते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो अगर वर्क प्लेस में इस तरीके की अगर कोई आपको ऐसा कोई आपत्तिजनक सिचुएशन दिखती है, तो एक सही सिविलाइज सिटीजन होने के वजह से आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि ये चीज़ की कंप्लेन दर्ज कराएं पुलिस में। पुलिस में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, वो आपकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपकी बात, आपको लगता है एविडेंस चाहिए होते हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा कि ऑफिस बच्चे से फिर बाद में पूछा जाएगा, उस हिसाब से चीज़ें करी जाएंगी। तो वर्क प्लेस में अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या आप उस मैनेजर हैं उस प्लेस के, और आप इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं बहुत टाइम से और आपने कंप्लेन नहीं की, तो भी आप पे कार्रवाई हो सकती है कानून में। इसीलिए इस चीज़ को अवेयर रहें, और अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर इत्तला करें टू द पीपल हु आर अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब।

0: तो जैसे मान लिया कि हमारा ही ऑफिस है, इसमें कोई बच्चा आता है किसी काम के लिए, किसी नाटक के लिए, किसी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके साथ अगर कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन देख रहा है कि कुछ अब्यूज़ हो रहा है या बैड टच हो रहा है, तो वो कहाँ कंप्लेंट करे जाके?
1: देखिए, अभी इतना डिजिटल वर्ल्ड हो गया कि ऑनलाइन नंबर्स भी आ गए हैं. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, जिसमें आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली. और अगर आपके आसपास कोई पुलिस थाना है, वहाँ भी ये कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं. और इन केस अगर आपको ऐसा कुछ पता भी लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो चोरी छुप के बच्चों की पिक्चर्स लेता है, या उस पिक्चर्स को यूज़ करके किसी कमर्शियल यूज़ के लिए डालता है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए भी प्रावधान है पॉक्सो में. और आप इस तरीके से या तो हेल्पलाइन के थ्रू कर सकते हैं, या आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में भी ऑफिसर होगा, वो आपकी चीज़ कंप्लेन को पूरी तरीके से दर्ज करेगा.
0: तो हर पुलिस स्टेशन में इस तरह के पॉक्सो के लिए या चाइल्ड अब्यूज़ के लिए वहाँ पे सिस्टम रहता है?
1: देखिए, पुलिस ऑफिसर का जॉब है टू मेंटेन द लॉ, तो आप पुलिस ऑफिसर को भी बताएंगे तो वो भी सुनेगा. और ज़्यादातर पुलिस स्टेशन में अवेलेबिलिटी है कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो इस मामले में डील करते हैं. और काफ़ी एनजीओज भी हैं जिनमें इस तरीके के बच्चे, जिनका आगे पीछे कोई नहीं, गरीब बच्चे हैं, जैसे हमारे स्ट्रीट में बच्चे जो मतलब भीख वीख मांगते हैं, उनके लिए कौन बोलेगा. तो उसके लिए कई एनजीओज भी हैं जो इस पे काम करते हैं. तो वहाँ भी अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, आपको संदेह होता है, तो आप वहाँ भी जाके कंप्लेन कर सकते
0: अच्छा छोटे, इसी एक बात ये उठती है कि मान लिया एक ऑफिस में
1: हैं.
0: कोई देख भी रहा है चाइल्ड के साथ अब्यूज़ हो रहा है
1: कोई फोटो
0: या
1: खींच रहा
0: गर्ल
1: है.
0: के साथ हो रहा है, तो वो कंप्लेन भी उसने कोशिश कर दी या किसी ने छिपा लिया, तो उसके साथ क्या कुछ प्रावधान है सजा के? मान लीजिए कोई व्यक्ति होते हुए देख रहा है अपने ऑफिस में, लेकिन ये कि हमारी ऑफिस का नाम खराब होगा या बदनामी होगी तो वो कहीं नहीं बताता, तो इसके लिए ऑफेंसेस क्या है?
1: जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है. ये चीज़ जो है, इस चीज़ को कानून बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो कानून जो है सज़ा देगा उस पर्सन को जिसने कंप्लेन नहीं की, जिसके ऑफिस में हो रहा है, वो देख रहे हैं और फिर भी नहीं बोल रहे हैं. इस चीज़ पे भी उनको या कंपनसेशन देना पड़ेगा, या उनको सज़ा होगी. तो इस तरीके के चीज़ें अगर आप देखते हैं, तो कंप्लेन तुरंत करें, क्योंकि आप अपनी रेपुटेशन की वजह से किसी के साथ अब्यूज़ होने दे रहे हैं, या उसके साथ कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो ये इलीगल ही माना जाएगा. अगर आपने कोई चीज़ है लॉ ब्रेक किया है, ये लॉ ब्रेकिंग की उसमें ही माना जाएगा कि आपने देखा फिर भी आपने नहीं बोला.
0: अच्छा, इसी पर एक बात ये उठती है कि क्या सभी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसेज में, सभी जिलों में कहें, क्या इस संबंध में कोर्ट्स हैं? चाइल्ड पॉक्सो एक्ट से संबंधित अलग अलग कोर्ट हैं?
1: देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट्स हैं, वहाँ पे पॉक्सो ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए हैं और पॉक्सो कोर्ट्स दिए गए हैं, जिसपे चाइल्ड फ्रेंडली माहौल है. बच्चों के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि वो प्लेग्राउंड की तरह सजा दिया जाता है. वहाँ खिलौने होते हैं, खेलने के लिए होते हैं. और पुलिस ऑफिसर्स को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो कलर ड्रेस में ही उनसे जाएं, पुलिस ड्रेस में ना हो, कि बच्चा ट्रॉमेटाइज किसी भी तरीके से ना हो. इवन वहाँ जो जज साहिबा या जज साहब बैठेंगे, वो भी उनसे उतने ही फ्रेंडली तरीके से बातचीत करेंगे कि बच्चा किसी भी तरीके से मेंटली ट्रॉमेटाइज ना हो. आपके लिए काउंसिल भी अवेलेबल रहते हैं, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे चेक रखते हैं, और मेडिकल हेल्थ भी देखी जाती है. तो ये सब चीज़ों की सारी चीज़ें देखी जाती हैं अंडर द एक्ट, कि बच्चा किसी तरीके से मेंटली अफेक्ट ना हो इन चीज़ों से. बिकॉज एक बच्चे की लाइफ में इस पूरे इंसिडेंस का काफ़ी अफेक्ट हो जाता है, तो बच्चे काफ़ी तरीके से मेंटली बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं. तो इस चीज़ का काफ़ी देखा गया है कि काउंसिल्स इसीलिए प्रोवाइड की जाती है, कि बच्चा जो है काउंसिल करा जाए और मेंटली किसी भी तरह हैरेस ना हो, इस चीज़ के बारे में सोच सोच के.
0: अच्छा शौर्य जी, मान लिया कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास न धन है न कोई सपोर्ट है, तो उसको सरकार की तरफ से क्या कुछ मुफ्त जो है कानूनी सहायता मिल सकती है?
1: देखिए, अगर बच्चा अवेयर नहीं है, पर उसके अगर उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं, और वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या उस तरीके से मतलब सोसाइटी के बहुत अच्छे पार्ट से नहीं आते, और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एनजीओस काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले करते हैं. वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं, तो सर्वेज होते हैं, उसे पता किया जाता है सर्वे में कि बच्चों के साथ किन किन के साथ ऐसा, और ऐसी सिचुएशन अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करी जाती है. और ये एनजीओज इसका मैटर उठाते हैं, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, या कैंप्स वैम्प्स लगते हैं, उसमें बच्चे जो हैं उस तरीके से मतलब अवेयर हो जाते हैं, और उनकी हेल्प हो सकती है निःशुल्क.
0: हमने सुना कि एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है कोई, इसका क्या काम होता है?
1: ये एनसीपीसीआर जो है, इसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कई तरीके की लोग जो हैं अवेल किए गए हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या कोई बच्चे हैं

0: जिनके आगे पीछे कोई नहीं, ऑर्फन है, उनके साथ अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो उन बच्चों को यहाँ पे देखरेख की जाती है और आगे की जो भी इनके लिए बेहतरी के लिए प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है और इन लोग की राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती है।
1: तो ऐश्वर्या जी, इसी में बात आती है कि जो 14-15 साल की उम्र होती है उसके बच्चे या बच्चियां हैं, टीनेजर्स जिन्हें कहते हैं,
0: जी
1: उनके लिए क्या कुछ अलग कानून कहता है हमारा?
0: नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। आजकल का टीनेज जो है, डिजिटल इंडिया वाला टीनेज है। अब जो बच्चे हैं आजकल की, जो 15-16 साल के बच्चे हैं वो 20-22 साल की एज की तरह हो गए हैं। तो अब बच्चे डिजिटल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि किसी से बातचीत करने लगते हैं ऑनलाइन, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है क्योंकि बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, पेरेंट्स घर में है, हर जगह कोई 24/7 विजिलेंट नहीं रह सकता कि अपने बच्चे पे 24 घंटे नजर रखे। तो बच्चे ऑनलाइन बातें करने लगते हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
1: फेक आइडेंटिटी से
0: लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चियों से बातें करते। कई हम लोग ने देखा था इन कुछ केसेस में, कुछ गलत तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे जो इन्वॉल्व थे और बच्चों को इस तरीके से फंसाते थे कि वो जो कम एज की लड़कियां उनकी बातों में आए, उन्हें बरगलाएं और उन बच्चों को ये लोग बरगला के अपने साथ ले जाते थे एंड वो अंडर एज बच्चे होते थे और वो फंस जाते थे और उनके साथ अब्यूज़ होता था। इस चीज़ को बचाने के लिए पेरेंट्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ फाइंड आउट करते हैं और लड़की अगर कहती भी है कि मैं कंसेंशुअल इनसे इन्वॉल्व हूँ और इनसे आगे बढ़ के रिलेशन रखना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स की बात सुनी जाएगी, उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा क्योंकि बच्चा माइनर में आ जाता है। 18 साल से नीचे के बच्चे की जितनी भी कंसेंशुअल होगी उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी, वैल्यू होगी पेरेंट्स की अवेयरनेस की और पेरेंट्स के कंसेंट की। उनको लगता है कि उनके बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और वो पॉक्सो एक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, अपने बच्चे पे स्टैट्यूटरी रेप चार्जेस भी लगवा सकते हैं कि अगर वो इंसान जिससे वो बच्चा इन्वॉल्व है वो मेजर है या माइनर है, वो उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो पेरेंट्स जो हैं इस पे एक्शन ले सकते हैं कानून द्वारा।
1: तो ये तो बात हो गई गर्ल्स पे कि आप चार्जेस लगा सकते हैं, तो अगर टीनेज लड़का है तो उसके लिए क्या होगा?
0: टीनेज लड़का अगर ऐसा अंडर एज लड़की के साथ इन्वॉल्व है तो लड़कों के लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं, जैसे जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल्स के लिए कोर्ट होती हैं और उनके लिए बाल गृह होते, सुधार गृह, वहाँ इन्हें भेजा जाएगा जहाँ पे अगर इन्होंने इस तरीके की कोई चीज़ें पाई गई हैं इनके खिलाफ तो उस पर आगे जाके कार्रवाई होगी। बॉयज़ के लिए है, पर फीमेल्स के लिए जो है पेरेंट्स पॉक्सो एक्ट और रेप चार्जेस लगा सकते हैं अगर वो फाइंड आउट करते हैं कि उनका बच्चा जो है इस तरीके से इन्वॉल्व है अंडर एज होके भी दूसरे पार्टनर के साथ। और आजकल सोशल मीडिया में कई चीज़ें और हैं कि लोग अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वो भी एक तरीके से इलीगल है। यू कैन नॉट शेयर योर पिक्चर्स विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, जो एब्सर्ड हैं और न्यूडिटी को प्रमोट करती, इस तरीके की पिक्चर्स अगर आप शेयर करते हो कोई सेफ रखता है, उस पर भी सेक्शंस दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट में कि उस पर भी कार्रवाई होती है।
1: तो ऐश्वर्या जी, आपने पॉक्सो एक्ट में बदलाव के बारे में इतनी बातें बताई हमें, हमारे श्रोताओं को ज़रूर इससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमें आगे भी ज़रूरत पड़ती है किसी पॉक्सो एक्ट के संबंध में कुछ जानकारी करने की, तो हम ऐश्वर्या द्विवेदी को फिर से अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लोगों को अवेयर करना और उनको जागरूक करना बहुत, मेरा एक तरीके से प्रोफेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हिस्सा बनी यहाँ पे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बातों बातों में।
3: सुनो वो भूमि प्रांगण से उठी आकाशवाणी, मर्त जग को अमर लौकिक भूति की जो बनी दानी, वाग देवी का जहां आसन बिछा नीले गगन में, मनुज वीणा बज रही है ज्योति वीणा स्वर सदन में, जीत कर दिक्काल को सुरलोक में स्वरधार बहती, कल्पना कवि की अलग सौदामिनी साकार बहती, सूर्य रथ संग दौड़ भाषा रथ गुंजाता पूर्व पश्चिम, छू रहा उन्नत मनुज मन स्वर्ग के भी छोर अंतिम। कार्यक्रम बातों बातों में को सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ मैं शीबा राकेश। जिन पंक्तियों से दोस्तों मैंने आज कार्यक्रम का आरंभ किया, ये रचित हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा और ये वही आकाशवाणी है जिससे आप ये प्रसारण सुन पा रहे हैं, जिसके लिए गुरुदेव ने ये पंक्तियां रची। लखनऊ की साहित्यिक, सांस्कृतिक या तमाम विविध कलाओं संबंधित किसी भी गतिविधि में

0: योगदान की चर्चा हो और उसमें लखनऊ के आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो का नाम ना आए तो बात अधूरी ही रहेगी। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है और लखनऊ रेडियो से प्रसारण का कार्य 2 अप्रैल 1938 को प्रारंभ हुआ। लखनऊ रेडियो का स्टूडियो 18 एबट रोड पर 2 मंजिले किराए के एक भवन में हुआ करता था। लखनऊ में हुसैनगंज के चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप के अपने घोड़े चेतक पर सवार एक मूर्ति वाले चौराहे से लाल कुआं की ओर जाने वाली सड़क तब एबट रोड कहलाती थी। पर एबट रोड पर ये रेडियो स्टेशन कम ही समय रहा। 1940 के आसपास रेडियो स्टेशन खोलने के लिए राजा विजय कुमार त्रिपाठी की विधानसभा मार्ग पर स्थित कोठी किराए पर ले ली गई। कुछ समय बाद भारत सरकार ने ये कोठी खरीद ली और लखनऊ रेडियो स्टेशन का ये केंद्र विधानसभा मार्ग पर बर्लिंगटन चौराहे और सचिवालय भवन के बीच आज भी स्थित है और यहीं से गुंजायमान होती है ये उद्घोषणा कि ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आकाशवाणी से विविध कार्यक्रमों के प्रसारण व्यवस्था के प्रारंभिक दौर से ही सामान्य नागरिकों में उसको सुनने में अभिरुचि जग गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संचालन व्यवस्था का अभाव था, अतः इन क्षेत्रों में इसका प्रचलन संभव न हो सका। किंतु शहरी क्षेत्रों में जहां साधन संपन्न उदारचित शौकीन मिजाज के लोगों के पास रेडियो सेट हुआ करते थे, उनके घर द्वारों पर रेडियो सुनने के जिज्ञासु श्रोताओं की बड़ी भीड़ जुट जाती थी। रेडियो से कार्यक्रमों के प्रसारण के प्रारंभिक दौर में जहां एक ओर कार्यक्रमों को सुनने वालों की संख्या में निरंतरता से वृद्धि हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु कलाकारों को जुटाने की और उनमें भी विशेष रूप से महिला कलाकारों को जुटाने में भी समस्या उत्पन्न होती। बंबई और कलकत्ता स्टेशनों के लिए तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वहां गाने बजाने जैसी ललित कलाओं से जुड़े लोगों को हे दृष्टि से देखा नहीं जाता, बल्कि समाज में उनका सम्मान होता था। पर ये समस्या लखनऊ और लाहौर जैसे जगहों के रेडियो स्टेशन के सामने बहुत बड़ी थी, जहाँ संभ्रांत घरों के सदस्यों का रेडियो स्टेशन आने का प्रश्न ही नहीं था। फिर भी ऐसे लोग थे जो रेडियो स्टेशन से न केवल जुड़े, बल्कि इन्होंने जिस परंपरा से और जिस लगन से अपनी कला को लोगों के साथ साझा किया, उतना ही प्यार और सम्मान भी बटोरा। और ऐसी ही एक शख्सियत थी सईदा बानो की। ये ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी लखनऊ की पहली उद्घोषिका थी। चौथे दशक में वे कार्यक्रमों की उद्घोषणाएं करने के साथ साथ बच्चों के कार्यक्रमों का संचालन भी किया करती। और बात बच्चों के कार्यक्रम की हो श्रोताओं, तो बाल मंच और बाल गोपाल जैसे कार्यक्रमों का आनंद आप आज भी उठाते हैं। बात हमारे नन्हे श्रोताओं की हो तो ऐसे ही एक नन्हे श्रोता से हमने बात की, जिसका क्या कहना था, आइए जरा सुनते हैं।
1: मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। मैं खुद नहीं चला पाती हूँ, पर लेकिन मम्मी चला देती है। संडे को रेडियो सुनना बहुत पसंद।

प्रारंभिक दौर में रेडियो की भाषा हिंदुस्तानी हुआ करती, जिसमें उर्दू शब्दों की बड़ी भरमार रहती थी। तब आकाशवाणी पर जो नाटक होते थे उन पर पारसी थिएटर का बहुत अधिक प्रभाव था। नाटकों में शहजादा राम होते और बेगम सीता जलवा अफरोज हुआ करती थी, बादशाह दुष्यंत प्रकट होते। ये एक ऐसी भाषा थी जिसको लेकर हिंदी प्रेमियों के मन में गहरा असंतोष था और आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए खूब जाना जाता है। ऐसे में उन दिनों हिंदी सेवी पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की अप्रत्यक्ष अगुवाई में ये प्रश्न उठाया गया कि रेडियो पर हिंदी का कोई कार्यक्रम प्रसारित क्यों नहीं होता। प्रख्यात समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, माधुरी पत्रिका के संपादक पंडित रूप नारायण पांडे, उपन्यासकार श्री अमृतलाल नागर और श्री यशपाल के साथ साथ श्री भगवती

0: चरण वर्मा सहित अनेक साहित्यकारों का यही सोचना था। हिंदी प्रेमियों द्वारा उठाई गई इस मांग पर यह निर्णय किया गया कि कार्यक्रमों का प्रसारण हिंदी में भी किया जाएगा, लेकिन किसी के लिए भी लगभग यह असंभव सा था कि ये दायित्व एक पूर्णकालिक रूप से उठाया जाए। तभी एक नाम उभर कर आया और सभी लोग उस पर सहमत हो गए, और वो था बलभद्र दीक्षित उर्फ पड़ीस जी का। पड़ीस जी अवधि के प्रख्यात कवि थे और उन दिनों लखनऊ रेडियो में वो एक कॉपीस्ट के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें ही हिंदी कार्यक्रमों का दायित्व सौंप दिया गया। पड़ीस जी ने सोचा कि रेडियो पर हिंदी का कार्यक्रम किसी बड़े लेखक या कवि के रचना पाठ से प्रारंभ हो। उस वक्त हिंदी के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उरूस पर थे। वो निराला जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वो आकाशवाणी पर कविता पाठ करने की अनुकंपा करें। श्री पड़ीस के विशेष आग्रह पर महाकवि ने रेडियो पर काव्य पाठ के लिए सहमति दे दी, और इस तरह राम की शक्ति पूजा वो कविता थी जिससे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आकाशवाणी पर कविता पाठ का आरंभ किया और खूब वाहवाही बटोरी। एक आकाशवाणी का दौर वो था और एक आकाशवाणी का दौर आज है, जब रेडियो के साथ साथ प्रसारण के कितने ही रूप हमारे सामने उभर कर आए हैं। आकाशवाणी अभी भी अपने चाहने वालों के हृदय में क्या स्थान रखता है, ये बताया हमारे एक श्रोता ने।
1: मेरे लिए आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि यादों का भावना और अपनेपन का एक एहसास दिलाती है, क्योंकि हमें याद है बचपन में हम नानी के घर जब जाते थे तो नानी रेडियो चलाया करती थी। बचपन की वो नानी के घर की सुबह, मधुर गीत और समाचार, ये सब यादें बहुत अच्छी लगती है। आकाशवाणी ने न जाने कितनी पीढ़ियों का साथ निभाया है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी का आवाज आज भी उतनी ही आत्मीय और भरोसेमंद लगता है हमें। देखा जाए तो 90 वर्ष से यह केवल जानकारी नहीं दे रही बल्कि देश की संस्कृति, भाषा और भावनाओं को भी जोड़ रही है। तो एक श्रोता के रूप में मैं गर्व महसूस करती हूँ कि आकाशवाणी आज भी लाखों दिलों की धड़कनों से जुड़ी हुई है। आकाशवाणी की ये कुछ यादें मेरी नानी के साथ जुड़ी, इसलिए मुझे बहुत पसंद है आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना। जब भी सुनती हूँ तो मुझे सारी यादें जो है पुरानी ताज़ा हो जाती।

0: बात शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्ला खान की हो, जिनके संगीत के लिए बाद में देश ने उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान, गजल की बेमिसाल आवाज बेगम अख्तर, अनश्वर धुनों के रचयिता मदन मोहन जी, साहित्य जगत से भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, इला चंद्र जोशी, अमृत लाल वर्मा या अनेक लोगों को आज तक याद आने वाले रमई काका, ये सब थाती हैं रेडियो लखनऊ की यानी आकाशवाणी लखनऊ की। दोस्तों, बातों का सिलसिला बड़ा लंबा है और कार्यक्रम बातों बातों में की अवधि बहुत छोटी, इसीलिए आगे भी हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कितनी ही बातें आपसे यूं ही साझा करते रहेंगे और ऐसी ही गुंजायमान होते रहेंगे जैसे कि हमारी ये श्रोता।
1: मेरे लिए आकाशवाणी का 90 वर्षों का सफर सिर्फ एक प्रसारण सेवा की कहानी नहीं है, बल्कि यादों, भावनाओं और भरोसे की यात्रा है। बचपन से लेकर आज तक आकाशवाणी ने देश के करोड़ों लोगों को समाचार, संगीत, ज्ञान और मनोरंजन से जोड़

0: है। जब टेलीविजन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थीं, तब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम था। आकाशवाणी की मधुर आवाजें समाचार, वाचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे। इसने न केवल जानकारी दी, बल्कि देश की विविध संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं को भी एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। बदलते समय के साथ अनेक नए माध्यम आए, लेकिन आकाशवाणी के प्रति लोगों का विश्वास आज भी कायम है।
1: बात ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कार्यक्रम की हो, या नाटकों की, या फिर FM सेवा की, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र इन सभी सेवाओं में आपके लिए हमेशा अग्रणी रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपका मनोरंजन करें, आप तक सूचनाएं पहुंचाएं और यूं ही आपके दिलों की धड़कन जगाएं। इजाजत दीजिए शीबा को आज के कार्यक्रम से। आपसे फिर मुलाकात होगी बातों बातों में के एक और ताज़ा अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।

करें, आप तक सूचनाएं पहुंचाएं और यूं ही आपके दिलों की धड़कन जगाएं। इजाजत दीजिए शीबा को आज के कार्यक्रम से। आपसे फिर मुलाकात होगी बातों बातों में के एक और ताज़ा अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8। आइए अब सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन।
1: शरद ऋतु की सुहानी सुबह चिड़ियों का कलरव और पूरब के अंतहीन आकाश पर फैली अरुणोदय की लालिमा तीनों एक साथ मन को लुभा रही थी। प्रकृति के संपूर्ण परिवेश में अरुणोदय के साथ आई सुहानी सुबह की ताजगी व्याप्त थी। देवी प्रसाद दालान के अपने चिरपरिचित कमरे में चारपाई पर लेटे हुए थे। वृद्धावस्था की निर्मल काया में मधुर स्मृतियों ने अचानक उत्साह का संचार कर दिया। अपने पुरखों के इस दलान को वे बालपन से देख रहे थे। जीवन की कई मधुर और मायूसी से भरी यादें इस दलान से जुड़ी थी। घर के बाल वृंद से लेकर बुजुर्ग तक की अधिकांश दिनचर्या इसी दलान पर गुजरती थी। ये सारी यादें उन्हें अब किसी बीते हुए युग की जीवनचर्या लग रही थी। अब दलान में वह चहल पहल और रौनक नहीं रही जो लोगों के रहने से हमेशा बनी रहती थी। आजीविका की तलाश में बाहर जा रहे लोगों की वजह से दालान ही नहीं बल्कि सारा गांव लगभग वीरान हो गया था। बदन से रजाई हटते ही देवी प्रसाद को ठंडी हवा की चुभन महसूस हुई। वे धीरे से बिस्तर से उठे और उन्होंने कमरे की खिड़की के सारे पल्ले खोल दिए। पूरा कमरा सुबह की धूप से जगमगा उठा। पूरब की क्षितिज पर सूर्यदेव संपूर्ण आभा के साथ चमक रहे थे। देवी प्रसाद जी का हृदय भगवान भुवन भास्कर के प्रति श्रद्धा से भर उठा। उनको लगा कि भगवान भुवन भास्कर के रूप में सुदूर गगन पर चमक रहा यह प्राण पोषक दिव्य प्रकाश पुंज जगत के प्राणियों के लिए करुणामयी परमेश्वर की आभामयी उपस्थिति ही है। देवी प्रसाद ने पूरे भक्तिभाव से पूरब के आकाश पर चमक रहे सूर्यदेव को नमन किया और चारपाई पर आकर लेट गए। सुबह की सुहानी धूप उन्हें रुचिकर लग रही थी। उन्होंने गौर किया कि आंगन से किसी के आने की आहट अभी तक नहीं मिली है। देवी प्रसाद ने अनुमान लगाया कि अभी घर के लोग जगे नहीं होंगे। जाड़े में रजाई की गर्माहट में सुबह की नींद बहुत प्यारी लगती है। वृद्धावस्था में अपने असमर्थ शरीर की वजह से वे अपने इकलौते पुत्र संतोष की मदद से ही दिनचर्या शुरू कर पाते थे। जीवन की सांध वेला में उन्हें अपना रोगग्रस्त शरीर बहुत कष्ट दे रहा था। संतोष की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। परिवार छोटा था

में दो बेटियां और पत्नी थी। देवी प्रसाद को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए लगभग 30 वर्ष बीत चुके थे। देवी प्रसाद शरीर से लाचार थे और उनकी जरूरत भी सीमित थी। पिता ने कभी पेंशन के रुपए का हिसाब पुत्र से नहीं मांगा। वे यही सोचकर संतोष कर लेते कि संतान तो अपनी ही आत्मा की भौतिक उपस्थिति है, मेरा जो कुछ है मेरे पुत्र का ही तो है। दालान के सामने विशाल तालाब था। तालाब के दक्षिण किनारे पर प्राचीन शिवालय बना था। दालान की खिड़की से लगभग पूरा तालाब दिखता था। तालाब में जल के अलंकार कई श्वेत और रक्ताभ कमल खिले थे। कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें बिखरी हुई थीं। सुबह की धूप में बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कमल दल पर कई बाल सूर्य उतर आए हों। बालारुण से अलंकृत कमल के सौंदर्य को देखकर देवी प्रसाद मुग्ध हो गए। तालाब में खिले मनभावन ताजे कमल पुष्पों को देखकर मानस पटल पर अचानक पुरानी स्मृतियां साकार हो उठी। अनायास ही उन्होंने बुदबुदाते हुए स्वयं से कहा, देवकी को कमल के फूल बहुत पसंद थे। कांच की कठौती में पानी भरकर देवकी उसे कमल के फूलों से सजाया करती थी। कमल दल से सुसज्जित कठौती के पास बैठकर हम दोनों कितनी बातें करते थे। अभी तक देवकी के साथ मैं दो बार चाय पी चुका होता। सचमुच जीवन पथ पर चलते चलते कुछ ही समय बाद पति पत्नी की रुचि और स्वभाव एक हो जाते हैं। देवकी दुनिया से विदा क्या हुई, मेरे लिए तो जैसे जीवन का अनुराग ही विलुप्त हो गया। देवकी का रूप लावण्य जितना सुंदर और आकर्षक था, वह हर काम भी उतनी ही रुचिपूर्ण ढंग से करती थी। पुरानी स्मृतियों का सिलसिला शुरू हुआ तो यादों की कई परतें खुलने लगी। संतोष का बचपन और हम दोनों से असंख्य प्रश्न करता हुआ उसका चंचल बातुनी बालमन, जीवन का वह कितना मोहक कालखंड था। गतिशील कालखंड अच्छा हो या बुरा, रुकता कहाँ है। संतोष अब कितना सयाना हो गया है, कितनी नपी तुली बातें करता है। चेहरे पर शिकन लिए पता नहीं किस उलझन में डूबा रहता है। जब तक जीवन है परेशानी और संघर्ष तो रहेंगे ही। देवी प्रसाद ने आंगन की तरफ झांक कर मन ही मन कहा, आज देर तक सब सोए हुए हैं। मायूस मन से वे सोचने लगे, देवकी का साथ क्या छूटा, जीवन कष्टप्रद हो गया। मेरी कोई दिनचर्या अब समय से पूरी नहीं हो पाती है। पराश्रित होना कितना कष्टकर होता है। शरीर के जो अंग कभी सुख दे रहे थे वही अब दुख दे रहे हैं। तथापि जब तक जीवन है, तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद जीवन में अनुराग और उत्साह को बनाए रखूं, इसी में जीवन की सार्थकता है। पापा, मैंने बरामदे में पानी रख दिया है। कुछ क्षण रुककर संतोष ने जोर से कहा, पापा पानी रख दिया है, अच्छी बात है बेटा। ऐसा लगा जैसे देवी प्रसाद समाधि से अचानक जाग कर बोल उठे हों। देवी प्रसाद जी ने आहिस्ता आहिस्ता नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ता किया और श्रीमद् भागवत पुराण लेकर उसके पृष्ठ पलटने लगे। पवित्र भागवत में लिखी ज्ञान और अनुभव की कई मार्मिक पंक्तियों को उन्होंने अंडरलाइन कर रखा था। भागवत पुराण में महाराज भरत का मृग छोने पर मोहित होना और फिर मृग के रूप में जन्म ग्रहण करने का प्रसंग देवी प्रसाद बार बार पढ़ते थे। इस प्रसंग को पढ़कर उन्हें आभास होता कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति से भरी मनोवृत्ति ही हमारे जन्म के हेतु हैं। अपनी अच्छी या बुरी मनोवृत्ति के अनुरूप ही हम उत्तम या अधम शरीर धारण करते हैं। सामने सड़क पर हो रहे कोलाहल को सुनकर देवी प्रसाद ने भागवत पुराण को एक तरफ रख दिया और सामने सड़क की तरफ वो गौर से देखने लगे। कमजोर दृष्टि की वजह से उन्हें कुछ साफ नहीं दिख रहा था और कोलाहल की ध्वनि भी स्पष्ट नहीं थी। बेटा, सड़क पर क्या हो रहा है? संतोष ने धीरे से कहा, सड़क पर धार्मिक शोभा यात्रा जा रही है। बेटा, सड़क पर कौन जा रहे हैं? हर साल की तरह इस साल भी हाथी घोड़े और ऊंट पर शोभा यात्रा जा रही है। संतोष ने इस बार जोर से यह बात दोहराई। देवी प्रसाद ने फिर पूछा, सड़क पर क्या हो रहा है? इस बार संतोष ने पिता के कान के पास चिल्लाकर कहा, आप एक बार में सुनते नहीं हैं या फिर ना सुनने का नाटक करते हैं। कहा तो धार्मिक शोभा यात्रा है, वर्षों से इस दलान के आगे से यह शोभा यात्रा जाती है, सब पता है, फिर भी आप एक ही बात बार बार पूछकर मेरी उलझन बढ़ाते रहते हैं। बेटे के रूखे बर्ताव से देवी प्रसाद आहत होकर स्तब्ध हो गए। उन्होंने इशारे से संतोष को पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा मेरी उम्र 90 को छूने जा रही है, मेरी काया का हर अंग अब कमजोर हो गया है। मैं ना तो ठीक से देख पाता हूँ और ना ही सुन पाता हूँ। मेरे कान आँख हाथ पैर तो अब तुम ही हो। अपने बेटे का हाथ थामकर कुछ याद करते हैं उन्होंने आहत भरी मुस्कान के साथ कहा, इस शोभा यात्रा को देखकर मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। उस समय तुम्हारी उम्र लगभग

0: पांच वर्ष रही होगी। इसी दलान पर मैं तुम्हें कंधे पर बैठा कर यही शोभा यात्रा दिखा रहा था। तुम कौतूहल वश शोभा यात्रा के एक ही जानवर के बारे में बार बार पूछ रहे थे। पापा, वह बड़ा दांत वाला कौन है? मैंने तुमको पुचकारते हुए कहा था, बेटा हाथी है। तुमने कई बार पूछा, पापा वह क्या है? मैंने हर बार खुश होकर कहा, बेटा हाथी है। तुम दिन भर यही पूछते रहे, पापा वह क्या था? मैंने हर बार तुम्हें प्यार और दुलार से कहा, बेटा हाथी था। और आज मेरे दो बार पूछने पर ही तुम्हें उलझन होने लगी? बेटा, वृद्ध माता पिता तो बेटे के लिए बच्चों की तरह हो जाते हैं। बचपन की तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी माँ और मेरी उलझन दूर हो जाती थी। क्या वृद्ध पिता की बातों को बच्चों की तरह नहीं ले सकते हो? एक बार सोचकर तो देखो, तुम्हारी भी उलझन दूर होने लगेगी। देवी प्रसाद की वाणी में वेदना थी। पिता की वेदना को महसूस कर पुत्र की अंतरात्मा हिल उठी। उसको लगा कि पापा सही तो कह रहे हैं। उसकी आंखें नम हो गई। उसने शालीनता से कहा, पापा माफ़ कर दीजिए, बेख्याली में मुझसे सचमुच बड़ी गलती हो गई। अब कभी आपकी किसी भी बात से मुझे उलझन नहीं होगी। पुत्र की मृदुलता मिश्रित सम्मान भरी बातें सुनकर वृद्ध पिता का दंतहीन मुख अबोध बालक की तरह खिल उठा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे श्री मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं मुक्ता चटर्जी के गाए गीत एवं भजन, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस भजन के साथ। रचना है तुलसीदास की।

सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुक्ता चटर्जी के गाए गीत एवं भजन। अभी आप सुन रहे थे प्रभा माथुर की ये रचना, स्वर थे मुक्ता चटर्जी के। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जिसे लिखा योगेश प्रवीण ने।

अभी आप सुन रहे थे योगेश प्रवीण की रचना, स्वर थे मुक्ता चटर्जी के। और इसी गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:30। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ों में हीरो नंबर 1 इस फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में राजा फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे राजा फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बीवी नंबर वन से। इस गीत को गाया है अनुराधा श्रीराम और अभिजीत ने, समीर की रचना और धुन अनु मलिक की।

बीवी नंबर वन इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो

0: जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद

जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में

0: दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ। जनता

0: event at the Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76 Ines Castillo. Sindhu's pre-quarterfinal match will be against compatriot and world number 39 Isharani Barua. Tanvi Sharma also showed signs of returning to form with a 21-12-22-20 win over world number 11 Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Zameer Razvi se khabrein suniye. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।

0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा हैं, न कि सियासी मजबूरी का।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
0: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4,399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4,398 दिन तक फरायज अंजाम दिए थे। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और ये फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और अवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिस्किन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने का सिलसिला

0: जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बरसों से भारत की इकतसादी और तरक्याती पेशरफ की रहनुमाई की है और भारत का आलमी रुतबा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबॉट ने कहा कि भारत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़्यादत वाली सरकार के तहत बुनियादी ढांचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजली और सफाई सुथराई के शोबे में बेहतरी लाई है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिसनाई के, पपुआ न्यूगिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की वज़ीर-ए-आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बदलाव की हुक्मरानी, आलमी खिते जुनूब के लिए उनकी कोशिशों और सबकी शमूलियत और इकतसादी एतबार से गोनागोनियत वाले भारत के विजन को सराहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने PM मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सके, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने PM विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नौजवानों को PM कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। PM सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीद कारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर का अंदाज़ा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के आम शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल शामिल हैं, जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपये के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जी एन

एसएस जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई

0: जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ही कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल

0: दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक, इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
0: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मिली। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं, वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची।

0: और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, ना जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश, और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है।

0: क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले। और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है, वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखें यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे हैं। ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल, वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है। भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसीलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,

0: और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कुनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवने थे, भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात देव आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, भारत नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भर

0: एकता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094

0: ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 10 और इसी के साथ प्रस्तुत है पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड।

श्रोताओं, हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं दो आंखें बारह हाथ। इस फिल्म से इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने, लिखा भरत व्यास ने और संगीत वसंत देसाई का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं शमशाद बेगम को बहार फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्णन ने और धुन बनाई एस डी बर्मन ने।

शमशाद बेगम की आवाज़ में अभी आपने सुना बहार फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म में एक बार फिर से शमशाद बेगम को, गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और धुन ओपी नैयर की।

अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का गीत, और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को कार्यक्रम के अगले गीत में। काला पानी फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन एसटी बर्मन की।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना काला पानी, इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म के गीत में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन ओपी नैयर की।

0: भैया जी।
1: मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को पेइंग गेस्ट इस फिल्म के गीत में। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत एसडी परमन का।

0: जमाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गीत है जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गीत। और इसी गीत के साथ ही पुराने फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन का याग रमन में शहनाई वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि मोहन श्रीवास्तव का राग हेमावती में बांसुरी वादन, और अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 11:46 और हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।